आदाब समीन, यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। बीटीवी 288 आर्थिक मीटर यानी 1116 किलोहर्ट्ज के अलावा एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा आप हमें DTH4 आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। समीन, आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ महीने की 13 तारीख, मुताबिक 3 जून 2024 ईस्वी। सुबह के 6:33 हुए हैं। आज की नशरियात लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

0: आकाशवाणी श्रीनगर मीडिया बलाबू एफ एम अखतराशारिया 5 मेघासन पेट समय पेश खदमत प्रोग्राम सुबुगाही।
1: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। प्रोग्राम सुबुगाही हेत चेस तुहंदिस खदमत अंदर हाजिर। सामिन मोहतरम, कुरान करीम अंदर चु अल्लाह ताला सुंद इरशाद जील तो ही ब्रोह कनी कुरान करीम च तिलावत ही करन तुह रूजो खामोश कन दिथ बूजो ताकि तुह पे ही रहम करन। प्रोग्राम की अजक शुमारुक आगाज ते करव हसब दस्तूर कुरान करीम चन केंसन आयात मुबारकन हिज तिलावत सीत। वलि बूजो कन दिथ ताकि अस पे सपद अल्लाह ताला सुंद रहम।

0: समीन तेजु सुबह का ही बोझान ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। सुबह के 6:55 हो रहे हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी खबरों के बुलेटिन नाश्र होंगे।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक दिव्यानंद झा। अथ वार्ताः। प्रशासनेन सीबीएसई इति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा ओएसएम इत्येतस्याः आंकिकीय मूल्यांकन प्रणाल्याः सेवानुबंध संबद्ध विषयाणां परीक्षणार्थं एक सदस्यीय समितिः संघटिता। समितेः अध्यक्षः क्षमता निर्माणायोगस्य अध्यक्ष पदारूढा एस राधाचौहानः भविष्यति। समितिः मासाभ्यन्तरे अन्तःकार्मिक प्रशिक्षण विभागाय स्वप्रतिवेदनं प्रस्तोष्यति। अत्रान्तरे परिषदा गतवासरे 12 कक्षायाः छात्राणाम् अंक सत्यापनार्थं उत्तरपुस्तिकानां पुनर्मूल्यांकनार्थं च अन्तर्जालपटलं आधिकारिकरूपेण सक्रियं कृतम्। अस्माकं वार्ताहरः अवदत् यत् एषा सुविधा तेभ्यः एव छात्रेभ्यः उपलब्धा अस्ति ये खलु स्वमूल्यांकितानां उत्तरपत्राणां स्कैन इत्येताः प्रतिलिपयः प्राप्तवन्तः। राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू वर्यया उक्तं यत् शिक्षा शक्तिकरणस्य महत्वपूर्ण साधनं वर्तते। शिक्षा एव जनान् आत्मनिर्भरान् जागरूकान् क्षमांश्च कारयति। गतवासरे नवदिल्ल्यां सा जनजातीय छात्रवृत्ति लाभार्थिनः संबोधयति स्म। अस्मिन् अवसरे सा उक्तवती यत् वास्तविकः विकासः तदा एव भविष्यति यदा समाजस्य सर्वे एव पक्षाः सामाजिकार्थिक शैक्षिकरूपेण विकसिताः भविष्यन्ति। सा उक्तवती यत् सर्वकारस्य छात्रवृत्तियोजनया जनजातिवर्गेभ्यः उच्चशिक्षायाः अवसराणां प्रदानेन तेषां जीवनं परिवर्तितम्। द्रौपदी मुर्मू वर्या अवदत् यत् भारते प्रतिभासम्पन्नानां छात्राणां न्यूनता नास्ति, अपितु तेषाम् अभिज्ञानं पोषणं तेभ्यः उचित मार्गदर्शनं च आवश्यकं वर्तते।
2: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जोड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तो सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
1: भारतस्य मुख्य न्यायाधीशः न्यायमूर्तिः सूर्यकांत

0: अभियन्तः। गतवासरे सर्वोच्च न्यायालयस्य पञ्च न्यायाधीशेभ्यः पदगोपनीयतायै प्रतिश्रावितवान्। न्यायमूर्तिः शीलनागो, श्रीचन्द्रशेखरः, संजीव सचदेवा, अरुणपल्ली, वरिष्ठाधिवक्त्री वी मोहना च सर्वोच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशत्वेन शपथवचनं स्वीकृतवन्तः। अवधेयं यत् केन्द्रेण सर्वोच्च न्यायालयीय न्यायविद समितेः अनुशंसाम् आलक्ष्य एव एतेषां नियुक्ति विषयणे स्वीकृतिः दत्ता। राष्ट्रिय पंचायत पुरस्कार समारोहः अद्य नवदिल्ल्याम् आयोजयिष्यते। एते पुरस्काराः देशस्य द्विचत्वारिंशत् संख्याकेभ्यः उत्कृष्ट पंचायतेभ्यः प्रदास्यन्ते। समारोहावसरे दीनदयालोपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कारः इत्यस्यां श्रेण्यां चतुस्त्रिंशत् ग्राम पंचायतेभ्यः, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार श्रेण्यां च अष्ट पंचायतेभ्यः पुरस्काराः प्रदास्यन्ते। भारतीयर्थ विभागेन सूचितं यत् अद्य कर्णाटकस्य आभ्यन्तरीणेषु भागेषु, केरल माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कराईकलेषु च तीव्रवृष्टिः भविष्यति। आगामि दिवसद्वय पर्यन्तं हरियाणा, चण्डीगढ़, दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्रांध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमोत्तर प्रदेशेषु तीव्र झंझावातेन सह गर्जनस्य, तडितपातस्य च संभावना वर्तते। अन्ते क्रीडा वार्तासु, महिलानां अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडा मालिकायां गतरात्रौ इंग्लैंड देशस्य टाउनटन नगरे काउंटी क्रीडांगणे आयोजिते तृतीये अन्तिमे च द्वन्द्वे इंग्लैंडेन भारतं षड्भिः क्रीडकैः पराजितम्। इत्थम् इंग्लैंडेन 2-1 इत्येतेन स्पर्धान्तरालेन श्रृंखला जिता। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने वेनेजुएला के ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश किया है। इस यात्रा से भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक, नगरपालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने असम के मूगा रेशम के लिए मिशन स्नेहजोरी का शुभारंभ किया। ये पहल असम के विशिष्ट मूगा रेशम उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। सूरत के बारडोली कस्बे के पास कल महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन की 2 बसों की टक्कर में 8 लोगों की मौत और 15 से अधिक लोग घायल हो गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। साथ ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के

0: परिजन को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने अध्यक्ष निर्वाचित होने पर डॉ खलीलुर रहमान को बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने तथा बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान घोषणा की गई थी। तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, will be on a 4-day visit to India beginning today. She will be accompanied by a high-level delegation, including Ministers of Foreign Affairs, Economy and Finance, and Science and Technology. Briefing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said Ms. Rodriguez will hold bilateral discussions with Prime Minister Narendra Modi during her visit. The discussions will be focused on exploring avenues of cooperation in the areas of trade, investment, energy, renewable energy, healthcare and pharmaceutical. Senior Congress leader D.K. Shivkumar will be sworn in as Chief Minister of Karnataka today. Governor Thavarchand Gehlot will administer the oath of office and secrecy to Mr. Shivkumar and members of the new cabinet at Lok Bhavan in Bengaluru at 4 p.m. Mr. Shivkumar's appointment comes days after Mr. Siddaramaiah stepped down as chief minister, paving the way for his deputy to take over the post. West Bengal government will launch a major social welfare initiative, Annapurna Yojana, today. Chief Minister Suvendu Adhikari will formally inaugurate the scheme. The launch will be a massive synchronized event spanning the entire state. While the Chief Minister leads the central inauguration, beneficiaries of the Annapurna Yojana will participate virtually across all blocks, municipalities and municipal corporations. The centre has signed Memorandum of Understanding with 4 states under the Jal Jeevan Mission 2.0 to enhance safe drinking water supply across rural India. The agreement has been signed with Arunachal Pradesh, Jharkhand, Tamil Nadu, Nagaland and Union Territory of Puducherry. The Ministry of Jal Shakti said the reform-linked MOU promotes a Gram Panchayat-led, service-based and community-centred approach to rural water governance. The initiative, aligned with the objectives of Jal Jeevan Mission 2.0, aims to ensure that every rural household has access to quality drinking water supply in adequate quantity on a regular basis through strengthened community participation. The government has invited nominations for the Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar 2026. The last date for submission is 31st of July. The prestigious award is conferred by the President on children who have made exceptional contributions in various fields including bravery, social service, environment, sports, art and culture, and science and technology. The Ministry of Women and Child Development informed that nominations from any citizen will be received only through the National Awards portal on awards.gov.

0: www.cpp.in. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives in an accident in Surat yesterday. 8 people were killed and more than 15 people were injured when 2 Maharashtra State Road Transport buses collided near Bardoli town in Surat. The injured were admitted to a nearby hospital. Indian nationals will no longer require an airport transit visa when travelling to a third country through German airports beginning today. German Embassy in India announced that the exemption will simplify travel for Indian citizens transiting through Germany on their way to other international destinations. The embassy described the decision as a reflection of the growing partnership between the two countries. It said the move underlines the German government's commitment to deepening ties between the two countries, facilitating the movement of people. Bangladesh's Foreign Minister Khalilur Rahman has been elected president of 81st session of UN General Assembly. Dr. Rahman emerged victorious in a closely contested election held in UN General Assembly, garnering 99 votes against Cyprus's Special Envoy for Multilateralism, Andreas Kakouris, who got 91 votes. His one-year tenure as head of the Chief Deliberative, Policymaking and Representative Organ of the United Nations will commence in September. In accordance with the established regional rotation, the president of the 81st session was to be elected from the Asia-Pacific group. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has congratulated Dr. Rahman on his election as UN General Assembly President. In women's cricket, England sailed to a 6-wicket win over India in the third and final T20 international to clinch the series 2-1 at the country ground Taunton in England last night. India felt confident after taking 3 early wickets, but a commanding partnership between Heffernan and Alex Kepsey helped England chase down 180 with ease. And that is the end of this news bulletin.
1: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियावेव के अलावा FM 103.5 MHz पर। समीन सुबह के 7:10 हुए हैं। समाप्त करें लाइव मॉर्निंग शो पयाम सुबह एक वक्फे के बाद।
2: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
3: अरे यार तू कहाँ ले आया मुझे?
4: अम्मा तेरी भाभी ने घर का सामान मंगाया है, नहीं ले गया तो शामत है। सुना यहाँ ऑफर्स भी है।
3: ओह,
4: सॉस एक में एक फ्री, कुकिंग ऑयल 40% ऑफ, 5 किलो आटा 70 रुपए।
3: भाई ऑफर्स तो ठीक है, लेकिन क्वालिटी और लेवल का क्या?
4: अम्मा लेवल लेवल छोड़, ऑफर्स देख।
3: ओए ऑफर किंग, ऑफर के चक्कर में अपनी आंखें मत ऑफ कर। क्वालिटी परखने के लिए लेबल पे गौर कर। किसी भी खाद्य उत्पाद की प्रामाणिकता की पहचान उसका लेबल है। खरीदने से पहले लेबल की जांच अवश्य करें।
5: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
6: अरे माँ देखो एक्सीडेंट, रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
7: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
6: नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट की PM राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आर है माँ। अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
7: पर बेटा, हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
6: माँ इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
7: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
6: माँ अब सख्त रूल्स हैं, नो हरासमेंट, मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं, पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
7: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
6: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
7: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
6: वही तो माँ, PM राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें जिंदगी बचाएं।
5: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।
8: 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
9: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
10: RBI कहता है
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: कैफियत से होंगे, खुश खुर्रम होंगे। एक नया दिन है, नई सुबह है, नया आगाज़ है, और यही दुआ करते हैं कि ना सिर्फ आज का ये दिन बल्कि आपकी ज़िंदगी का हर पल हर लम्हा आपको खूबसूरत मिले, राहत भरा मिले।
1: जी सायका समीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, बहुत सारी बातें होंगी, नगमे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं आज वर्ल्ड साइकिल डे है, इस पर भी बात होगी, और बात होगी जायकेदार मसालों की में से किसी एक मसाले की, और जानेंगे कि तारीख के अवराक में आज के दिन की क्या अहमियत है। ये सब पहले समीन को एक नगमा सुनाते हैं।
0: ज़रूर, लेकिन ज़रूर यहाँ पर नगमे से पहले एक छोटी सी बात हम अपने सामईन को बताना चाहेंगे कि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। हर लम्हा मुस्कुरा कर जिए, मस्बत सोचें, अच्छा बोलें और अच्छाई बांटें, क्योंकि जो रोशनी हम दूसरों को देते हैं वो रोशनी हम तक लौट कर ज़रूर आती है।
1: जी।

0: आज वर्ल्ड बाइसिकल डे है। आज बाइसिकल पे बात होगी। बाइसिकल का आलमी दिन आज यानी 3 जून को मनाया जाता है ताकि साइकिल्स की अहमियत को एक सादा, सस्ती और सेहतमंद और माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के तौर पर उजागर किया जाए। हर साल ये दिन मनाया जाता है आलमी सतह पर। ये दिन लोगों को फिटनेस और रोजाना इको फ्रेंडली आलूदगी में कमी और पायदार जिंदगी गुजारने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करने की तरकीब देता है।
1: बिल्कुल जहूर, आपने सही फरमाया कि ये एक आलमी दिन है। जैसा कि हमने पहले भी अपने सामईन को बताया कि बाइसिकल जो है वो काबिल एतमाद, सस्ती, साफ और पायदार नकल व हमल के ज़राए के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है और सेहत को बेहतर बनाने में, आलूदगी को कम करने में और नकल व हरकत को सपोर्ट करने में, इवन ज़रूर हम ये भी बताएंगे कि कम्युनिटीज़ को जोड़ने में साइकिल के किरदार को मनाया जाता है। और आज का ये दिन जो है ये ख़ास तौर से साइकिल को प्रमोट करने के लिए मनाया जाता है। और साइकिल का डिज़ाइन भी जो है वो सादा है, लेकिन हम ये कहेंगे कि असल में ये बहुत बहुत ताकतवर है और ये बग़ैर फ्यूल के मुख्तसर फासला तय करने में भी मदद करता है। और यहाँ पर सामीन को ये भी बताना चाहेंगे कि मुख्तलिफ उम्र के ग्रुप्स और आमदनी की सतह के लोगों के लिए भी ये काबिल रसाई ट्रांसपोर्ट भी है। वैसे नो डाउट कि अभी जो है आजकल मार्केट में महंगी वाली साइकिल्स भी जो है वो अवेलेबल हैं।
0: हाँ, वो तो सही है। अब महंगी भी है, सस्ती साइकिल्स भी है, लेकिन जो मेन बात है इसमें कि ये बगैर फ्यूल के चलता है
1: जी।
0: और हम साइकिल को चलाते चलाते सफर भी तय करते हैं और हमारी वर्जिश भी हो जाती है
1: जी जी बिल्कुल।
0: हमारे सेहत का ख्याल साइकिल रख सकती है, कार नहीं रख सकती।
1: बिल्कुल, यहाँ पर ये भी बताना चाहेंगे अपने सामईन को कि इससे क्या होता है, साइकिल चलाने से ये ओबेसिटी जो है ओबेसिटी में मदद करता है, यानी कि कैलोरीज को बर्न करने में मदद करता है।
0: यही तो वजह है कि आज सब लोग ओबेज हैं, क्योंकि अब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो साइकिलों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। हालांकि पहले ज़माने में लोग फिट इसलिए थे क्योंकि ज़्यादा साइकिल का इस्तेमाल किया जाता था
1: या ज़्यादा पैदल चला जाता था।
0: ज़्यादा पैदल चला जाता था। तो ये चीज़ें जो है सफर तय करने का एक अहम जरिया है साइकिल।
1: बिल्कुल, और यहाँ पर एक बात और हम अपने सामईन को बताना चाहेंगे कि कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस यानी हार्ट हेल्थ के लिए साइकिल चलाना जो है वो बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है।
0: स्ट्रेस को घटाने के लिए
1: बिल्कुल
0: बहुत फायदेमंद है, या इससे नींद अच्छी आती है
1: जी, क्वालिटी ऑफ स्लीप जो है वो बहुत बेहतर बन जाती है।
0: एक नगमा सुनते हैं
1: जी। बिल्कुल।

0: जी जरूर, जैसा कि हमने अपने सामाइन को पहले ही बताया कि आज वर्ल्ड साइकिल डे
1: जी
0: है, जो कि हम आलमी सतह पर ये साइकिल डे मना रहे हैं, तो लोकल और रीजनल सेलिब्रेशंस भी हो रही हैं इस हवाले से। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल और फिट इंडिया के साथ मिलकर इस मौके पर एक बहुत ही बड़ी साइक्लोथॉन का इनेकाद जो है कर रही है, और हम ये कहेंगे कि ये बहुत ही बेहतरीन कदम है। और यहाँ पर जिंदगी को प्रमोट करने के लिए लोकल इवेंट्स और कम्युनिटी रैलीज भी जो है आज होस्ट हो रही हैं।
1: हो रही है जी। अच्छा, हमने समय आपको बताया था कि एक मसालों में से एक मसाले की बात होगी,
0: जी
1: तो हमारे यहाँ आज जो हार्वेस्टिंग हो रही है वो है गार्लिक, यानी लहसुन की।
0: जी
1: लहसुन की
0: बिल्कुल,
1: हार्वेस्टिंग हो रही है।
0: आपने गार्लिक यानी कि लहसुन की बात छेड़ी, तो हम यहाँ पर अपने लिसनर्स को ये बताना चाहेंगे कि लहसुन, हम सब बेशक इस इनके इसके फवाइद से वाकिफ़ हैं कि लहसुन एक अहम ही अहम मसाला जाती फसल है, जो ना सिर्फ खानों का जायका बढ़ाती है बल्कि अपनी तिब्बी खसूसियात के लिए भी जो है

0: बहुत ही इसको माना जाता है और ये अहमियत रखती है। और कश्मीर की ख़ास आबोहवा और ज़रख़ेज़ ज़मीन लहसुन की कामयाब काश्त के लिए जो है बहुत ही इंतहाई मौजू समझी जाती है।
1: जी, लहसुन की काश्त आमतौर पर सितंबर और नवंबर के दरमियान की जाती है। काश्त के लिए अच्छी निकासी वाली मेराली ज़मीन बेहतर रहती है। काश्त के वक्त कतारों के दरमियान तकरीबन 15 से 20 सेंटीमीटर और पौधों के दरमियान 8 से 10 सेंटीमीटर का फासला रखा जाता है। मुतवाजन खादों का इस्तेमाल, बरवक्त आबपाशी और जड़ी बूटियों की तलफी फसल की बेहतर नशोनुमा की मैं अहम किरदार अदा करती है।
0: जी बिल्कुल, लहसुन की फसल जो है तकरीबन जहूर 6 से 7 माह में तैयार हो जाती है और जब इसके पत्ते जो है जर्द होकर खुश्क होने लगते हैं तो फसल की बर्दाश्त का वक्त आ जाता है और बर्दाश्त के बाद इनकी गठियों को सायादार जगह पर अच्छी तरह से खुश्क किया जाता है ताकि इसको फिर जखीरा किया जाए और इसके दौरान इसको कुछ नुकसान ना पहुंचे।
1: यहाँ कश्मीर की बात करें तो साउथ कश्मीर, पुलवामा, कुलगाम
0: जी,
1: इन जगहों पे ज्यादा इसकी कल्टीवेशन हो रही है
0: जी।
1: अभी तो आज इसकी हार्वेस्टिंग हो रही है। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है मसालों में से, सारे हिंदुस्तान में, सारे भारत में लहसुन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता
0: जी
1: है।
0: जी बिल्कुल, अगर इसके फ़वाद भी हम जाने तो हेल्थ बेनिफिट्स इसके इतने हैं कि अगर हमने अभी बताना शुरू किया तो हमारा पूरा जो ये पैगाम सुबह का प्रोग्राम है इसी पे जाएगा
1: जी। एक नगमा सुनते हैं
0: जी, ज़रूर।

0: जी साथियों, पयाम सुबह आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान जहूर अहमद और मेरे साथ हैं साइका सलीम।
1: और जहूर, आज के दिन के मुनासबत से अगर हम बात करें तो कई सारे अहम तारीखी संग मील, कई सारे ऐसे वाकयात, माइलस्टोन्स देखने को मिलते हैं जिनमें हमारे मुल्क की आज़ादी के कुछ अहम वाकयात, एक हमला, खिलाई तहकीक में पेशरफ्त और खेलों के भी कुछ वाकयात जो है शामिल हैं।
0: जी, यहाँ 3 जून 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत और पाकिस्तान का तकसीम पेश किया, ये खाका जो है वो उस दिन पेश हुआ है।
1: जी जी बिल्कुल, आज के दिन ये पेश किया गया था, यानी पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू इंडिपेंडेंट नेशंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, इसको पेश किया गया था, आज प्रेजेंट किया गया था 3 जून 1947 में। 1972 की अगर बात करें, 3 जून 1972 हमारे मुल्क में बनाया गया जदीद दौर का पहला जंगी जहाज INS नीलगिरी, इसको बाजाबता तौर पर इंडियन नेवी में आज के दिन शामिल किया गया था। और भी 3 जून 1985 की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यानी हुकूमत हिंद ने सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस के लिए 5 रोज़ा वर्क वीक को मुतारिफ कराया, जिससे जहूर मजदूरी के तरीकों में काफ़ी सारी तब्दीली जो है वो आई। जी,
0: और 3 जून 2017 में एक लंदन में एक बहुत बड़ा वाकया पेश है, लंदन ब्रिज।

0: पेश आया, हम यूं कह
1: दहशतगर्दाना
0: सकते
1: हमला हुआ है जिसमें काफी जानी नुकसान हुआ है।
0: हैं। और 1965, 3 जून 1965 की बात करें तो खिलाबाज एडवर्ड एच वाइट जेमिनी 4 मिशन के दौरान स्पेस वॉक करने वाले पहले अमरीकी बन गए जो अपने कैप्सूल से 23 मिनट तक बाहर रहे।
1: जी
2: वादी कश्मीर की खूबसूरत फिजाओं में एक नई सुबह, एक नई ताजगी, पयामे सुबह।
3: आकाशवाणी श्रीनगर पेश कर रहा है एक जामिया लाइव शो पयामे सुबह,
2: जहां होंगी सेहत, साइंस और जिंदगी से जुड़ी मुफीद मालूमात
3: और साथ ही खेल, सकाफत और अवामी मसाइल पर बामाने गुफ्तगु पयामे सुबह।
4: यारो वन यारो वन।
2: हर रोज सुबह 7:10 से 11:30 तक सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी श्रीनगर से।
3: मीडियम वेव 268.81 और FM 103.5 MHz पर पयामे सुबह।
5: सुनो सजना
3: पयामे सुबह।
1: जी आज 3 जून 1924 को एम करुणानिधि तमिलनाडु के साबिका चीफ मिनिस्टर पैदा हुए हैं।
0: यहाँ पर जरूर हम लिसनर्स को ये भी बताना चाहेंगे कि आमिर रज़ा हुसैन जो कि एक बहुत ही मुमताज़ इंडियन थिएटर आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, जिन्होंने मरकज़ी दारे बॉलीवुड फिल्मों जैसे खूबसूरत 2014 में भी जो है काम किया है, उनका भी आज जो है जन्मदिन है।
1: जी और फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया जॉर्ज फर्नांडिस जो कि ट्रेड यूनियनिस्ट हैं, इनका भी आज जन्मदिन है। ये 3 जून 1930 को पैदा हुए हैं।
0: जी अब अगर हम डेथ्स की बात करें तो इंसान दोस्त, एक सोशल एक्टिविस्ट मोहम्मद अली, जिन्हें तारीख के सबसे बड़े और बाअसर हैवीवेट बॉक्सर्स में शुमार किया जाता है, 74 साल की उम्र में आज के दिन यानी 3 जून को इंतकाल कर गए। यहाँ पर अपने लिसनर्स को ये भी बताना चाहेंगे कि मोहम्मद अली पहले फाइटर थे जिन्होंने वर्ल्ड हैवीवेट बॉक्सिंग चैम्पियनशिप जो है 3 अलग अलग बार जीती और रिकॉर्ड बनाया। और ख़ास बात यह कि उन्हें बिजली जैसी तेज़ रफ्तार, इनकलाबी फुटवर्क और बेपनाह सकाफती असरात के लिए बहुत ही बड़े पैमाने पर माना जाता है।
1: जी और रूहुल्लाह खामनेई
0: जी जी
1: ईरान के रेवोल्यूशनरी लीडर हैं, 1979 को वफात पाए हैं।
0: और यहाँ पर हमारे बॉलीवुड की एक्ट्रेस जिया खान जो निशब्द और गजनी जैसी बॉलीवुड फिल्मों में जिन्होंने अदाकारी करने वाली जो ब्रिटिश अमेरिकन एक्ट्रेस थी, आज ही के दिन यानी कि 3 जून 2013 को जुहू में इंतकाल कर गई।
1: जी अब एक नगमा हो जाए।
0: जी जरूर।

0: जी साय का प्रोग्राम जारी रहेगा पयाम सुबह, और अभी वक्त हो चला है खबरें सुनने का, तो सुनते हैं कश्मीरी में खबरें।
1: ये छे आकाशवाणी। सुबह 7:05 सपद खबर नाम है चुस बह तजम्मुल अहमद। गोड़ अख नजर खास खास खबरन हजन सुर्खियन पे। सुप्रीम कोर्टन वोनमुत खानदर करम कौर हकन नमदर्दी हंदिस बुनियादस पे फराहम कर वाजन नौकरियों निश महरूम थान य। भारत हवा पे जमीन तम मार कर वाले रुद्र एम सेकंड मिजाइल कामयाब तजुर्ब कर्म। लोखंडे प्रशांत सीताराम च सीबीएसई नव चेयरमैन तैनात करना आमित। तो प्रसार भारती हिंद वेव्स ओटीटी प्लेटफार्म महज दोन वरियन अंदर अक करोड़ यूजरन हुंद निशान अबूर कर्म। खबर तफसील सान। सुप्रीम कोर्टन वोनमुत खानदर करम कौर हकन हमदर्दी हंदिस बुनियादस पे मिलन वाजन नौकरी निश महरूम थान य। अदालत उजमान वोन खानदान के डेफिनेशन मज खानदर करम कौर खारिज कर बिला जवाज सरीहन मनमानी तो आइनी एतबार नाकबिल कबूल। जस्टिस पी एस नरसिम्हा तो अलोक अरादेस पे मुश्तमिल एक बेंचन थोव इलाहाबाद हाईकोर्ट सो हुकुमनाम ओक तरफ यत मज तम खानदान किस तारीफस मज खानदर करम कौर खारिज करम आस तो वोनमुत खानदर करम कौर खान पत खानदान हिस्स रोजान। अदालत अकिस खातून दस दायर कर आमतिस तथा दरख्वास्त पे सुनवाई करान यथ अंदर तम मल सिंदे मरन पत बहसित फेयर प्राइस शॉप डीलर तैनात करनच अर्जी दिसमस अस। एम खातून कोर इलाहाबाद हाईकोर्ट किस वरी जसास कुनों किस तथ फैसलस चैलेंज यथ अंदर अदालतन वोनमुत ओस जे खानदर करन पत छन अख कूर खानदानुक हिस आसान तो अथ बुनियादस पे हेक न तस हमदर्दी हंदिस बुनियादस पे मल सिंदे सर्विस दौरान मरन या वक्त ब्रोह रिटायर सपदन किन तसंज जाए सरकारी नौकरी दिन यत। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मून वोनमुत तालीम छे आवाम कन मुख्तलिफ वर्गन बाख्तियार बनानस मज अहम किरदार अदा करान तिकाज तालीम दसी छु फर्द खुद इनहसार तो बेदार सपदन सत सलाहियत साज त बनान। नवी दिल रात कबली शुरन स्कॉलरशिप स्कीम हिंद फायद हवाल करान खताब करान वोन सदर जमहूरियान जे सही तरक्की मकसद तेली हासिल सपदान ये समाज प्रेत कह वर्ग समाजी इकतसदी तो तलीमी एतबार तरक्की कर तमो वोन सरकार तरफ शुरू कर आमचो स्कॉलरशिप स्कीमों बदौलत कबली तबक किस जिंदगी हंदिस मयारस मज सठा बेहतरी हुंद असर द्रींट गसान।
2: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता था। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
1: डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO तो इंडियन एयरफोर्स

0: बिदतनिश पाक करन बापत पुर अजम अभियान किस शुरुआत किस मौकस पर वन मुनशियात खिलाफ अकिस वाजे पैगामस मज तमो
1: ड्रग स्मगलिंग जरूरत तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
0: जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के एहतमाम सपुद रात आकाशवाणी श्रीनगर किस ऑडिटोरियमस मज नामावार कलमकार ब्रॉडकास्टर शायर तो मुहक्किक डॉक्टर सतीश विमल सत मुलाकात कैके निशस्त सन्ज निशस्त सदारत कर पद्मश्री अवार्ड प्रावन वेल कलमकार तो अदीब प्रोफेसर शफी शोकन यलजन अत मौक पे आकाशवाणी श्रीनगर सरबरा गुरविंदर सिंह खास मेहमान सिंद हैसियत मौजूद आईवानी सदारत मज जम्मू कश्मीर वक् बोर्ड मेंबर डॉक्टर गुलाम नबी हलीम कल्चरल एकेडमी हिंद एडिशनल सेक्रेटरी अदील सलीम तो शोबे अंग्रेजी के एडिटर डॉक्टर आबिद अहमद त मौजूद डॉक्टर हलीमन कोर सतीश विमल सजी तो अदबी जिंदगी पे अक जाम मकाल पेश आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर स
2: सतीश विमल एक एनसाइक्लोपीडिक पर्सनैलिटी है। वो एक सुखनवर हैं, शायर हैं, अदीब हैं, तर्जमाकार हैं और वो कल्चरल एक्टिविस्ट भी हैं। श्री शायर है जो इश्यूज पर लिखता है, जो समाज की तीसरी आंख में कहूंगा उन्हें बड़ी बारीक बीनी से चीजों को देखता है, उन्हें अच्छी सूरत में पेश करता है। वो एक सकाफत साज है और एक अदब साज, अदब नवाज और मंजे हुए अदीब है जिनकी तमाम लिखाई चाहे गजल नज़म या कुछ और भी वो देर पा है और कलील मुद्दती लिखाई नहीं है, उन्हें कश्मीरी कौम और से दराज तक याद करती रहेगी।
0: साहित्य एकेडमी अवार्ड याफ्त अदीब तो अफसाना निगार बे शोबे खबरिक साहिबिक सरबरा मुश्ताक अहमद मुश्ताकन बैव अत मौक पे पन तासुरात इमन लफ्जन मज
3: डॉक्टर सतीश विमल पर जम्मू कश्मीर के अदबी मंजर नामुक अक अहम नाव खास पत्म त्रेन चौन दहलन मज ब्रो कुल आव तो पथो तो तम बक वक्त त्रेन चौन जबान मज लेखान शायरी लेखान तहकीक त लेखान तनकीद त लेखान तो तिहन ये शायरी हूं तिंद तखलीक मयार कैनवास सह सठा बुलंद सठा वसी तो इस ये प्रोग्राम मीट तो इमिनेंट बजाहिर अख जान प्रोग्राम अक पुन महासिर नुमाया अदीब सू सेलिब्रेट करान तो बेच सिंह तखलीकी वथ वाशन के मुख्तलिफ मरहल तिमन मुतलिक पान तम वनान तो प्रोग्राम रूद इंतहाई मुफीद तम अदबी डिस्कोर्स ब्रो पकन अदबी रवायत ब्रो पकन नयन तम वातन बड़ मदद मिलान।
0: प्रोग्राम दौरान कुर नामावार गुलूकार उस्ताद मुनीर अहमद मीरन डॉक्टर सतीश विमल सुंद कलाम पेश यलजन कलमकार मौसूफ सवाल जवाब अख दिलचस्प सेशन त सपुद डॉक्टर सतीश विमल सिंह तासुरात
4: एकेडमी ने मेरी छोटी सी अदबी कोशिश को रिकॉग्नाइज करके आज मेरे साथ मुलाकात का एक सिलसिला शुरू किया जिसमें वादी के बहुत बड़े अदीब अदब नवाज लोग आए थे। इतनी शानदार महफिल का इनेकाद हुआ, मुदल्लल बात हुई मेरे छोटे से कंट्रीब्यूशन पर और जो मैंने कुछ लिखा है उसके हवाले से बात हुई और जो मेरा राइटिंग को लेकर के एक विजन है, एक पर्सपेक्टिव है, उस पर मैंने बात की, लोगों के सवालात के जवाब दिए।
0: प्रसार भारती हिंद डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफार्म वेव्स ओटीटी हन छु नवंबर 2024 में लॉन्च करने इन पत वुनिस्ताम यानी जुवरी खुद कम वक्त अंदर अक करोड़ यूजरन हुन निशान अबूर कोरमुत इतलात नशियात वजारत वोन अम सू मुल्क किस पब्लिक डिजिटल मीडिया इकोसिस्टमस मज लबान नमूहक अंदाज सपदन अलावा मुल्क अंदर डिजिटल मीडिया प्लेटफार्मन हिंदे हुरवन इस्तेमाल बास लगान अत सत खबरन हूं बुलेटिन अंद कशन खबरन हूं ब्या बुलेटिन सपद आकाशवाणी श्रीनगर पे 9 बजे तो 1 मिनट पे नशर अस दी इजाजत खुदा हाफिज।
5: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है, मीडियम वेव के अलावा FM 103.5 MHz पर। समीन पेशा तफसील हमारे आज नाश होने वाले प्रोग्रामों की।

स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम जो और जहां और ब्रॉडकास्ट होगा सुबह 8:45 पर मकामी अखबार की सुर्खियां पेश होंगी सुबह 9:00।

फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का प्रोग्राम पेश होगा सुपहर 3 बजे, पहाड़ी प्रोग्राम सुपहर 4 बजे और गोजरी प्रोग्राम रोज की तरह नाश होगा शाम 5 बजे। देहाती भाई अपना प्रोग्राम समाप्त करेंगे शाम 6:10 पर। हालात हाजरा की जानकारी प्रोग्राम शहरबीन में मिलेगी शाम 7 बजे। रात 8 बजे प्रोग्राम वादी की आवाज नष्ट होगा और जिला नामा नष्ट होगा रात 8:30 पर। आज का जिला नामा जिला कुपवारा से मुतल्लिक है। शब 10 बजे गजलों का फरमाइशी हफ्तावार प्रोग्राम पेश होगा हेलो महफिल गजल। समय यह है तफसील हमारे आज नष्ट होने वाले प्रोग्रामों की।

आकाशवाणी का ये श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव के अलावा FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के 8 बज रहे हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रभात पेश होंगे।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिवकुमार आज दोपहर कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। और महिला क्रिकेट में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। एक रिपोर्ट।
1: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डी के शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डी के शिवकुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पहले चरण में लाभार्थियों को बैंक खाते में आज से ही 3,000 रुपए भेजना शुरू होगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। नवान्न में दोपहर 12:30 बजे उद्घाटन समारोह में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की मंत्री अग्निमित्रा पल उपस्थित रहेंगी। साथ ही राज्य की सभी ब्लॉक, नगर पालिकाएं और कलकत्ता नगर निगम क्षेत्र में वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका से जुड़ा रहेगा। पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए जिला अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। उद्घाटन के बाद प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका क्षेत्र में चुने गए 100 अन्नपूर्णा योजना लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र प्रदान किया जाएगा। काशफिन नाहर, आकाशवाणी संवाद, कोलकाता।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की।
3: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं।

0: देना पड़ता है। वहीं जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
1: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
0: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
2: लगभग 1 साल से यहां से दवाई ले रहा हूं, सस्ती दवाई मिलती है। डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
0: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्रीय शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। वे देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य चुनाव आयोग की 2 दिन की उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य चुनाव आयुक्त शांत मनु करेंगे। सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक WPI को धीरे धीरे समाप्त करने और उसकी जगह एक व्यापक उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय देश की मुद्रास्फीति और मूल्य निर्धारण डेटा संरचना को आधुनिक बनाने और इसे वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप बनाने के लिए लिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि WPI के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने की मंजूरी दी गई है। संशोधित थोक मूल्य सूचकांक और नया उत्पादक मूल्य सूचकांक 15 जून को जारी किया जाएगा। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने डॉ. खलीलुर रहमान को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है।

0: जयशंकर ने कहा है कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉक्टर रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क बढ़ेंगे और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। और बात खेलों की, तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज चमक के साथ आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक केरलम और माहे में अत्यधिक वर्षा का अनुमान भी व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद विशाल। CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद के बीच केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई, आज के सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, CBSE चेयरमैन और सचिव हटाए गए, OSM टेंडर की जांच के लिए समिति गठित, 1 महीने में देगी रिपोर्ट। वहीं जनसत्ता ने लिखा है, पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर साइबर हमला, CBSE ने कहा सेवाओं को बाधित करने का प्रयास। नेपाल से सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की भूमिका का सवाल ही नहीं, विदेश मंत्रालय का ये बयान दैनिक जागरण में है। विवाद सुलझाने में चीन और ब्रिटेन को शामिल करने की नेपाल की मांग, भारत ने की खारिज। शिक्षा की शक्ति से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें युवा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये आह्वान वीर अर्जुन में है। एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा, जब युवा शिक्षा और प्रौद्योगिकी की शक्ति के बल पर आगे बढ़ेंगे तो एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में टूट की आशंका को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी ने लिखा है, तृणमूल के 50 विधायकों का बगावती रुख, विधानसभा अध्यक्ष को सौंप सकते हैं प्रस्ताव। इस खबर पर राजस्थान पत्रिका ने संपादकीय में लिखा है, राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को आज आत्ममंथन की जरूरत है। सत्ता जाते ही उन्हें ना विचारधारा की चिंता रहती है और ना ही अनुशासन की। बीते 15 वर्ष में पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज रही तृणमूल कांग्रेस में अब जो कुछ हो रहा है वो खुली बगावत की तरह है। दुश्मन की वायु रक्षा को तबाह करेगी रुद्रम 2 मिसाइल, अमर उजाला के अनुसार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और वायुसेना ने हवा से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक

0: हवा से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज दोपहर बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना। पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। और जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: जी आप पैगाम सुबह सुन रहे हैं आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से। मैं हूं आपका मेजबान जहूर अहमद और मेरे साथ हैं साइका सलीम।
3: जी जहूर, यहाँ पर अपने लिसनर्स के साथ ये शेयर करना चाहेंगे, उनको बताना चाहेंगे कि हमारे जम्मू कश्मीर से 2026 आज मैंने हज की वापसी का मरहला जो है, ये सिलसिला जो है कल यानी 2 जून से शुरू हो चुका है और कुल मिलाकर 144 आज़मीन हज यानी हाजी साहिबान का पहला बैच, पहला ग्रुप जो है हज का फरीज़ा अदा करने के बाद श्रीनगर एयरपोर्ट पर जो है कल उतरे हैं, जिनमें अगर मर्द हजरात की बात करें तो उनकी तादाद 74 और ख़वातीन जिसमें 70 शामिल हैं।
2: चीफ मिनिस्टर साहब थी मोजन तिमन इस्तकबाल कर श्रीनगर एयरपोर्ट पर।
3: बिल्कुल।
2: तो अगर इस पूछो ये रोज ये सिलसिला जारी फिलहाल 16 जून तक
3: रहेगा, ये जारी रहेगा। हाँ। ये सिलसिला जारी तो रहेगा।
2: उस टोटल इमसन हज सब गमित तिमन हूँ तदाद चोर सात शी अत मर्द 2,583 तो खवातीन जरवंजा।
3: बिल्कुल। तो ये वनो पिसनरन ये कि आज ती इंशाल्लाह आज ती इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर पे बे अख बैच हाजी हजे साहिबान हूँ। तो यहाँ पर ये भी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आप सब का ये हजे अकबर का फरीजा कबूल फरमाए और जिनकी ख्वाहिशात जो है अभी इंतज़ार में है, किसी वजह से वो रुकी हुई हैं, उनकी इल्तिजाएँ अभी पूरी नहीं हुई है हजे अकबर को पूरा करने की, उन्हें भी अल्लाह पाक जल्द अज जल्द उस मकाम तक पहुँचाए, वहाँ के दीदार जो है फरमाए।
2: जी जी एक नगमा सुन दें।
3: जी जरूर।
2: इशुनातिया कलाम

0: गर्मी होती है तो बहुत शिद्दत की गर्मी होती है, और जब बारिशें होती हैं तेज़ बारिशें होती हैं, और कहीं पे भी होती हैं जालाबारियाँ, बहुत
1: जी जी
0: खतरनाक
1: लो
0: जालाबारियाँ।
1: टेम्परेचर
0: ऐसा
1: भी
0: पहले हुआ नहीं है, ऐसी चीज़ें पहले नहीं होती थी, ये सारी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है,
1: जी जी बिल्कुल। और हम ये कहेंगे कि हर रोज़ जो है मौसम एक नई करवट
0: बदलता है
1: बदल रहा है।
0: जी।
1: अभी की अगर बात करें तो हम अगर आज के लाइव टेम्परेचर की बात करें तो अभी का लाइव टेम्परेचर जो श्रीनगर में है वो 19 डिग्री सेंटीग्रेड बना हुआ
0: जी
1: है, जो कि आज 26 डिग्री के आसपास जाने के आसार जो हैं, जो रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं। और रात का टेम्परेचर जो है 14 डिग्रीज के आसपास जाने के चांसेस हैं। यहाँ पर ये भी अपने लिसनर्स को बताना चाहेंगे कि गुज़िश्ता रात इस मौसम की गर्म तरीन रात बताई जा रही है, जिसका टेम्परेचर 19.2 यानी 19.2 रिकॉर्ड किया गया।
0: जी अब महकमे मौसमियात ने फिर से कुछ पेशगोई किए हैं
1: पेशगोई किया।
0: कि
1: जी जी
0: 5 जून से जो है मौसम फिर से करवट ले रहा है, और ये बादल मतलब हो रहे हैं, और बारिशें भी हो रही हैं,
1: जी
0: हेल स्टॉर्म भी होने की
1: चांसेस हैं।
0: चांसेस हैं।
1: जी
0: तो हम यही तवक्कु करें कि ऐसी चीज़ें ना हो, क्योंकि जालाबारी से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और फसल तो पूरी तरह से मेरे ख्याल से बहुत सारे जगहों पे
1: नुकसान
0: ऐसा हुआ है,
1: पहुंचा है
0: बहुत ज़्यादा
1: उसको,
0: नुकसान
1: बहुत
0: हुआ है।
1: नुकसान पहुंचा
0: तो
1: है।
0: हम
1: लेकिन जैसा कि अभी आपने फरमाया कि ये हम लोगों के कोताहियों की वजह से, गलतियों की वजह से ही हुआ, जो कि अब हो रहा है ये एकदम से नहीं हुआ, धीरे धीरे
0: धीरे धीरे हो
1: हमने
0: रहा
1: जो
0: है।
1: ही कोताहियाँ की हैं उनका असर जो है अब ग्लोबल वार्मिंग जो है उसकी सूरत में दिखा रहा
0: दिखा
1: है।
0: रहा है।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेल्सी रोड्रिग्ज आज से भारत के 5 रोजा दौरे पर रहेंगी। सीनियर कांग्रेस रहनुमा डी के शिव कुमार को आज से पहर कर्नाटक के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी रियासत में अहल खवातीन को 3,000 रुपये माहाना फराहम करने की अन्नपूर्णा योजना का आगाज करेंगे। बांग्लादेश के वजीर खारजा खलीलुर रहमान को अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 81वें सेशन का सदर मुंतखब किया गया है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने उन्हें मुबारकबाद दी। जर्मनी ने भारतीय बाशिंदों के लिए उसके हवाई अड्डे से गुजरकर जाने वाले मुसाफिरों के लिए ट्रांजिट वीजा की जरूरत आज से खत्म कर दी है। और खवातीन क्रिकेट में तीसरे और आखिरी T20 बैनुल अक्वामी मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली। अब खबरें तफसील से। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेल्सी रोड्रिग्ज आज से भारत के 5 रोजा दौरे पर रहेंगी। अपने दौरे के दौरान वो भारत वेनेजुएला के ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे का जायजा लेने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ 2 तरफा बातचीत करेंगी। दोनों ममालिक तिजारत सरमायाकारी तवानाई काबिल तजदीद तवानाई हिफ्जान सेहत और दवा साजी समेत अहम शोबों में बाहमी तआवुन के इम्कानात का जायजा लेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि वेनेजुएला के उमूर खारजा मईशत खजाने और साइंस और टेक्नोलॉजी से मुतालिक वजरा पर मुश्तमिल एक आला सतही वफद भी मोहतरमा रोड्रिग्स भी के हमरा भारत पहुंचेगा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: भारत और वेनेजुएला के दरमियान खास तौर पर तवानाई और तजारत के शोबों में दोस्ताना ताल्लुकात हैं। इस दौरे से 2 तरफा ताल्लुकात के मुस्तहकम होने और मुख्तलिफ शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताउन में मजीद इजाफा होने की उम्मीद है। वजीर आजम के साथ बातचीत के दौरान तवानाई की यकीनी फ्राहमी, तजारत और सरमायाकारी, दवासाजी, हिफ्जान सेहत, नकल व हमल और काबिल तजदीद तवानाई समेत बाहमी मफाद के शोबों में ताउन को मुस्तहकम करने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वेनेजुएला का वफद तवानाई, दवासाजी और ऑटोमोबाइल से मुतालिक शोबों से वाबस्ता इदारों का दौरा करेगा। इस दौरे का मकसद इश्तराक के मौके का जायजा लेना और भारत की तकनीकी और सनती सलाहियतों के बारे में अहम मालूमात हासिल करना है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: भारत की ब्रिक्स सदारत में आज ओडिशा के शहर पुरी में ब्रिक्स डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की पहली जाती तौर पर तकनीकी मीटिंग शुरू हो रही है। इस 3 रोजा मीटिंग में 11 ब्रिक्स और पार्टनर ममालिक के मंदुबीन, पॉलिसी साज और आफात के बंदोबस्त के माहिरीन शिरकत करेंगे। इस मीटिंग में आलमी खित्ते जनूब में आफात के ताल्लुक से लचकदारी को मुस्तहकम करने, पायदार तरक्की को फरोग देने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। सीनियर कांग्रेस रहनुमा डी के शिव कुमार को आज से पहर कर्नाटक के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। रियासत के गवर्नर थावरचंद गहलोत आज शाम 4 बजे बेंगलुरु में वाकई लोक भवन में जनाब शिव कुमार और नई काबीना के अरकान को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। इससे पहले जनाब सिद्धरमैया के वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा देने के बाद जनाब शिव कुमार के लिए इस आला ओहदे के लिए रास्ता साफ हो गया था। इसके साथ ही कर्नाटक कांग्रेस में लंबे अरसे से इकतदार के लिए जारी रस्साकशी भी खत्म हो गई। जनाब शिव कुमार को 2023 के असेंबली इंतखाबात में

0: की जीत के वक्त से ही इस आला ओहदे के लिए उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा था। जुमेरात को जनाब सिद्धरमैया ने बेंगलुरु में वाकई अपनी रिहाइश गाह पर सुबह मुनाकिद होने वाली एक मीटिंग में अपनी काबीना के वजरा को अपने इस्तीफे के ताल्लुक से बताया था और इस बात का इशारा दिया था कि कांग्रेस आला कमान की हिदायत के मुताबिक जनाब शिव कुमार वजीर आला का ओहदा संभालेंगे। मगरबी बंगाल हुकूमत आज समाजी फलाह बहबूद की एक बड़ी पहल अन्नपूर्णा योजना का आगाज़ करेगी। वजीर आला शुभेंदु अधिकारी इस स्कीम का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। इस इफ्तिताही तकरीब में अन्नपूर्णा योजना के मुस्तफिदीन तमाम ब्लॉक्स, म्यूनसिपल्टियों और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में वर्चुअल तरीके से शिरकत करेंगे। मकामी सतह पर शिरकत को यकीनी बनाने के लिए अरकान असम्बली को मकामी सतह पर प्रोग्रामों में मदऊ किया गया है और वजीर आला का असल प्रोग्राम तमाम ब्लॉक और म्यूनसिपल हेडक्वार्टर्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बराह रास्त नशर किया जाएगा। वजीर आला के इफ्तिताही खिताब के फौरन बाद इजाज़त नामे तकसीम किए जाएंगे। हर ब्लॉक म्यूनसिपल्टी और कोलकाता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 100 मुंतखब मुस्तफिदीन बाकायदा इजाज़त नामे हासिल करेंगे। पहले मरहले में आज से मुस्तफिदीन को 3,000 रुपये बराह रास्त उनके खातों में मिलने शुरू हो जाएंगे। नाबंदा में इफ्तिताही तकरीब 12:30 बजे मुनाकिद की जाएगी, जिसमें ख्वातीन, बच्चों की तरक्की और समाजी बहबूद से मुतालिक महकमे की वजीर अग्निमित्र पॉल शिरकत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क्यादत में गुज़श्ता 12 साल के दौरान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर भारत में एक नुमाया तब्दीली आई है। इस मुद्दत के दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख्वातीन और नौजवानों की बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदामात किए। आकाशवाणी का खबरों का शोबा आपके लिए अहम शोबों में गुज़श्ता 12 साल के दौरान हुकूमत की कोशिशों पर एक खसूसी फीचर लेकर आया है। आज हम मुतवस्सित तबके की बहबूद के लिए हुकूमत की तरफ से किए गए इकदामात पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: पिछले 12 साल में हुकूमत ने वसी पैमाने पर इस्लाहात करके मुतवस्सित तबके को बाइख्तियार बनाया है। आसान टैक्स निज़ाम और मजबूत बैंकिंग, इंश्योरेंस और पेंशन के निज़ाम की वजह से उनके माली तहफ़ में इजाफा हुआ है। नए टैक्स निज़ाम के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले अफराद हरगिज टैक्स अदा नहीं कर रहे हैं, उन्हें बिल्कुल टैक्स अदा नहीं करना पड़ता। खासतौर पर मुतवस्सित तबके के लिए GST निज़ाम ने टैक्सों को आसान बनाकर और रोज़मर्रा के अखराजात को कम करके 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने करोड़ों लोगों को महफूज मकानात फराहम करके उनकी जिंदगियों को बदल दिया है, जिससे कई ठोस फायदे हुए हैं। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने कहा कि ये स्कीम गरीबों के लिए रिहाइश को यकीनी बना रही है और किराए के मकानात में रहने वालों के लिए राहत का बाइस बन रही है।
2: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है, जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं।
1: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने 43.52 करोड़ हेल्थ कार्ड्स बनाए हैं, जिससे सेहत की देखभाल के तहफ़ तक रसाई में इजाफा हुआ है। जबकि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना स्कीम जन औषधि केंद्रों के जरिए 50% से 80% कम कीमतों पर मयारी जेनरिक अद्वियात फराहम कर रही है। आकाशवाणी न्यूज़ से बात करते हुए बिहार के ब्रह्मदेव ने कहा कि इन केंद्रों पर अद्वियात मार्केट के मुकाबले इंतहाई सस्ती कीमत पर दस्तयाब हैं।
3: लगभग 1 साल से यहाँ से दवाई ले रहा हूँ, तो सस्ती दवाई मिलती है। डॉक्टर का भी सलाह है कि जन औषधि से दवाई खरीदें।
1: आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बे।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बांग्लादेश के वजीर खारजा खलीलुर रहमान को अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 81वें सेशन का सदर मुंतखब किया गया है। डॉक्टर रहमान को अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के लिए कराए गए इंतखाब में कामयाबी हासिल हुई है। उन्हें 99 वोट मिले, जबकि इस कसीर मुल्क निज़ाम के लिए कुब्रुस के खसूसी सफीर एंड्रिस काकोरिस को 91 वोट मिले। اقوام متحدہ کے اعلیٰ مذاکراتی پالیسی ساز اور نمائندگی کرنے والے

0: इदारे के सरबराह के तौर पर उनकी एक साल की मुद्दत सितंबर में शुरू होगी। ये सदारत अलग अलग खित्तों के पास बारी बारी रहती है और इस मुकर्रर उसूल के मुताबिक 81वें सेशन के सदर को एशिया बहरुल काहिल ग्रुप से मुंतखब किया जाना था। अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के मुंतखबा सदर डॉक्टर रहमान ने कहा कि वो अपनी मुद्दत कार के दौरान इस इदारे का काम इंसानी हकूक पर खसूसी तवज्जो मरकूज करते हुए करेंगे और सभी रुकन मुल्कों को फ़ाल रखेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का सदर मुंतखब होने पर डॉक्टर रहमान को मुबारकबाद दी है। भारतीय शहरी जब जर्मन हवाई अड्डों से होकर किसी तीसरे मुल्क जाएंगे तो उन्हें आज से ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी। भारत में जर्मन सिफारतखाने ने ऐलान किया है कि इस छूट से उन भारतीय शहरियों के सफ़र में सहूलत हो जाएगी जो जर्मनी के रास्ते किसी दूसरे मुल्क जाते हैं। भारत ने अपने शहरियों के लिए ट्रांजिट वीज़ा को ख़त्म करने के लिए जर्मनी के इस ऐलान का खैर मकदम किया है। वजारत खारजा ने कहा कि यह ऐलान इस साल जनवरी में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के दरमियान बातचीत के बाद किया गया है जब जनाब फ्रेडरिक भारत के दौरे पर आए थे। वजारत ने कहा कि इस नए इंतज़ाम से दोनों मुल्कों के दरमियान अवाम से अवाम के दरमियान रिश्तों को मजीद फरोग हासिल होगा। जम्मू कश्मीर में रियासती इंतखाबी कमीशन आज से आला सतह की एक दो रोज़ा मीटिंग मुनाकिद करेगा। ये मीटिंग ज़िला इंतखाबी अफसरान और दीगर शख्सियतों के साथ की जाएगी जिसका मकसद मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इस इलाके में पंचायत और ज़िला तरक्याती कौंसिल के इंतखाबात की तैयारियों का जायज़ा लेना है। हमारे नामा निगार ने बताया कि रियासती इंतखाबी कमिश्नर शांत मनु इस मीटिंग की सदारत करेंगे। जम्मू कश्मीर में पंचायत और ब्लॉक तरक्याती कौंसिलों का कामकाज 9 जनवरी 2024 को रोक दिया गया था। बल्दियाती इदारों की मुद्दत कार अक्टूबर नवंबर 2023 और ज़िला तरक्याती कौंसिलों की मुद्दत कार 24 फरवरी 2026 को मुकम्मल हो गई थी। हुकूमत ने साल 2026 के प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार के लिए नामजदगियां तलब की हैं। नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। यह बावकार अवार्ड सदर जमहूरिया की जानिब से ऐसे बच्चों को अता किया जाता है जिन्होंने बहादुरी, सामाजिक खिदमत, माहौलियात, खेलकूद, आर्ट और कल्चर और साइंस और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ मैदानों में गैर मामूली खिदमत अंजाम दी हों। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज चमक के साथ तूफानी झक्कड़ की सूरत हाल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD ने केरला और माहे में अगले 2 से 3 दिनों के लिए शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने कल तक अंडमान और निकोबार जजायर, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, उत्तराखंड, मगरबी उत्तर प्रदेश और शिमाल मशरकी खित्ते में गरज चमक और तेज़ हवाएं चलने की भी पेशगोई की है। ख्वातीन क्रिकेट में कल रात टॉन्टन में खेले गए तीसरे और आखिरी T20 बैन अलावी मैच में मेज़बान इंग्लैंड ने 6 विकेट से जीत हासिल करके भारत के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। हेथर नाइट और एलिस कैप्सी की शानदार शराकत दारी की बदौलत इंग्लैंड ने आसानी से 180 रन का निशाना हासिल कर लिया। एलिस कैप्सी को इस मैच और सीरीज की बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय खवातीन ने 5 विकेट के नुकसान पर 180 रन बनाए थे। इसके जवाब में इंग्लैंड ने 18.3 ओवर्स में 4 विकेट पर 184 रन बनाए। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया कौनन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार इनकलाब ने सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की हलफबरदारी से मुतल्लिक खबर को शह सुर्खी बनाया है। अखबार की सुर्खी है, 5 नए जजों को हलफ दिलाया गया, सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 37 हुई। अखबार प्रताप की शह सुर्खी है, मोदी सरकार ने CBSE चेयरमैन व सेक्रेटरी को अहदे से हटाया, पेपर लीक मामले में कोताहियों की जाँच कराएगी हुकूमत। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, दिल्ली में BJP सदर से नेपाल के वफद की मुलाकात। अखबारात की एक और अहम सुर्खी है, भारत और जनूबी अफ्रीका ने दो तरफा रिश्तों को और मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। अखबार प्रताप ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के इस बयान को सफ़े अव्वल पर जगह दी है कि मजबूत, खुशहाल और खुदकफील भारत की तामीर में ताउन दे कबायली नौजवान।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेल्सी रोड्रिग्ज आज से भारत के 5 रोजा दौरे

0: कमी स्टोरों में हजारों नाकारा सामान मौजूदा रजाकार तंजीमों के अतिया पर इन्हिसार।
1: एक और सुर्खी, जम्मू कश्मीर लद्दाख भारत के अटूट हिस्से हैं, वजारत खारजा।
0: एक अंग्रेजी अखबार मेरे हाथ में है, एलजी सिन्हा क्लोजली मॉनिटरिंग किश्तवाड़ डोडा फ्लैश फ्लड्स, डायरेक्टर्स डीसीज टू रिमेन ऑन हाई अलर्ट, कंट्रोल्स वुमेन्स लाइटनिंग डेथ।
1: एक और अंग्रेजी रोजनामा बताता है, 11 drowned to death in 2 months as swollen streams turn deadly across Kashmir. Early snowmelt fuels strong currents as safety gaps persist.
0: 53,000 RC suspended across J&K in 2 months. 1 lakh vehicles faced action in 3 years.
1: Two dead crops ravaged in fresh weather fury across J&K.
0: एक और अखबार की सुर्खी है, 5 न्यू सुप्रीम कोर्ट जजेस स्वॉर्न इन, सीजीआई एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑथ ऑफ ऑफिस, एससी स्ट्रेंथ राइजेस टू 37।
1: पॉलिटिकल यूनिटी इन जेएनके, आवर विजन, अपनी पार्टी। एक और सुर्खी अंग्रेजी खबरनामे की, एक्सपर्ट पैनल रिकमेंड्स माइनिंग बैन इन सुखनाग ट्राउट जोन, रिवर रेस्टोरेशन मेजर्स।
0: यहाँ मेरे हाथ में जो अखबार है इसकी सुर्खी है, आईसीएमआर इनवाइट्स कैंसर रिसर्च प्रपोजल्स फॉर जेएनके। समीन सुर्खियां जारी है, आप हमारे साथ बनी रहिए।
2: हुकुम कर सा यार,
3: हे वुंचुगात अक्षी डूरिस गुरु गुरु करन बासास वुडर पेट के जमीन खाता सगनाइवि
2: आंसा वो क्या कर या सो चुम प्रोन आब मोटर आ चु टाइम लगनी सगवनस
3: दाचा चेतमा छु तग तम सातन कुछ फिर वने मई मसान बे कुन कंपनी हुंद आब मोटर जमींदार हासा छु पद किन डोक सिर्फ होंडा वत पाख्त मे सि जेके सिटेंस मौलाना आजाद रोड श्रीनगर त छ वंगिरस एक्शन स्कीम चला
2: त्यासा गयो ठी मगर या प्रोन साब मोटरस क्यासा कर
3: हे या स नेमो तू तिम दिन अम बदलो ऐसे बदल नो आप मोटर बाकी पोस दिमो अतस क्या।
4: आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे, क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए, तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई
5: पहचान।
6: खारा गोम गम
5: गम वत लगस मे सज कश्मीर मोटर्स मौलाना आजाद रोड श्रीनगर तानव पियाजो इलेक्ट्रिक ऑटो 40,000 कैश बैक ऑफर सुता वो डाउन पेमेंट 60 किलोमीटर अकिस चार्जस पे दिवान
7: पयामे सुबह।
8: एक ऐसा प्रोग्राम जो मालूमाती भी है और दिलचस्प भी,
7: जहां आप सुनते हैं सुरीले नगमे और साथी होती है जिंदगी के हर शोबे से जुड़ी शख्सियात से बात,
8: यानी एक मुतवाजिन गुफ्तगू रोज सिर्फ आपके लिए।
7: हर पहलू को छूता हुआ एक मुकम्मल प्रोग्राम पयामे सुबह,
8: हर रोज सुबह 7:10 से 11:30 तक
7: आकाशवाणी श्रीनगर से पयामे सुबह।
0: सुर्खियों में फिर से आपका खैर मकदम।
1: एक खबरनामे, उर्दू खबरनामे की एक खबर बताती है, उमर अब्दुल्ला की सदारत में रॉयल स्प्रिंग ऑफ कोर्स की गवर्निंग बॉडी का इजलास।
0: यहाँ मेरे हाथ में जो अखबार है सुर्खी है, ट्रंप की नेतन्याहू को फटकार, लेबनान पर हमले बंद करो, कहा तुम पागल हो, मैं ना होता तो तुम जेल में होते।
1: एक और सुर्खी बताती है, रिंग के बादशाह मोहम्मद अली की 10वीं बरसी, आज यानी 3 जून को मनाई जाएगी, इस मौके पर अजीम बॉक्सर के लिए दुआई या तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा।
0: रूसी हमलों में यूक्रेन के दाल हुकूमत कैप में 3 हलाक, मुतदिद तबाहशुदा इमारतों में फंस गए।
1: इंतखाबी ट्रायल्स 14 और 15 जून को होंगे। जम्मू कश्मीर टेंस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन JKTBCA ने ऐलान किया है कि

0: आदाब, यह आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं बसारत गुल। जम्मू कश्मीर के सभी अजला में 100 रोज पर मुश्तमिल नशा मुक्त अभियान शदुमत के साथ जारी है। सिविल और पुलिस इंतजामिया की जानिब से अवामी बेदारी प्रोग्रामों के इनेकाद का सिलसिला जारी है, जबकि मुनशियात फरोशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाइयां की जा रही है। इंतजामिया ने इस अभियान को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का अजम किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पैगाम।
1: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार्ड आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चलाचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
0: लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू सूबे के सैलाब से मुतासिर डोडा और किश्तवाड़ अजला के डिप्टी कमिश्नरों को हिदायत दी है कि वह मुकम्मल चौकसी बरकरार रखें और बुनियादी सहूलियात की फौरी बहाली को यकीनी बनाएं। उन्होंने लोगों की राहत रसानी के लिए तैनात टीमों को हाई अलर्ट पर रहने और सूरत हाल की मुसलसल निगरानी करने की ताकीद की है। LG ने सड़कों, शहराओं और पानी की सप्लाई लाइनों की फौरी बहाली को यकीनी बनाने पर जोर दिया है। मनोज सिन्हा ने कहा कि बुनियादी सहूलियात की बहाली का काम मुकम्मल होते ही नुकसानात का तखमीना लगाने का अमल शुरू किया जाएगा। उन्होंने कुडर डोडा की पिंकी देवी, जो आसमानी बिजली गिरने के वाके में अजा हो गई, के लवाइकीन के साथ ताजियत का इजहार किया है। डिप्टी कमिश्नर ने मुतासर खानदान को फौरी इमदाद और हर मुमकिन ताउन फराहम करने के लिए कहा गया है। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने कल एक मीटिंग के दौरान भारत औद्योगिक विकास योजना में जम्मू कश्मीर के सनअत हरफत महकमे की शिरकत के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने इस सिलसिले में मुनज्जम मनसूबाबंदी और तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत दी। वाजह रहे कि भारत औद्योगिक विकास योजना मरकजी सरकार की एक फ्लैगशिप स्कीम है, जिसका मकसद मुल्क भर में आलमी मयार की प्लग एंड प्ले सनअती पार्क्स कायम करना है। एम्बुलेंस गाड़ी को तिबी निगहदाश्त के शोबे में रीढ़ की हड्डियों की हैसियत हासिल होती है। वक्त की ज़रूरत है कि जम्मू कश्मीर में एम्बुलेंस कॉरिडोर कायम किए जाएं। इस ताल्लुक से कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर श्रीनगर के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट और सीनियर कंसल्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नज़ीर अहमद खान ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
2: जब भी एम्बुलेंस चले, जहां से भी चले, चाहे वो साइनगर बजाए या ना बजाए, उसको जगह देनी चाहिए, क्योंकि कभी खाली एम्बुलेंस भी जाती है, उसको पेशेंट कहीं से कहीं लाना होता है तो कभी लोग सोचते हैं कि शायद इसमें इमरजेंसी नहीं है, नहीं जगह देते हैं, तो उसके लिए एक बहुत जरूरी इम्पोर्टेंट चीज है जो लोगों के ध्यान में आना चाहिए। गवर्नमेंट भी एक ऐसी पॉलिसी बनाए, जब रोड बनते हैं तो उस रोड में एक लाइन होनी चाहिए, जिस तरह से एक VIP मूवमेंट होती है, उनको जगह हर जगह देते हैं, इसी तरह से एक एम्बुलेंस को भी हर जगह देना चाहिए।
0: एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आर्मड आनंद जैन ने श्रीनगर में एक मीटिंग में श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 के लिए की जाने वाली तैयारियों का तफसीली जायजा लिया। मीटिंग में आर्मड पुलिस यूनिट से मुतलिक ऑपरेशनल और इंतजामी अमूर पर भी गौर किया गया। ADGP ने अफसरान को वसाइल की बरवक्त फराहमी और तमाम ऑपरेशनल मनसूबों पर मौसल अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत दी, ताकि यात्रा का महफूज और पुरअमन इनेकाद यकीनी बनाया जा सके। मरकजी सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के लिए नामजदगियां तलब की हैं। नामजदगियों के इंदराज की आखिरी तारीख 31 जुलाई मुकर्रर की गई है। यह एजाज बहादुरी, समाजी खिदमत, माहौलियात, खेल, फन और सकाफत और साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे शोबों में गैर मामूली सलाहियतों का मुजाहरा करने वाले बच्चों को दिया जाता है। खवातीन व अतफाल की तरक्की की वजारत ने बताया कि किसी भी शहरी की जानिब से नामजदगियां सिर्फ कौमी एजाजात पोर्टल के जरिए वसूल की जाएंगी। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स OTT ने नवंबर 2024 में आगाज के बाद 2 साल से भी कम अरसे में 1 करोड़ रजिस्टर्ड सार्फीन का संग मेल उबूर कर लिया है। इतलात नशरियात की वजारत ने कहा कि यह कामयाबी मुल्क के अवामी डिजिटल मीडिया निज़ाम की तरक्की में एक अहम पेशरफ की अकास है। वजारत ने मजीद बताया कि 1 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर सार्फीन और 1,40,00,000 से ज्यादा डाउनलोड्स हासिल करने के बाद वेव्स OTT अब अपनी तरक्की के अगले मरहले पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। कौमी पंचायत अवार्ड 2025 की तकरीब आज नई दिल्ली में मुनाकिद हो रही है। इस मौके पर मुल्क भर की 42 नुमाया पंचायतों को उनकी शानदार कारकर्दगी के एतराफ में एजाजात से नवाजा जाएगा। अवार्ड हासिल करने वाली पंचायतों के सरबराहान अपनी बेहतरीन कारकर्दगी, इख्तराई इकदाम और नुमाया कामयाबियों का खुलासा पेश करेंगे, ताकि दीगर पंचायतें उनके तजुर्बा से

0: मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियाँ बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग।
1: घर का AC हो या गीजर, वोल्टेज का हीरो सिर्फ एक BS वॉइस स्टेबिलाईजर्स। पावर फ्लक्चुएशन सॉर्टेड, लॉन्ग लाइफ फॉर योर अप्लायंसेस गारंटीड। BS वॉइस, दैट्स बेस्ट सर्विस। कॉल नाउ 9419001960।
2: सूफी सदा ये प्रोग्राम चुप रह दोह आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बजे पेठ साढ़े 10 बजे तम नश शब्दान वाली बोजो प्रोग्राम सूफी सदा।

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: सभी तो ऐसे प्रोग्राम बोजान सूफी सदा ये प्रोग्राम छु प्रत दोह आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बजे पेठ 10:30 बजन ताम नश्र सब्दान।

0: जी दोस्तों, आप बने हुए हैं पयाम सुब के साथ और आपका अब इंतज़ार जो है ख़त्म कर देते हैं और इस तजब्ज़ुब को ख़त्म कर देते हैं, इसको अलविदा कह देते हैं। बता देते हैं आपको कि आज के इस लाइव शो की जीनत हैं मिस बिल्किस मीर जी, जो कश्मीर से ताल्लुक़ रखती हैं, एक पैरा ओलंपिक एथलीट हैं, एक जाना माना नाम है, बल्कि ये कह सकते हैं कि बैन अल-अक़वामी सतह पर शोहरत याफ्ता हैं, वाटर स्पोर्ट्स कोच भी हैं, जिन्हें वसी पैमाने पर कश्मीर की एक्वावुमन या एक्वाक्वीन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एक और ख़ास बात जो है हम आपसे बताना चाहेंगे कि बिल्किस जी जो हैं ना सिर्फ कश्मीर की पहली बल्कि मुल्क की भी, जी हाँ, पहली हिंदुस्तानी खातून के तौर पर तारीख रकम कर चुकी हैं। बिल्किस जी, पयाम सुब के इस लाइव शो पर आने के लिए, आपका इस दावत को एक्सेप्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इस्तकबाल करते हैं।
1: शुक्रिया, आज आप लोगों ने मुझे दावत दिया स्टूडियो में आने के लिए, आपके साथ रूबरू होने का, उसके लिए थैंक्स अ लॉट,
0: मोस्ट वेलकम। और यहाँ पर ये हम आपसे आपके बचपन की और आपकी याद दहानी करते हुए ये पूछना चाहेंगे, आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपका बचपन गुजरा, कहाँ से आप ताल्लुक रखती हैं, कहाँ से आपकी पढ़ाई हुई है, ये मुख्तसर तौर पर हम अपने लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे।
1: मेरा श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से ही ताल्लुक है और मैं डाउन टाउन से बिलोंग करती हूँ। मेरी जो स्कूलिंग जो हुई है डाउन टाउन में, ऐसे मॉडल स्कूल एक था जहाँ मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की, स्टार्ट किया। और मेरा जो प्लेइंग कैरियर था, ये जो फेमस डल लेक है वहाँ से स्टार्ट हुआ और ये सफ़र 1998 से स्टार्ट हुआ।
0: जी, और यहाँ पर ये भी आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या खेलों का रुझान जो है पहले से था या फिर बाद में जब आगे चली आप तो ये रुझान फिर आप में आ गया?
1: अगर हम बात करेंगे 1998 की, जब मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया, तब हमारे समाज में स्पोर्ट्स का नामो निशान नहीं था, तब स्पोर्ट्स को दरबदरी की नज़रिए से देखते थे, तब स्पोर्ट्स हमारे समाज में ऐसा कोई रोल मॉडल नहीं था जो चाहे वो स्कूल लेवल पे हम बता सके या घर वालों को बता सके या समाज को बता सके कि हम स्पोर्ट्स को अडॉप्ट करना चाहते हैं। किसी भी फील्ड में जाने से पहले अगर आपके सामने एक रोल मॉडल होता है तो उसमें समाज, घर वालों को समझाना बड़ा आसान होता था। मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, खासतौर तब के ज़माने की बात अगर करेंगे, आज पूरे 28 ईयर्स होते थे, एक लड़की का स्ट्रगल उसके घर के दरवाजे से स्टार्ट होता था और हमारे माशरे में स्पोर्ट्स जैसी एक्टिविटीज़ नहीं होती थी। और फिर एक ऐसा चैलेंज लेना एडवेंचर स्पोर्ट्स, जहाँ पर ये हमेशा बताया गया था कि भाई ये लड़कों का स्पोर्ट्स है, पानी रिलेटेड स्पोर्ट्स है, तो शायद लड़कियाँ इसमें आगे नहीं जा पाएंगे। आप मानो कि एक

0: जिद मानो कि कुछ भी मेरी जिद थी कि नहीं मुझे इस स्पोर्ट्स में कुछ अलग करके दिखाना है और पूरे दुनिया में और पूरे समाज में ये मैसेज देना चाहती थी कि अगर लड़की को सपोर्ट किया जाएगा कोई भी फील्ड उसके लिए मुश्किल नहीं है।
1: यहाँ पे बिल्कीज जी आपसे ये हम जानना चाहेंगे कि बहुत एक जब एक गर्ल इस फील्ड में आती है और जिस दौर की आप बात कर रही हैं तब तो खेलों का इतना रुझान नहीं था, आज तो पेरेंट्स फिर भी सपोर्टिंग रहते हैं, उस दौर में कैसे आपने उस चीज को कूप अप किया, कितना स्ट्रगलिंग था?
0: मेरा जो प्लेइंग करियर रहा है अगर आप पूरा 98 से लेकर अभी तक का देखोगे ये इट वाज फुल ऑफ स्ट्रगल, मतलब मैं टूटी तो बहुत मगर हार कभी नहीं मानी क्योंकि मेरा मानना था जब आप पहली बार किसी फील्ड में आते हो तो आप एक लीडर बन के आते हो और आपको रास्ता बनाना है, नो मैटर कि आपको कितने हर्डल्स आएंगे स्ट्रगल आएगा। मेरा मानना है एज अ स्पोर्ट्स पर्सन जब हम अपने फिजिकल फिटनेस पे काम करते हैं तो हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, बोलते हैं कि हमें मसल्स को स्ट्रांग करना है, हम एंड्योरेंस करते हैं, हम बोलते हैं कि हमारा एंड्योरेंस स्टेमिना बढ़ जाएगा जब हम ट्रेनिंग करते हैं। तो मेरा यहाँ पर यह भी मानना है लाइफ का जो स्ट्रगल है या सेट बैक्स है फेलियर्स है वो भी आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बनाता है। और मेरा मानना है कि अल्लाह ताला जब आप पे कोई भी स्ट्रगल होता है आता है आपकी लाइफ में आता है तो अब हम बोलते हैं अरे रब्बा मेरे साथ ही क्यों हुआ, खुदाया मैसेज क्या जी कोई या मेरे साथ ही क्यों नहीं, वो अल्लाह ताला की तरह से आपकी ट्रेनिंग होती है एक स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। जैसे एज अ स्पोर्ट्स पर्सन मैं मानती हूँ जब भी आपकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं होगा तो उस लाइफ में कोई मजा नहीं है, लाइफ मीन्स स्ट्रगल, अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं है तो मुझे नहीं लगता है उस कामयाबी में उतना मजा आता है। तो जो भी आपके सेटबैक स्ट्रगल उसको पॉजिटिव वे में लेना है और मैंने भी 98 से यही देखा कि मेरा वाटर स्पोर्ट्स में आना, वाटर स्पोर्ट्स मेरे लिए सिर्फ एक स्पोर्ट्स नहीं था, वाटर स्पोर्ट्स मेरी आवाज बनी और आवाज बनी कि दुनिया में ये बताया कि कश्मीर की बेटी भारत की बेटी वो किसी भी फील्ड में, इट इज नॉट ओनली स्पोर्ट्स, किसी भी फील्ड में वो एक्सेल कर सकती। अगर बात करेंगे मेरे स्पोर्ट्स की, मेरा जो स्पोर्ट्स है ये यूरोपियन डोमिनेटेड स्पोर्ट्स, ये कैनेडियन स्पोर्ट्स, इसमें अगर देखा जाएगा सबसे ज्यादा अगर डोमिनेट करते तो यूरोपियन वाले करते, जैसे आपने जिक्र किया ओलंपिक्स में मैं जूरी मेंबर थी, आई वॉज नॉट ओनली फर्स्ट इंडियन आई वॉज फर्स्ट एशियन ऑल्सो, सो इट वॉज अ मतलब हमारे हम सब लड़कियों के लिए ये बहुत बड़ी बात है, इट इज नॉट ओनली बिल्किस की कामयाबी, ये उन लड़की कामयाबी जो मेरे बाद स्पोर्ट्स में आएंगे जिनके लिए एक रास्ता बना। आपने जो मुझे पूछा कितना स्ट्रगल बना था, मैं जब मेरा जो स्ट्रगल था ये घर के दरवाजे से स्टार्ट हुआ
1: जी,
0: तब ट्रैक सूट डालना ही एक चैलेंज था।
1: एग्जैक्टली
2: आपने अभी बिल्किस जी फरमाया कि मैं जब इस फील्ड में आना चाहती थी तब मेरा कोई रोल मॉडल नहीं था, क्योंकि हम अगर किसी को कन्विंस करना हो तो हमें हम बताएंगे कि इसको देखें आप उसको देखें, मतलब उसने इस चीज़ में नाम किया इस स्पोर्ट में ये आगे गया, आपका ऐसा कुछ नहीं था, तो कैसे किया आपने अपने माँ बाप को इस चीज़ के लिए मोटिवेट?
0: इनिशियली अगर देखा जाएगा तो मेरे घर से भी कोई सपोर्ट नहीं था, समाज से भी उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा था जितना एक बच्चे को मिलना चाहिए, क्योंकि एक एथलीट की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है
1: एनकरेजमेंट,
0: जब उसको शाबाशी देते जब वो हार कर आता जीत कर आते तो उसके कंधे पे जब हाथ रखते तो बोलते शाबाश आप नेक्स्ट टाइम कर सकते, तो मेरे वो प्लेइंग करियर में आज भी मिसिंग था और वो दर्द अंदर है, बट मैं समाज को और घर वालों को उसमें दोष नहीं दे दूंगी, वो जो हाथ क्या थे कि स्पोर्ट्स को एज अ कैरियर नहीं देते
1: जी बिल्कुल,
0: क्योंकि हमारे समाज में मेरे घर में कोई ऐसी अवेयरनेस नहीं था, मेरे माँ बाप को डर था कि हमारी बच्ची का जो फ्यूचर है वो डार्क है, क्यों? क्योंकि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है और खासतौर तब के जमाने में, अब तो बहुत चेंज हो गया
1: जी,
0: तब यही होता था कि बेटी को पढ़ाना है टीचिंग जॉब में जाना है 10 से 3 तक उसको करना है और उसके बाद उसकी शादी करना है, दैट वाज द मेन

0: और लोगों की महदूद सोच थी। और उसके बाद जब मैं इस फील्ड में आई तो बहुत चैलेंजेस आए। मेरा सफर मेरे घर के दरवाजे से स्टार्ट हुआ, ये स्ट्रगल वहां से हुआ। बट अल्लाह ताला ने जो स्ट्रेंथ मुझे दी, जितने भी नेगेटिव अप्रोच मेरा हुआ, जब भी मुझे कोई कुछ नेगेटिव बोल रहा था मेरा ड्रेस रिलेटेड, जब मैं रन करती थी या कुछ ऐसा कुछ बोलती थी, तब क्या होता था कि मैं उसको पॉजिटिव में लेती थी। जितना नीचे गिराते थे ना, उतना फोर्स के साथ में उठ जाती थी। तो ये एक प्लस पॉइंट था मेरे लिए। और हाँ, ऑफकोर्स उसके बाद मेरी माँ मेरी स्ट्रेंथ बनी, जब उसको लगा मेरे बच्चे का पूरा फोकस इस पे है। मैंने नेशनल्स खेले, मैंने जम्मू कश्मीर को कम से कम 15 नेशनल्स में ये किया, 4 नेशनल गेम्स में किया और कंट्री को वर्ल्ड कप में किया। तो दैट वाज फॉर मी अवार्ड्स एंड ऑनर्स ओके, बट मेरे लिए सबसे बड़ी चीज क्या थी, मेरे ट्राई कलर को, उस इंडिया की टी शर्ट, उस इंडिया की जर्सी को पाना, वो मेरा ख्वाब था। और उसके लिए नो मैटर कितना स्ट्रगल आपको करना पड़ा, बट फॉर मी नेशन इज फर्स्ट। माई लाइक मेरी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है। तो जब मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और आगे बढ़ रही हूँ, नो मैटर कितना स्ट्रगल है, कितना सेक्रीफाइस है, तो एट द एंड ऑफ द डे यू आर द वन। लाइक पूरे इंडिया में आई वॉज द वन, लाइक वो भी जम्मू कश्मीर से। तो मैं जम्मू कश्मीर का और भारत के लिए बहुत खुशी की।
1: यहाँ पर म्यूजिकल ब्रेक के लिए रुकते हैं, फिर आपसे अपने मेहमान से बात जो है मजीद बात जारी रखेंगे।

0: जी समीना, आप समाप्त कर रहे हैं मॉर्निंग शो पयाम सुबह, जो कि बराह रास्त आप तक पहुंच रहा है। और आज के शो के हमारे मेहमान हैं ओलंपिक जूरी इंटरनेशनल प्लेयर बिल्किस स्पीर जी, और इस प्रोग्राम की मेजबानी कर रहे हैं सायका सलीम और लाहौता फरहान। प्रोग्राम की माउनत कर रहे हैं अब्दुल कयूम। जी सायका।
1: जी लाहौता जी, हम यहाँ पे अपने मेहमान से बल्कि साहिबा से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स के बारे में आपने कहा, स्पोर्ट आपने चूज किया, लेकिन ये वाटर स्पोर्ट ही कैसे आपके जहन में आया?
2: जैसे मेरी माँ का कहना है कि बचपन से ही मैं एक वो जिद्दी बच्चा थी, लाइक जहाँ पर बोलते थे कि डर है वहाँ नहीं जाना और वही जाते थे। और मेरी माँ का भी कहना है कि बचपन में जब एक लड़की होती है तो उसको जब गुड़िया देते हैं, टॉयज देते हैं, तो वो खुश हो जाती है। बोला कि आपको जब पानी दिखाते थे तो आपका एक अलग ही अट्रैक्शन होता था, अगर आप रोते थे तो आपको एकदम पानी दिखाते तो एकदम खुश हो जाते। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने बचपन से ही एक वो रिश्ता जो जोड़ पानी के साथ
1: डाल दी थी,
2: वो था। और दूसरी बात, व्हाई वाटर स्पोर्ट्स, मैं बॉक्सर बनना चाहती थी और मैंने कुछ टाइम बॉक्सिंग भी किया, और जबकि अल्लाह ताला ने वो नेचुरल स्ट्रेंथ दिया था मुझे, बट मेरी फ्रेंड थी जो वाटर स्पोर्ट्स गेम्स में जाती थी, उसने मुझे बोला एक दिन आप भी चलो आप देखो। मैं गई जस्ट एक टेस्ट करने के लिए, और पानी एक ऐसा चीज है जब आप कितना भी स्ट्रेस हो, आपको कितना भी आप थके हुए हो, जब आप पानी में जाते हो या पानी के साथ खेलते हो, आपको एक वो सुकून और रिलैक्स मिलता है,
1: रिफ्रेश हो जाता है।
2: मैं आपको बोलूंगी, जब मैंने इस बोट को देखा, ये एक आम नाव नहीं है, ये स्पोर्ट्स कैनेडियन स्पोर्ट्स है, कैनेडा से स्टार्ट हुआ 1924 में और 1936 में ये ओलंपिक प्रोग्राम में आया। ये एक डिफरेंट नाव है, इसमें जब मैं बैठी इसमें बैलेंस करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये जो बोट है सिर्फ 12 केजी का है, 12 केजी का बोट है ये, इसमें बैलेंस करना बहुत मुश्किल है, इसमें आपको हाई टेक्निक की जरूरत है। जब मैं इस बोट में बैठी, मेरा बैलेंस नहीं हो रहा, मैं बैठ रही हूँ और गिर रही हूँ, बैठ रही हूँ और गिर रही हूँ। वो जिद, वो चैलेंज था, सिर्फ इतना चैलेंज था कि इस बोट में बैठना है और बैलेंस करना है, आगे का कुछ इरादा नहीं था। तो उस जिद ने मुझे उस बोट में बिठाया और उस जिद ने मुझे उस टारगेट तक पहुंचाया और उस जिद ने मुझे आगे बढ़ाया।
1: एक और बात जो मेरे जहन में यहाँ पे आ रही है कि आपने ये स्पोर्ट चुना, आप इसमें आ गए, लेकिन क्या ये ख्याल था उस वक्त कि एज अ करियर फिर मेरा ये, मतलब मैं एज अ करियर इसको लूंगी? फिर
2: मैंने पहले ही बोला, हमें उतनी अवेयरनेस नहीं थी। हम एज अ जम्मू कश्मीर तब स्पोर्टिंग तब तो हमारा स्टेट था, स्पोर्टिंग स्टेट नहीं था। लड़कों के लिए तो दूर की बात है, नहीं आते थे लड़कियां, तो आई वॉज अलोन और मैं लड़कों के साथ ही प्रैक्टिस करती थी, तब तो लड़कियां आती भी नहीं था। और जब मैं स्पोर्ट्स में आई, मुझे नहीं पता था व्हाट इज नेशनल, इंटरनेशनल क्या है। मुझे याद है दूरदर्शन में मेरा एक इंटरव्यू लिया रोशन खयाल जी ने, उसने मुझे पूछा, मैं सब जूनियर स्टेट जिसने डल चैंपियनशिप लिया, उसने मुझे बोला आगे क्या इरादा है, तो मैंने बोला मैं इंटरनेशनल खेलूंगी। और मुझे इंटरनेशनल का मतलब भी पता
1: नहीं था।
2: और जब मैं इंटरनेशनल में

0: पहुंची उन्होंने वो क्लिप चलाया कि इस बच्चे का टारगेट तब से था. बट हाँ, धीरे धीरे जब आप एक्सपोजर आपको मिला, नेशनल्स में आप गए, तो आपको कहीं ना कहीं लगा कि मेरा लेवल कुछ हाई लेवल है, मैं और कर सकती हूँ. और उस वजह से मेरे माँ बाप को भी अंदाजा हुआ कि ये एक्सेल कर सकती है इसमें, इसी फील्ड में. मगर उनको एक डर था कि इसका फ्यूचर सिक्योर होगा, क्योंकि मेरी जितनी भी कजन्स थी, जब मेरी माँ दावत पे जाती थी, किसी भी फैमिली फंक्शन में जाती थी, वहां सिर्फ एक सवाल होता था, आपकी बेटी क्या कर रही है? वो डॉक्टरी कर रही है. दूसरी की बेटी क्या कर रही है? इंजीनियरिंग कर रही है. क्योंकि तब हमारे जमाने में दो ही प्रोफेशंस को प्रोफेशन माना जाता था. तो मेरी माँ जब बोलती थी बिल्किस कैंप है, तो वो बोलती थी मेरी जितने भी रिलेशन वाले, अरे गलत है भाई, लड़की का फ्यूचर उसको पढ़ाओ लिखाओ, तभी वो करेगी, स्पोर्ट्स खेल के करेगी क्या. इवन आज भी कहीं ना कहीं मुझे फील होता है जब मुझे कोई बोलता है कि आपका प्रोफेशन क्या है, तो मैं बोलती हूँ मैं प्रोफेशनल कायाकर. नहीं, ये तो है,
1: उसके अलावा
0: क्या कर रहे हो. तो मैं यहाँ आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, स्पोर्ट्स बाजाबता एक कैरियर है. एक इंजीनियर, एक आईएएस ऑफिसर, एक सोसाइटी में माने जाते हैं, बट एक स्पोर्ट्स पर्सन पूरे वर्ल्ड में माने जाते हैं. और अपने देश को, वो अपने देश का प्राइड होता है.
2: जी जी.
0: वो स्पोर्ट्स पर्सन एक एम्बेसडर होता है, उस देश की इमेज होता है जब वो दूसरी जगह जाता है.
2: तो कंट्री को रिप्रेजेंट करता है.
0: मैंने बोला ना, मेरे लिए वाटर स्पोर्ट्स मेरी आवाज बनी, वो आवाज जो पूरे वर्ल्ड तक पहुंची. तो इससे बढ़कर क्या होता है कि जब आप ट्राई कलर को अपने नेशनल एंथम को सुनते हुए देखते, और आपकी वजह से
2: प्राउड मोमेंट,
0: और आप 28 years मुझे लगी इंडिया की जर्सी को पाने के लिए. इट वॉज नॉट ईजी. आपको एक स्पोर्ट्स पर्सन उसका मेडल और पोडियम दिखता है, जीरो एनकरेजमेंट में काम करना, ओवरडेटेड इक्विपमेंट से काम करना, इंजरी से जूझना, सुबह उठना, उसको कोई नहीं देखता है, बर्फ है बारिश है, उस टारगेट के लिए लगता है. बट समाज के सामने सिर्फ वो एक मेडल होता है, वो मेडल ही नहीं होता, वो उसके कितने सैक्रिफाइस होते हैं. आपकी फैमिली में फंक्शन होता है, आप नहीं आ पाते, आपका मनपसंद खाना प्लेट पे होता है,
2: नहीं खा पाते,
0: बहुत सैक्रिफाइसेस होते हैं एक एथलीट के. और जब आप हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो आपके डिमांड ज्यादा होते हैं, आपका फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता है. जब आपका फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता, आपकी डाइट अलग होती है, आपका रहन सहन होता है, आपकी हैंड होल्डिंग नहीं होता, कुछ तो आगे बढ़ जाते हैं, कुछ टूट कर चले जाते,
1: पीछे रहते
0: हैं. ऐसे भी
2: बेशक. आप चूंकि पेरिस ओलंपिक्स गए, आपने कश्मीर को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया, बहुत ही फख्र की बात है हम सब के लिए, हमारी कंट्री के लिए, और बिलखसूस हमारे कश्मीर के लिए बहुत ही प्राउड एक्सपीरियंस है. लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि उस एक्सपीरियंस के बारे में कैसा था वहां जाना, और फिर दूसरे ममालिक से जो एथलीट्स आते हैं उनसे मिलना कैसा एक्सपीरियंस रहा. आपकी जुबानी हम जो हमारे स्पोर्ट्स लवर्स हैं उन तक आपकी बात पहुंचाना चाहिए.
0: मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ. इट वॉज ड्रीम कम ट्रू. मुझे नहीं पता कि अल्लाह ताला ने मुझे किस चीज से नवाजा, क्योंकि एक एथलीट का ख्वाब जो होता है वो अल्टीमेट होता है ओलंपिक्स में, और मैं एज ए जूरी वहां पर कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा. ये मेरे लिए नहीं, ये पूरे मुल्क के लिए खुशी की बात थी कि एक छोटे से इलाके जम्मू कश्मीर से लड़की निकलती है, डल लेक से निकलकर वो पेरिस तक पहुंचती है. तो ये बहुत बड़ा
2: मोमेंट रहा.
0: और दूसरा मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये सफर इतना आसान नहीं था, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, बट एट द एंड ऑफ द डे जब आप उसको अचीव करते ना, उसका अलग ही ये होता है, मजा होता है. और दूसरी बात, मेरी माँ का कहना था जब मैं इस फील्ड में आई, बहुत ऐसे भी मरहले मेरे प्लेइंग कैरियर में आए, मैं डिप्रेशन में भी गई, और मैंने माँ को बोला नहीं, अब मैं नहीं कर पाती हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि एक इंसान की एक स्ट्रेंथ जहां तक होती फिर वो जवाब दे पाते. तो मेरी माँ का कहना था, बिल्किस अगर आप आज हारे, ये आपकी हार नहीं है, उन आने वाली पीढ़ी की हार है जो
1: आपकी फॉलो करेंगे.
0: और आज मैं देख रही हूँ कि अगर मैंने तब स्टॉप किया होता, जो आज ये वाटर स्पोर्ट्स में लड़कियां आ रही है,
1: वो शायद
0: पार्टिसिपेट कर रही है,
1: वो नहीं आती शायद से,
0: तो वो मुझे एक बड़ी कामयाबी ये आती मेरे लिए एज

0: की स्मीर गोल्ड सिल्वर ब्रोंज मैटर नहीं करता था, मेरे लिए एज अ बिल की स्मीर मैटर क्या करता था, चेंज लाना, माइंडसेट को चेंज करना. आई रिमेम्बर जब मैं इंडिया कैंप से वापस आई 2013 में, तो मैं घर घर गई माँ बाप को बताने के लिए आप अपनी बेटियों को भेज दो. बहुत चैलेंज आए मेरे को, क्योंकि जब बच्ची को मैं ट्रेन करती थी 6 महीने 1 साल 2 साल, उसके बाद उनको बाहर भेजते नहीं थे. तो उस माइंडसेट को चेंज करना, उन बच्चियों को आगे लेना, फिर उनको मोटिवेट करना, और विद द हेल्प ऑफ मीडिया जो मुझे मदद किया, मीडिया प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई होल केयर, जिन्होंने मुझे स्पेस दी, जिन्होंने मुझे लोगों तक पहुंचाया, मेरी आवाज को पहुंचाया, चाहे वो रेडियो है, दूरदर्शन, कोई भी मीडिया चैनल, उस वजह से क्या हुआ कि एक अवेयरनेस आई. देख लीजिए, आप जब देखते हो फुटबॉल मैच होता है मेन का, बहुत सारे लोग आते हैं देखने के लिए. अगर यही मैच वुमन का होता है, बहुत कम लोग आते हैं देखने के लिए. तो मेरी यही गुजारिश रहेगी कि वुमन स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, और जैसे आप देख लीजिए, आज हम बात करेंगे क्रिकेट की, वुमन क्रिकेट आज वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं, ठीक है. व्हाट वाज द रीजन? पहले हर एक माँ बाप अपने बच्चे को विराट कोहली बनाना चाहता था, आज माँ बाप स्मृति मंधाना भी बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको इक्वल फैसिलिटी मिली, कोई बायस नहीं है. जो मेन को दिया वो वुमेन एथलीट्स को भी दिया. उससे क्या हुआ कि हम जो इज्जत मेन टीम को मिली वो वुमेन टीम को भी मिली. उससे ये हमारी कंट्री में इंकलाब आया, हमारा गर्ल्स भी आगे आने का रिजल्ट आया, और हम वर्ल्ड कप जीत चुके. और उससे क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड में ये मैसेज आई कि भारत की बेटियां किसी से कम नहीं है. और अगर हम ओलंपिक्स की बात करेंगे, लास्ट ओलंपिक्स की बात करें, अगर हमारी कंट्री की लाज रखी वो लड़कियों ने रखी, सबसे ज्यादा मेडल्स और मेडल्स भी आए वो वुमेन कैटेगरी में आए. तो वुमेन स्पोर्ट्स को एनकरेज करने के लिए देयर शुड बी अ स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्स पॉलिसी, एंड देयर शुड बी अ, बिकॉज वुमेन कोचेज आर द बैकबोन, यू हैव टू ट्रेन वुमेन कोचेज. उससे क्या होता है, एक माँ बाप को भी भरोसा रहता है कि वुमेन कोच है, उसको ट्रेन कर रही है, और एक
1: सेफियर एटमोसफियर में वो भी सेफ फील करते
2: हैं. हम हमारी बात जो है जारी रहेगी. आपसे एक जाति सा सवाल पूछ रहे हैं कि म्यूजिक तो सुनती होंगी आप
0: बहुत ज्यादा, क्योंकि म्यूजिक ने मेरे प्लेइंग करियर में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है. आई रिमेम्बर जब मैं, क्योंकि मेरा कंपटीशन फीवर होता था, कंपटीशन से पहले वो जब आपको
2: डर से लगा रहता
0: है, म्यूजिक ने मुझे तब हेल्प किया. आई रिमेम्बर जब मैं वर्ल्ड कप के लिए गई थी हंगरी में, तो मेरे कोच ने पूरा 1 घंटे म्यूजिक लगा कर मैं रन करी, और मुझे पता ही नहीं था जब मैं स्टार्टिंग लाइन में आई, क्योंकि म्यूजिक एज अ एथलीट की उसमें बहुत हेल्प करता है. खासतौर जब हम वर्कआउट करते हैं तभी हम म्यूजिक सुनते हैं जो हमें मोटिवेट करता है.
2: खास पसंद आपकी जो हम इस वक्त प्ले करना चाहते हैं आपके लिए?
0: मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट, मैं आज जो सुनती हूँ, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना.
1: बहुत अच्छे, ठीक है.

0: आकाशवाणी श्रीनगर आप तक पहुंच रहा है एक नए रंग, नए आहंग और नई लय के साथ।
1: पल पल जाऊं मैं तोरे रंग में जीवा।
2: जिंदगी से जुड़े हर एक शोबे की मुफीद जानकारी।
3: सब्र रोशिद सुलुम।
2: सुनते रहिए हमारी नशरियात
0: दुनिया के किसी भी कोने में, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और वेव्स OTT के जरिए।
4: जी हाँ समीन, आप समाप्त कर रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम पायाम सु, और प्रोग्राम की मावनत कर रहे हैं अब्दुल कयूम। और आपको बता दें कि आज हमारे इस प्रोग्राम में जो हमने मधु किया है, जिनको और हमारे स्टूडियो में इस वक्त जलवा अफरोज हैं, वो हैं ओलंपिक जूरी इंटरनेशनल प्लेयर कयाकिंग एंड कैनोइंग बिल्किस मीर साहिबा। जी साइका
5: जी, बिल्कुल एक बहुत ही ख़ास शख्सियत है हमारे साथ, और इनसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपने, हमने खेलों का जिक्र किया और इस वाटर खेल के बारे में, जो हमने वाटर स्पोर्ट के बारे में बात की, तो अभी चूंकि एज अ कोच भी आप हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कितनी गर्ल्स हैं, कितनी लड़कियां हमारी हैं जो आगे आ रही हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, विद फुल वो घर जो सपोर्ट है, वो उस सपोर्ट के साथ कितनी गर्ल्स जो हैं आगे आ रही है स्पोर्ट के लिए।
6: 98 से लेकर अभी तक बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं, खासतौर माँ बाप के माइंडसेट में। आज माँ बाप चाहता है कि उसकी बच्ची खेले। इट इज़ नॉट ओनली कि वो बच्ची खेले फिर इंटरनेशनल खेले या आगे, सबसे इम्पोर्टेंट होता है समाज में जब एक औरत, एक लड़की हेल्दी होगी, उस घर का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होता है। बहुत फिटनेस इज वेरी इम्पोर्टेंट। अभी इम्पोर्टेंट है, इस खेल में आपको एक एग्जांपल दे दूंगी,

0: मेरी मामा का बैक में प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ. ये एक एग्जांपल है, एक ये भी है
1: कॉमन सी बात.
0: उनका जब कमर में प्रॉब्लम हो गया तो हमारा पूरा घर डिस्टर्ब हो गया. वहां मैंने ये माना कि एक लड़की का, एक औरत का फिट होना कितना जरूरी है. पूरा घर कोलैप्स हो जाता है एक औरत जब बीमार जाती है, पूरा घर ही डिस्टर्ब हो जाता है. जहां तक आपके सवाल का ये था कि कितनी लड़कियां आगे बढ़ रही, लड़कियां आगे बहुत बढ़ रही है. वाटर स्पोर्ट्स में भी नंबर बहुत बढ़ रहा है. अगर हम मेडल्स की बात करेंगे, सबसे ज्यादा 50% जो मेडल हासिल करने वाली वो हमारी वुमेन एथलीट्स
1: गर्ल्स.
0: बट आज भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है. प्रॉब्लम्स ये है कि माँ बाप के माइंड सेट में, एक माँ बाप जब बच्ची को ट्रेन करते हैं, एज अ कोच मैं जब उसको ट्रेन करती हूँ, मेरा एक ख्वाब होता है, मेरा एक प्लान होता है, मेरा एक टारगेट होता है इस बच्ची को नेशनल में लेने के लिए, पहला टारगेट, देन उसके बाद इंटरनेशनल लेने में. तो जब हम 2-3 साल प्रैक्टिस करते हैं

0: है कि माँ बाप के माइंडसेट में, एक माँ बाप जब बच्ची को ट्रेन करते हैं, एज अ कोच मैं जब उसको ट्रेन करती हूँ, मेरा एक ख्वाब होता है, मेरा एक प्लान होता है, मेरा एक टारगेट होता है इस बच्ची को नेशनल में लेने के लिए, पहला टारगेट, देन उसके बाद इंटरनेशनल लेने में। तो जब हम 2-3 साल प्रैक्टिस करते हैं
1: और उसमें
0: आप आगे नेशनल करते हैं, तो उसके बाद भी जब उसको नेशनल का टाइम आता है तो उसका एग्जाम का क्लैश कभी आता है, तो वो 3 साल की मेहनत वही पढ़ाई खत्म हो जाती है और वो वहां भी पढ़ाई को ही चुनते हैं। मगर चुनना भी चाहिए, क्योंकि जब तक हमारी गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग पॉलिसी लेकर नहीं आएगा हमारे रोल मॉडल्स के लिए, अगर कोई भी रोल मॉडल होगा, मुझे आज कोई भी होगा, तो जब तक आप उसको वो दर्जा नहीं दोगे तब तक वो आने वाली पीढ़ी उस फील्ड में नहीं
1: आएगी।
0: क्योंकि माँ बाप को भी आज लग रहा है कि अगर मेरी बच्ची नेशनल में जाएगी, यहाँ से वो एग्जाम मिस करेगी, तो उसका पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। बाकी रियासतों में मैंने देखा, पंजाब बहुत, हरियाणा अच्छा क्यों कर रहा है, क्योंकि उनकी जो रिलैक्सेशन है वो उनकी पढ़ाई में है, उनकी जो रिलैक्सेशन है उनके प्रोफेशनल एग्जाम्स में है। यहाँ आप अगर किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को नौकरी देते हो, खुदा रा उसको नौकरी उसके अचीवमेंट्स को आगे बढ़ने के लिए दे दीजिए, हर्डल्स बन के मत आइए कि उसको आप किसी दफ्तर में लगाकर फिर उसको बाबू का काम कराओगे। अगर उसको आप नौकरी दे रहे हो, उसको नौकरी दे रहे हो, आज आपका सिल्वर मेडल है, आपको नौकरी इसलिए मिल रही है, आपको गोल्ड लाना है, आपको कंट्री को रिप्रेजेंट करना, ये माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे हमारे अच्छे एथलीट्स डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जब जाते हैं, एट द एंड ऑफ द डे उनका फ्यूचर खत्म हो जाता है, क्योंकि वो आज आगे एक्सेल
1: नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर एक और बात आपसे जानना चाहेंगे कि ये वाटर स्पोर्ट जो है, इस विजन को लेकर आप कितना आगे जाना चाहती हैं?
0: मेरा ख्वाब, देखो जम्मू कश्मीर, एक मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, ठीक है, और मेरे घर में भी बहुत चैलेंजेस थे, लाइक एक लड़की का निकलना ही, बट मैं आज बताऊंगी, मैंने इस स्पोर्ट्स की वजह से पूरा वर्ल्ड देखा, 40 कंट्रीज में विजिट कर चुकी हूँ इस स्पोर्ट्स की वजह से। और जहां तक इस स्पोर्ट्स की बात रही, जम्मू कश्मीर के लिए मैं हर इंटरव्यू में बोलती हूँ, 2 स्पोर्ट्स बहुत कंपल्सरी स्पोर्ट्स बन सकते हैं जो जम्मू कश्मीर को हाईएस्ट पोडियम तक ले सकते हैं, वन इज वाटर स्पोर्ट्स, वन इज विंटर स्पोर्ट्स। यही 2 स्पोर्ट्स की बात मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जो नेचुरल वाटर रिसोर्सेज जम्मू कश्मीर के पास है, जो नेचुरल सुनो जैसे स्लोप्स हमारे पास है, गुलमर्ग जैसी, शायद ही दूसरे रियासतों में वो नहीं है। हमें एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी की जरूरत है, यहाँ पर एक मॉनिटरिंग जो होनी चाहिए वो बहुत जरूरी है। हमारा सिर्फ स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स डल तक मादू नहीं रहना चाहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें वुलर को हाईलाइट करना चाहिए। बारामूला की बच्चियां यहाँ आती है ट्रेनिंग के लिए, वो रोज तो नहीं आ पाएंगी, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, तो वहां पर उनका सेटअप बनना चाहिए। मानसबल एक अच्छा वाटर स्पोर्ट्स हब बन सकता है, देन वाइल्ड वाटर के लिए हमारा लेदर रिवर है
1: जी,
0: और हमारे सोनमर्ग में है, तो बहुत सारे
1: पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन अब रिसोर्सेज इतने नहीं हैं।
0: स्पोर्ट्स सिर्फ आपको एक स्पोर्ट्स नहीं, इट इज अ टूरिज्म अट्रैक्शन,
1: वहां
0: भी आप ऐसी एक्टिविटी दोगे तो आप टूरिज्म को अट्रैक्ट कर
1: जी।
0: और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वाटर स्पोर्ट्स, वो लेक को साफ रखता है। जब पैडल बेसिस आप पैडल करोगे, पानी का मूवमेंट होगा, जितना पानी का मूवमेंट होगा उतना वो साफ रहेगा, जितना वो एकदम शांत रहेगा वहीं पर गन स्टार्ट होने होती है। अगर हमें लेकों को बचाना है, अगर हमें अपने दरियाबू को बचाना है, वाटर स्पोर्ट्स को प्रायोरिटी देना, मोटर बेसिस नहीं। हम आज मोटर लगाते हैं शिकारू में भी, आज मोटर बहुत ज्यादा चल रहा है, उससे लेक का बहुत नुकसान हो रहा है। पैडल बेसिस स्पोर्ट्स को हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जैसे हम मैराथॉन्स कर रहे हैं वैसे ही हमें कैनोइंग कायाकिंग की बड़ी मैराथन करनी चाहिए
1: जी,
0: और ये दिखाना चाहिए कि हमारे वाटर फ्रंट ना कि रियासत में बल्कि मुल्क पे आगे जा सकते हैं। और मेरा सिर्फ एक ख्वाब है, जम्मू कश्मीर के वाटर स्पोर्ट्स को वर्ल्ड मैप पे देखना,
1: इंशाल्लाह। और हम भी यही दुआ करते हैं कि ऐसा हो और बहुत जल्द हो। लेकिन यहाँ पे एक और बात जो है हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो ट्रेन करती हैं स्टूडेंट्स को या स्पोर्ट्स सीखने वालों को, तो वहाँ पे टैलेंट आइडेंटिफिकेशन आप कैसे करते हैं?
0: देखो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देयर वी रिक्वायर्ड आर साइंटिफिक इनपुट्स। लाइक हमारा जब एथलीट आता है किसी भी गेम में, आपके पास मेजॉरिटी एथलीट्स, आप उनको ले लीजिए, बट जब आप एक टारगेट के लिए काम करते हो, एक हाईएस्ट पोडियम के लिए काम करती हूँ. डियर यू रुकायडा सेंटर.

0: बेसिक इनपुट्स, हमें देखना है पैरामीटर्स, जैसे मेरी गेम का डिमांड, जितना हाइट अच्छा होगा, जितना आर्म लेंथ अच्छी होगी, उतना वो एक्सेल अच्छा कर सकता है, बिकॉज वाटर कैच हम आगे जब लेते हैं, जितनी आर्म्स आपकी लंबी होगी उतना आगे आप वाटर कैच को खींच सकते हो. और हाइट प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ केमिस्ट्री, जो मैंने रिसर्च किया, जो मेरा एक्सपीरियंस, जो मैंने ओलंपिक मेडलिस्ट देखे, हंगरी टॉल, वो 6 फुट से ऊपर ऊपर होते हैं और उनका वेट ही 100-100 किलो होता है. तो वो जो रिसर्च मैंने देखा, जो मैंने रोडमैप भी दिया था, मैंने अपनी यूटी को भी दिया और मिल्क को भी दिया था, उससे मुझे लगा कि हाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती. मगर वी नीड डियर साइंटिफिक इनपुट्स. और अगर हम बात करेंगे अब वेट लिफ्टिंग की, जितनी हाइट कम होगी उतना आप लिफ्ट कर सकते हो, उतना आपका एडवांटेज है. तो देयर इज अ पैरामीटर्स, देयर इज अ प्रॉपर डॉक्यूमेंट, जब आप सिलेक्ट करते हो हमारे पास वो पूरा रिसर्च पेपर होता है कि किस कैटेगरी में क्या हाइट होनी चाहिए, क्या वेट होना चाहिए, फिर हमें आगे कैसे प्रोग्राम बनाना है. तो देयर इज नॉट ओनली कोच जो उसकी प्लानिंग कर रहा है, वो पूरा साइंटिफिक टीम कर रहा है, और उसमें जम्मू कश्मीर को भी उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए.
1: बिल्कुल जी, यहाँ आपसे पूछना चाहूँगी कि जो लड़कियाँ आपके आपसे ले रही हैं ट्रेनिंग, वो क्या इसमें एक्सेल, आपको क्या लगता है उनका कितना पोटेंशियल है?
0: देखो, टैलेंट की कमी हमारे पास नहीं है, बट राइट टाइम उनकी हैंड होल्डिंग बहुत जरूरत है. राइट टाइम स्ट्रॉन्ग पॉलिसी होना बहुत जरूरी है. मैंने बोला ना, मेरे बहुत लड़कियां होगी जिनमें टैलेंट होगा, बट ऐसे हालात है कि जो आगे नहीं बढ़ पा रहे और बीच में छोड़कर चले जाते हैं. तो हमें एक रिसर्च की जरूरत है, हमें देखना है कि अगर आज हमारे सब जूनियर प्लेयर्स इतने आए हैं, कितनी लड़कियां आगे बढ़ी, वजूहत कहाँ है, कहाँ ऑब्स्टिकल्स है, कहाँ स्ट्रगल है, कहाँ हमें इंप्रूव करना चाहिए. यू कैन नॉट डू लाइक हरियाणा की पॉलिसी लेकर आप यहाँ पर उसको अप्लाई करोगे, या केरला की पॉलिसी. केरला की लड़की के लिए एक अलग चैलेंज है, जम्मू कश्मीर की लड़की के लिए एक अलग चैलेंज है. तो आप जब तक रिसर्च करोगे, आपको ग्राउंड पर रिसर्च करना है, आपको एक हाई एथलीट को भी पूछना है, एक वो ग्रासरूट लेवल एथलीट को भी पूछना, तभी आप उस डॉक्यूमेंट को एक उस रूप में लाकर अपनी यूटी के लिए और अच्छा कर सकते हैं. रिसर्च की बहुत जरूरत है, हैंड होल्डिंग की बहुत जरूरत है, मॉनिटरिंग की बहुत जरूरत है.
1: साहिका, मैं आपको बता दूं कि आज की हमारी जो शो की जो मेहमान है, जो केया किंग और केनाइंग की
2: एक्सपर्ट हैं,
1: कोच हैं माशाल्लाह से, तो इनका जो है, जो इनको आज के हमारी मेहमान को तीसरी मर्तबा एशियन गेम्स के लिए जज मुंतखब किया,
2: इंशाल्लाह
1: सितंबर में ये हो रहा है. जी बिल्किस जी,
0: थैंक्स अ लॉट, इट इज वेरी कंग्रेचुलेट करते हैं हम आपको रेडियो के माध्यम से लिए. और मैं ये कामयाबी सभी लड़कियों को डेडिकेट करना चाहती हूँ जो इस फील्ड में आएंगे. इट इज नॉट इजी, लाइक तीसरी बार, पहला एशियन गेम्स मेरा इंडोनेशिया था, दूसरा मेरा चाइना था. अब फाइनली आई विल बी अगेन एज अ जज इन जापान जो सितंबर में होगा. थैंक्स अ लॉट, इट्स अ रियली,
1: हमारी तरफ से आपको बहुत हौसला अफजाई
2: और हमारे लिए भी ये प्राउड मोमेंट है.
0: थैंक्स अ लॉट.
2: और यहाँ पर हम ऑलमोस्ट इस शो के अख्ताम पर आ चुके हैं. यहाँ पर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में भी हम ये कहेंगे कि टैलेंट, जैसा कि आपने भी कहा, टैलेंट की कमी नहीं है, अगर हमारे बच्चे, हमारे यंगस्टर्स, हमारे यूथ जो है ओलंपिक्स में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगी, क्या मैसेज होगा आप?
0: मैं टू एवरी वुमेन हु इज स्ट्रगलिंग एंड थिंकिंग ऑफ गिविंग अप, प्लीज डू नॉट. आई नो इट गेट हर्ट्स, आई नो देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील unseen, unheard and exhausted, but this is not your end, this is your test. Do not give up, fight back, stand up for yourself even when no one stands with you. You know, you are a winner, you are an achiever, your journey, your pain and your strength will one day become your greatest power. Keep going, अपना टारगेट रखो, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती.
2: आपने बहुत ही खूब कहा, बहुत ही अच्छी बात कही हमारी, हमारे यंगस्टर्स के लिए, हमारे आने वाले नए खिलाड़ियों के लिए. और यह आप इस छोटी सी, इस बहुत ही हम कहेंगे कि जल्दी वाली दावत में भी आपने, आप यहाँ पे आए, अपनी प्रेजेंस दिखाई, हमारे साथ बातें की और हमारे लिसनर्स तक अपनी बात पहुँचाई, हौसला पहुँचाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया.
0: मैं आप दोनों का शुक्रिया करना चाहती हूँ, बहुत

0: अच्छा लगा मॉर्निंग में आपसे मिलकर और बहुत सारे बातें की और अवेयरनेस बहुत जरूरी है. आई विश यू बेस्ट ऑफ लक. हैव अ वंडरफुल डे. गॉड ब्लेस यू.
1: थैंक यू. आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के.

जी दोस्तों, आप लाइव शो समाप्त कर रहे थे पयाम सुबह, और पयाम सुबह में इस वक्त हमारी मेहमान जो थी मिस बिल्किस मीर, जिन्होंने दिखाया कि एक लड़की जो है किसी भी सूरत में कम नहीं है, कमतर नहीं है, किसी भी फील्ड में एक्सेल कर सकती है, बस अगर चाहे तो। फिर अपनी मेहनत से, अपनी अंथक लगन से अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ देती है।

जी दोस्तों, इस लाइव शो में आप बने थे साइका सलीम और लाहुता फरहान के साथ, और इस शो की जीनत बनी थी अमीर बिल्किस, और इस शो की मुआवनत कर रहे हैं अब्दुल कयूम। हमें दीजिए इस शो से इजाज़त, आगे का सफ़र जो है आप लाहुता फरहान के साथ तय करेंगे।

बहुत बहुत शुक्रिया साइका। समीन, आपको बता दें कि आप समाप्त कर रहे थे लाइव इंटरेक्टिव शो पैम सुब, और अब आप जुड़ रहे हैं हमारी दिन की नशरियात के साथ, और मैं हूँ आपके मेज़बान लाहौता फरहान। ये शो आकाशवाणी हंसरी नगर स्टेशन मीडियम वेव तरह मीटर ते एफ एम जरा शहरिया 5 MHz पर समीन सुबह साढ़े 11 बजे भले छाकर तो रोबो जाओ समीन तुह पाओ चैतज आज शो नामवर सूफी शेर वाज महमूद सबन योम वसाल तो आज हिंदी कलाम इंतखाब कोरमुत वलू बोजो युहंदी कलाम सदाकार शे गुलाम नबी नमतबिल्त तिहिंद हम नवा।

0: سامعین محترم، آز اس نامور شاعر واضح محمود صٲبن یوم مثال، تتھ موقع پر بوز اس تہندی کلام صداکار غلام نبی نمتبل تہ تہند ہم
1: سماچار کے ساتھ میں لولین نگم۔ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि जनजातीय सांस्कृतिक रूप से बहुत धनी हैं। उन्होंने कहा कि जनजातीय आत्मसम्मान के साथ जीते हैं। राष्ट्रपति इस समय सम्मेलन को संबोधित कर रही हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: खेलकूद में आज भी एक ऐसे वाला कपड़ा का बोल बना के वो खेलते हैं। उसका कोई इंटरेस्ट नहीं कि मुझे कोई अवार्ड मिले, खुशी से खेलते हैं। उनको प्रोत्साहित करने की जरूरत। आज भी गांव-गांव में फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, उनके खुद के अंदर गांव-गांव के अंदर टूर्नामेंट करते हैं, लेकिन उसको प्रोत्साहित

0: करने की जरूरत है, तो एकलव्य विद्यालय को दिया गया है। मैं कहना चाहूंगी जो भी और भी ट्राइबल स्कूल है, क्योंकि उनके पास टैलेंट है। आज आप ओडिशा के भुवनेश्वर में क्या किट किट आज फेमस क्यों है, किट नहीं किस किस फेमस आज वर्ल्ड फेमस क्यों है, क्योंकि वहाँ ट्राइबल्स 25,000 या 30,000 बच्चों को ट्राइबल बच्चों को लिए हैं पढ़ाई।
1: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा।
2: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का दौरा करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है और मजबूत नीतिगत समर्थन, नवाचार और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के माध्यम से रिकॉर्ड क्षमता वृद्धि को गति दे रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल की पूर्व सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में उथल पुथल मची हुई है और वो विभाजन के कगार पर है। टीएमसी से निष्कासित विधायक ऋतुबर्ता बनर्जी का दावा है कि उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। उनके गुट ने विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस को पत्र लिखकर खुद को टीएमसी के रूप में मान्यता देने की मांग की है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। बोर्ड ने कल कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला था। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस वर्ष का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ, तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 948 अंक की गिरावट के साथ 73,702 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. President Draupadi Murmu today inaugurated the National Conclave on Strengthening of Integrated Tribal Development Agencies and Integrated Tribal Development Projects in New Delhi. Addressing the occasion, the President said that tribal society living across the country is culturally very rich and efforts must be made to bring the tribal community forward. She said development must reach the last home and the last village. Ms. Murmu expressed concern that there are still some sections of tribals who are unaware of the various schemes of the government.
0: पीएम जनमन योजना के तहत जनजातीय समुदाय में भी सबसे पिछड़े समूहों के 20,000 से अधिक गांव तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाने का लक्ष्य है। हम सब जानते हैं 75 जो ग्रुप्स वो है पीबीटीजी सबसे पिछड़े अभी भी कोई पेड़ के मंच के

समीन कृष्णा और सलीम मर्चेंट को आप सुन रहे थे। सलीम सुलेमान की मौसीकी में ये जयदीप सहानी के अशआर आप समाप्त कर रहे थे। फिल्म का नाम चक दे इंडिया।

समीन, विशाल शेखर की मौसीकी में आपने ये इरशाद कामिल के अशआर समाअत किए। श्रेया घोषाल, अरिजीत सिंह की आवाज़ें थीं। इस नगमे को हमने आपके लिए चुना था फिल्म हैप्पी न्यू ईयर से।

सिमिन, आप पीयूष मिश्रा के अशार समाप्त कर रहे हैं, विशाल शेखर की मौसीकी में आवाजें उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर की फिल्म का नाम दर्शन।

0: सबीन, आप समाप्त कर रहे थे फिल्मी नगमे आकाशवाणी श्रीनगर के प्राइमरी स्टेशन से। सबीन, हमारे स्टूडियोज़ की घड़ी में ठीक 12:30 हुआ चाहते हैं। ये वक्त ख़बरों का, ये समाप्त करते हैं पहले उर्दू, उसके फ़ौरन बाद कश्मीरी में। आदाब, यह आकाशवाणी श्रीनगर है। 12:30 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं बसारत गुल। जम्मू कश्मीर के सभी अजला में 100 रोज पर मुश्तमिल नशा मुक्त अभियान शदुमत के साथ जारी है। सिविल और पुलिस इंतजामिया की जानिब से अवामी बेदारी प्रोग्रामों के इनेकाद का सिलसिला जारी है, जबकि मुनशियात फरोशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाइयां की जा रही हैं। इंतजामिया ने इस अभियान को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का अज़्म किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पैगाम।
1: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा। और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
0: लोक भवन श्रीनगर में कल तेलंगाना के स्टेटहुड डे के सिलसिले में एक तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर और तेलंगाना में ये बात मुश्तरक है कि दोनों सरजमीनों को भगवान शिव की तरफ मंसूब किया जाता है। उन्होंने तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले मुजाहिदीन आज़ादी को खराज अकीदत पेश करते हुए रियासत के अवाम को स्टेटहुड डे की मुबारकबाद दी। बीजेपी जम्मू कश्मीर के यूथ प्रेसिडेंट श्रीनगर यशपाल मुने लोक भवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। सत्यमेव जयती नामी ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के सदर लियाकत अली और जनरल सेक्रेटरी सादिया यासीन शाह भी उनके हमरा थी। इस दौरान जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रफी अहमद मीर ने भी LG के साथ मुलाकात की। बाबा बर्फानी फाउंडेशन के वाइस चेयरमैन रोशन हुसैन की सरबराही में फाउंडेशन का एक वफद भी LG से मुलाकात हुआ। आज वर्ल्ड बाइसिकल डे है। इस दिन को मनाने का मकसद

0: बाइसिकल के इस्तेमाल से ट्रांसपोर्ट के किफ़ायती, भरोसेमंद और माहौल दोस्त जरिए को फ़रोग देने और सेहत पर साइकिलिंग के मुस्बत असरात को उजागर करना है। आज के दिन की मुनासिबत से मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कई साइकिल रैलियां मुनाक़िद हो रही हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स श्रीनगर में एक साइकिलोथोन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस साइकिलोथोन में ज़िंदगी के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और तालिबे इल्मों ने शिरकत की। जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राना ने सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान त्रहगाम हल्का इंतखाब में जारी तरक्याती सरगर्मियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर के हर इंतखाबी हल्के की यकसां और मुतवाजन तरक्की की वादाबंद है। उन्होंने अफसरों को लोगों के जायज मुतालबात पूरा करने की हिदायत दी। मीटिंग में मजकूरा असम्बली हल्के के MLA मीर सैफुल्ला भी मौजूद थे। JNK लेक्चरर्स एसोसिएशन के एक वफद ने सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में तालीम की वजीर सकीन ऐतो के साथ मुलाकात करके उन्हें अपनी मुतालबात की एक यादाश्त पेश की। वजीर मौसफा ने लेक्चरर्स के मुतालबात का बारीक बीनी के साथ जायजा लेने और उनके जायज मुतालबात को पूरा करने का यकीन दिलाया। महकमा आला तालीम ने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ कॉलेजों में 4 साल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में दाखिले के ताल्लुक से कॉलेजों की अलाटमेंट के पहले राउंड की फहरिस्त जारी की है। यह फहरिस्त महकमे के दाखिला पोर्टल JNKAdmissions.in पर दस्तियाब है। डायरेक्टर कॉलेज जम्मू कश्मीर प्रोफेसर शेख एजाज बशीर की जानिब से जारी एक प्रेस बयान में मुतल्लिका उम्मीदवारों से कहा गया है कि वह ऑनलाइन पोर्टल पर मुकर्रर की गई दाखिला फीस अदा करें। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात महकमे की वेबसाइट पर देखी जा सकती हैं। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लावरू ने अफसरों की एक मीटिंग में जल शक्ति अभियान के तहत अमलाए जा रहे जल सिंची जन भागीदारी के दूसरे मरहले की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने इस सिलसिले में मुकर्रर किए गए अहदाब को हासिल करने के लिए मुख्तलिफ महकमों के दरमियान करीबी तालमेल पर जोर दिया। डिप्टी कमिश्नर ने जल शक्ति महकमे को आबी वसाइल की जियो टैगिंग करने की हिदायत दी। डिप्टी कमिश्नर बड़गाम अतहर आमिर खान, जो कि जिले के प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर भी हैं, ने मुतलिक अफसरान की एक मीटिंग में मर्दमशुमारी 2027 से मुतलिक उमूर का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर को इस सिलसिले में मुकर्रर किए गए अहदाब और मर्दमशुमारी अहलकारों की जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी गई। कमिश्नर मौसूब ने यह अमल खुश असलूबी के साथ पाई तकमील तक पहुंचाने की हिदायत दी। इस दौरान अतहर आमिर खान ने महकमे माल के अफसरान की एक मीटिंग में इस महकमे की कारगुजारी और सरगर्मियों का भी जायजा लिया। मर्दमशुमारी के तहत कुलगाम जिले में जारी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस का जायजा लेने के लिए जिले के प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर शहजाद आलम ने दमाल हांजीपुरा का तफसीली दौरा किया। उन्होंने इस अमल में बेजाबतगी और शफापियत को बरोएकार लाने की सख्त हिदायत दी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
1: आदाब। निशा आकाशवाणी श्रीनगर खबरन हुन बुलेटिन हेचस ब सारा अख्तर। जम्मू कश्मीर के सारे जिलन मज हतन दोहन पे मुश्तमिल नशा मुक्त अभियान जोर शोर सान जारी। सिविल तो पुलिस इंतजामिया के तरफ अवमी बेदारी प्रोग्राम मुनद कर सिलसिले जारी। ये जन नशा आवर चीजन हुन कारोबार करन वाले खिलाफ सख्त कार्रवाई कर इंतजामियान यह अभियान पन्नस अंजाम तम वातन इरादों कर्मुत। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुंद पैगाम।
2: अगर स्मगलिंग जरूरत तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारम्भ किया जाएगा।
1: लोक भवन श्रीनगर सपज रात तेलंगाना के स्टेट हुड दोह के सिलसिले में अख तकरीब मुनद अत मौक पे ख्याल बावान वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर तो तेलंगानाह मन कत मुश्तरक जोशवे सर जमीन भगवान शिव सिंद तरफ मनसूब कर आमज तमो तेलंगान सल्लुक थवन वाले मुजाहिदीन आजादी खराज अकीदत पेश कर रियाती कल लूकन स्टेट हुड दोहस मुतलिक मुबारक। BJP जम्मू कश्मीर यूथ प्रेसिडेंट श्रीनगर यशपार मोहन कौर लोक भवन श्रीनगर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मुलाकात। सत्यमेव जयते नाविक ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन सदर लियाकत अली तो जनरल सेक्रेटरी सादिया यासीन शाह तम सौरान कौर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हिंद जनरल सेक्रेटरी रफी अहमद मीरन LGS मुलाकात। बाबा बर्फानी फाउंडेशन वाइस चेयरमैन रोशन हुसैन सिंह सरबराही में समख्यो फाउंडेशन वफद LGS। आज वर्ल्ड बाइसिकल डे। यह दोह मनाने मकसद साइकिल इस्तेमाल करने सहित ट्रांसपोर्ट कफायती بروس مند تو ماحول دوست وسیلن پوچر دن تو صحت پہ سائیکلنگ ہند مثبت اثر وتلاو

0: डेवलपमेंट से जुड़े संस्थाओं और मानव संसाधन के विकास से लेकर के वित्तीय व्यवस्थाओं तक तथा मॉनिटरिंग से लेकर के स्किल टीम डिलीवरी तक अत्यंत महत्वपूर्ण आयामों पर चर्चा होगी।
1: भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरे सबसे बड़ा और ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है और मजबूत नीतिगत समर्थन, नवाचार और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के माध्यम से रिकॉर्ड क्षमता वृद्धि को गति दे रही है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डी के शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा लगभग 10 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल की पूर्व सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में उथल पुथल मची हुई है और वो विभाजन के कगार पर है। टीएमसी से निष्कासित विधायक ऋतुव्रता बनर्जी का दावा है कि उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। उनके गुट ने विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस को पत्र लिखकर खुद को टीएमसी के रूप में मान्यता देने की मांग की है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए आरबीआई ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। घरेलू शेयर बाजार में संविधि सूचकांक में आज 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 558 अंक की गिरावट के साथ 74,092 पर, जबकि निफ्टी 155 अंक फिसल कर 23,329 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. More than 10 people lost their lives and several others are rescued after a fire broke out at a hotel in Malviyanagar, Delhi this morning. According to the Delhi Fire Services, 15 fire tenders rushed to the spot to douse the fire. Prime Minister Narendra Modi has expressed grief over the loss of lives in the fire incident. In a social media post, Mr. Modi said that authorities are providing all possible assistance to those affected. He also wished a speedy recovery to the injured. Mr. Modi also announced that an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund will be given to the next of kin of each deceased. The injured would be given 50,000 rupees. Delhi Chief Minister Rekha Gupta has also expressed grief over the tragic loss of lives in the fire incident. In a social media post, Ms. Gupta said that immediately after receiving information about the incident, teams of Delhi Fire Services, Delhi Police, District Disaster Management Authority, CATS Ambulance Services and other emergency response agencies were mobilized and launched the rescue and relief operations. President Draupadi Murmu today inaugurated the National Conclave on Strengthening of Integrated Tribal Development Agencies and Integrated Tribal Development Projects in New Delhi. Addressing the occasion, the President said that tribal society living across the country is culturally very rich and efforts must be made to bring the tribal community forward. She said development must reach the last home and the last village. Ms. Murmu expressed concern that there are still some sections of tribals who are unaware of the various

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार, जिसे हमें भेजा है अकोला महाराष्ट्र राधेनगर से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: गलत लोग आपकी अच्छाई से भी नफरत करते हैं और सही लोग आप में बुराई जानकर भी आपसे प्यार करते हैं, और यही मानव संबंध की विडंबना है।
1: बहुत सुंदर संदेश राजेश पी कारिया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
2: महाराष्ट्र से प्रशांत रमेश पाटिल।
1: और धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का।
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
1: और साथ ही साथ हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।

0: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रसिद्ध शीत मरुस्थलों की।
0: इस क्रम में कल हमने चर्चा की थी अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल की और जाना था इससे जुड़ी रोचक बातों को। आज हम चर्चा करेंगे एक और अनोखे शीत मरुस्थल की, और वो है गोबी का मरुस्थल। तो अजीत जी, चर्चा को विस्तार दीजिए।
1: जी विमलेश जी, आइए चर्चा को विस्तार देते हैं। तो श्रोताओं, आपको हम बताना चाहते हैं कि अंटार्कटिक का शीत मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है।
0: जी,
1: लेकिन यदि एशिया महादेश की बात करें तो यहाँ का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है गोबी। इसका क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर।
0: जी
1: विमलेश जी, अब आपकी बारी।
0: जी श्रोताओं, ये मरुस्थल मुख्य रूप से मंगोलिया और चीन के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। स्थानीय भाषा में गोबी को गोब कहते हैं, जिसका अर्थ है निर्जल स्थान। एक बात और आपको बता दें कि ये रेत का नहीं लेकिन पत्थरों का मरुस्थल है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग चट्टानी और पथरीला है। केवल 5% भाग ही रेतीला है।
1: तो श्रोताओं, अब बात करते हैं इस मरुस्थल के तापमान की। जहां तक तापमान का प्रश्न है, यहाँ तापमान बहुत कम होता है।
0: जी,
1: सर्दियों में ये -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि गर्मी के मौसम में यहाँ का तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है।
0: यानी एक ही मरुस्थल में कड़कती ठंड भी और झुलसाने वाली गर्मी भी।
1: जी
0: लेकिन इसे शीत मरुस्थल इसलिए कहा जाता है कि यहाँ अधिकांश समय सर्दियों का ही होता है। अजी जी, एक बड़ी विशेष घटना हुई है जिसके कारण गोबी का मरुस्थल बहुत प्रसिद्ध हुआ है। क्या थी वो घटना?
1: विमलेश जी, वो घटना थी जब वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र में डायनासोर के अंडे और जीवाश्म मिले।
0: जी,
1: यहाँ और भी कई दुर्लभ प्राणियों के जीवाश्म मिले हैं, जिसके कारण वैज्ञानिकों और संचार माध्यमों ने इसे प्राचीन जीव जगत के खजाने की संज्ञा दी है।
0: अजीत जी, अब श्रोताओं को जरा यहाँ रहने वाले लोगों की जानकारी दे दें।
1: जी हाँ, जरूर।
0: श्रोताओं, गोबी मरुस्थल में रहने वाले अधिकांश लोग आज भी घुमंतू जीवन यानी नोमेडिक लाइफ जीते हैं। मंगोल परिवारों का पारंपरिक घर गोलाकार का होता है, जिन्हें यर्ट कहते हैं। इन घरों की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये आसानी से खोले और दूसरी जगहों पर ले जाए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग यहाँ मौसम को देखते हुए जगह बदलते हैं। वैसे गोबी मरुस्थल के बाहरी इलाकों में आधुनिक शहर भी हैं।
1: तो श्रोताओं, आपको ये भी बता दें कि आज के आधुनिक वाहन यहाँ बहुत कम मिलते हैं। यहाँ के ऊंट 2 कुबड़ वाले होते हैं,
0: जी,
1: जो अत्यधिक ठंड और गर्मी दोनों सह सकते हैं। एक बात और आपको बता दें कि ठंड के समय ये ऊंट बर्फ खाकर अपनी पानी की जरूरत को पूरा करते हैं।
0: जी
1: घुड़सवारी यहाँ के प्रतिदिन के लोक जीवन का हिस्सा है, और घुड़दौड़ है यहाँ का प्रिय खेल और मनोरंजन का माध्यम।
0: जी अजीत जी, क्योंकि उमंग रेडियो कार्यक्रम है तो ये बताना तो बहुत ही प्रासंगिक होगा कि गोबी मरुस्थल के दूर दराज के इलाकों में भी आज भी टेलीविजन की पहुंच बहुत कम या नहीं के बराबर है।
1: जी
0: यहाँ लोग रेडियो सुनकर ही मौसम का हाल जानते हैं, समाचार सुनते हैं और मनोरंजन भी करते हैं। अब आधुनिकता के दौर में पर्यटन बढ़ गया है, सैलानी देश विदेश से आते हैं और यहाँ के घुमंतू परिवारों के साथ होम स्टे करते हैं।
1: श्रोताओं, यहाँ की दिनचर्या भी बहुत मजेदार और गतिविधियों से भरी हुई है। सुबह उठकर दूध दुहना महिलाओं का काम है, जबकि पुरुष मवेशी चराने का काम करते हैं।
0: जी,
1: दिन भर की मेहनत के बाद शाम को पूरा परिवार एक साथ भोजन करता है और कहानियों और गीतों के द्वारा मनोरंजन करता है। ये गाते हैं, बजाते हैं।
0: बजाने के लिए इनके खास वाद्य यंत्र हैं, जैसे मोरिन खोर।
1: ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है?
0: ये 2 तारों वाला वाद्य यंत्र है। एक और बहुत लोकप्रिय वाद्य यंत्र है लिम्बे, ये बांसुरी जैसा वायु वाद्य यंत्र है। एक रोचक बात यह है कि यहाँ लोग अपने संगीत को ऊंट घोड़े और प्रकृति से जोड़ते हैं। कई धुनें यहाँ ऐसी होती हैं जो जानवरों को बुलाने और शांत करने के लिए बनाई गई हैं।
1: बहुत सुंदर जानकारी विमलेश जी। सचमुच गोबी का शीत मरुस्थल जीवन की कठिनाइयों और उसे सुंदर ढंग से जीने का अनूठा उदाहरण है।
0: तो श्रोताओं, ये थी रोचक जानकारी गोबी के शीत मरुस्थल की।
1: अब आज का प्रश्न सुनिए आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, गोबी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: गोबी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं?
1: श्रोताओं, आप प्रश्नों के उत्तर और संदेश हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर या हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं।
0: जी,
1: हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। और हाँ, NCERT की पाठ्य पुस्तकों की ध्वनि पुस्तकें यानी ऑडियो बुक्स आप दीक्षा या NCERT

0: ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है दोस्त की पहचान।
0: कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस लोक कथा में बताया गया है कि एक सच्चे मित्र की पहचान कैसे की जाती है। संदेश दिया गया है कि सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति के समय काम आए।
2: एक जंगल से दो दोस्त गुजर रहे थे।
3: कितने बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ तो।
4: हाँ, बहुत बड़े पेड़ हैं।
3: अरे देखो देखो, कितने अच्छे पक्षी हैं यहाँ पर। अरे वो देखो चिड़िया।
4: अरे वो देखो बंदर। ओ, मुझे तो बड़ा

0: से दो दोस्त गुजर रहे थे।
1: कितने बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ तो।
2: हाँ, बहुत बड़े पेड़ हैं।
1: अरे देखो देखो, कितने अच्छे पक्षी हैं यहाँ पर। अरे वो देखो चिड़िया।
2: अरे वो देखो बंदर। ओ, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है।
1: मुझे तो थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है।
2: हाँ, ये तो सही कह रहे हो। अरे कोई जानवर आ गया तो क्या करेंगे हम?
1: क्या करेंगे, देखेंगे जब जानवर आएगा तब।
0: अचानक
2: ओ, ये तो रीछ की आवाज है। अरे अरे, मुझे तो लगता है रीछ आ रहा है। ओ, अब हम अपनी जान कैसे बचाएंगे?
1: क्या करे क्या करे, जल्दी सोचो क्या करे।
2: मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
1: अरे मुझे तो पेड़ पर चढ़ना आता है।
0: रीच को देखकर उनमें से एक दोस्त झट से दरख्त पर चढ़ गया।
1: ओह, ऐसा करता हूँ, पेड़ पर चढ़ जाता हूँ।
0: और दरख्त की टहनियों में छुपकर बैठ गया। दूसरा दोस्त नीचे अकेला रह गया।
2: ओ, अब मैं क्या करूं? मैं
0: जब उसको कुछ नहीं सूझा,
2: मैं ऐसा करता हूँ, जमीन पर लेट जाता हूँ और अपनी सांस रोक लेता हूँ, तभी जान बचेगी।
0: तो वो सांस रोककर चुपचाप जमीन पर लेट गया। रीच उसके करीब आया, उसने उसे सूंघा।
2: ये रीच तो मुझे सूंघ रहा है। सांस रोक के लेटा रहता हूँ, तभी जान बच पाएगी।
0: और मुर्दा समझकर छोड़ दिया।
2: बच गए, लगता है रीच चला गया।
0: रीच जब चला गया तो दूसरा दोस्त,
1: अरे रीच तो चला गया, अब मैं पेड़ से नीचे उतर सकता हूँ।
0: और अपने साथी से जाकर पूछा,
1: एक बात तो बताओ, रीच ने तुम्हारे कान में क्या कहा?
0: पहले दोस्त ने जवाब दिया,
2: मेरे कान में कहा, ऐसे दोस्त से दोस्ती मत करो जो मुसीबत के समय काम न आए और तुम्हारा साथ छोड़ दे।
0: पंचतंत्र की कहानी मश्क। सोचिए और बताइए,
3: महफूज तरीके से जंगली जानवरों को कैसे देखा जा सकता है? जंगलों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, उनकी फेहरिस्त बनाइए। अगर आप उन दोस्तों में होते तो दोस्त की मदद कैसे करते? दोस्त की पहचान। अभी आप सुन रहे थे ये प्रोग्राम, अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, रिकॉर्डिंग मंजू कुमारी, फनकार फरहान अली नकवी, बाल कलाकार सोहम और वान्या, हिदायतकार विमलेश चौधरी, पेशकश कुसुम लता। ये प्रोग्राम CIET NCERT नई दिल्ली भारत के जरिए पेश किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम दोस्त की पहचान।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गौरा देवी।
2: इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाट्य प्रस्तुति के द्वारा चिपको आंदोलन की जानी मानी नायिका गौरा देवी के जीवन और उनके द्वारा प्रारंभ किए गए प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है।
3: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
4: लाटा गांव के ग्रामीण खेती बाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
3: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
5: मारो, मारो,
6: अरे इस बार भी नहीं लगी।
7: अरे
5: नहीं लगा ना, लाओ लाओ, रुको रुको रुको, अरे मैं
7: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो।
5: हा?
7: अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
5: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो
7: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
6: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
7: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
5: बड़ी आई रोकने वाली। हाँ, वही करेंगे।
3: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
4: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
3: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थीं।

0: गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
1: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
2: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
3: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
2: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
1: लेकिन मेरा आदमी तो अभी काम ही पे नहीं जाता।
2: आप तो काम करती है ना?
1: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
2: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
0: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है। चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
1: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगू का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
0: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांव के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
4: नहीं करने देंगे।
5: बिल्कुल नहीं करने देंगे।
1: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
0: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थीं। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
1: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
6: गौरमा, गौरमा,
2: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहां से आ रही हो?
6: गौरमा, वो लोग आ रहे हैं।
2: कौन लोग आ रहे हैं?
6: अरे कहां आ रहे हैं, कुछ तो कहो। गौरमा,
2: हाँ,
6: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
2: क्या?
6: हाँ गौरमा, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ, रस्सियाँ और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके। उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
2: अच्छा, तो ये बात है। बहनों,
7: हाँ गौरमा, हाँ गौरमा,
2: चलो हम सब तैयार हो जाएं।
1: बिल्कुल,
2: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
7: हाँ गौरमा, हाँ,
5: सब तैयार हैं। हम
7: किसी भी हाल में जंगल कटने नहीं देंगे।
1: नहीं कटने देंगे।
5: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
0: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की

0: कई स्त्रियां थीं, उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ओज था।
1: ये है जंगल के उपकार,
2: मिट्टी पानी और बयान,
1: मिट्टी पानी और बयान।
3: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
4: कुछ नहीं हो जाए, अभी घटना को काटना बंद करो। बात होती तुम्हारी, ये क्या है?
5: अरे
4: क्या कर रहे हो?
5: मेरा मुंह के ताक रहे हो? चलो शुरू।
4: अरे भाई कौन है? रुको, इस पर जाएंगे पेड़ से।
6: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे? जिस जंगल ने तुझे पाला, पोसा, बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।
5: आगे बढ़ो।
4: अरे कहाँ से?
5: तुम इनकी बातों में बताओ। मैंने तुम्हें पेशगी दी है, पेशगी इस काम के लिए।
6: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे आज।
7: नहीं लगाने देंगे
6: बहनों, आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से।
2: हाँ, हम चिपक जाएंगे।
5: ठीक है तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो। चलो
0: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
3: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
5: ठीक है तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो। चलो।
0: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में ये आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
3: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
0: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
3: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
6: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहां से हमें फल, फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
0: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था, जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
8: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री,

समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा प्रवीण शर्मा और गीतांजलि, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुमलता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: तो श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, और इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: जी समीन, आप समाप्त कर रहे थे एनसीईआरटी का तैयार करदा स्पॉन्सर्ड तालीमी प्रोग्राम उमंग।
4: कास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
3: हमारी आवाज अब तक पहुंच रही है आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से। मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: लाख रुपए की फौरी मदद का ऐलान किया है। इसके अलावा जख्मियों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन ने भी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके के एक होटल में आज सुबह आग लगने के अफसोसनाक वाकये में कीमती जानों के इतलाफ पर ताजियत का इजहार किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में नायब सदर ने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी और बेहतरी की ख्वाहिश का इजहार किया। नायब सदर ने मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरा खानदानों के लिए हिम्मत और हौसले की दुआ की। दिल्ली की वज़ीर-ए-आला रेखा गुप्ता ने भी मालवीय नगर में आग लगने के हादसे में जानों के इतलाफ पर दुख का इजहार किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मोहतरमा गुप्ता ने कहा कि हादसे की इत्तला मिलने के फौरी बाद दिल्ली फायर सर्विसेज, दिल्ली पुलिस, कुदरती आफत से निमटने की जिला अथॉरिटी, कैट्स, एम्बुलेंस खिदमात और दीगर हंगामी खिदमात की एजेंसियों की टीमों को मुतहरक किया गया और राहत और बचाव कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गईं। वज़ीर आला ने कहा कि इन टीमों की तेज़ और बरवक्त कार्रवाइयों ने कई अफराद को बचाने और मुतासरा अहाते के इनखला में मदद की। वज़ीर आला ने कहा कि दिल्ली हुकूमत सूरत हाल पर करीबी निगाह रखे हुए है और मुतासरा कुंभों को हर तरह की तिबी मदद और मावनत की पेशकश की जा रही है। मगरबी बंगाल की साबिक हुक्मरान पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में अफरातफरी का आलम है और ये पार्टी तकसीम होने के दहाने पर पहुंच गई है। टीएमसी से निकाले गए रुकन असेंबली रितब्रता बनर्जी ने तकरीबन 60 अराकीन असेंबली की हिमायत हासिल होने का दावा किया है। इस तादाद से असेंबली कंट्रोल में फैसला कुन तब्दीली हो सकती है। उनके ग्रुप ने पहले ही असेंबली स्पीकर रथिंद्रा बोस को एक खत तहरीर करके खुद को हकीकी टीएमसी के तौर पर तस्लीम किए जाने की दरख्वास्त की है। दूसरी जानिब टीएमसी ने शोभनदेव चट्टोपाध्याय को ऐवान का लीडर और अश्मिता पात्रा को और न्याया बंदोपाध्याय को उनका नायब मुकर्रर कर दिया है, जबकि फरहाद हकीम चीफ व्हिप होंगे। साबिक वजीर आला ममता बनर्जी ने कोलकाता में एक रैली में बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि वो टीएमसी में फूट डालने की कोशिश कर रही है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में इंटीग्रेटेड कबायली तरक्याती एजेंसियों और इंटीग्रेटेड कबायली तरक्याती प्रोजेक्टों को मुस्तहकम करने से मुतालिक कौमी कॉन्क्लेव का इफ्तिताह किया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि मुल्क भर में रह रहा कबायली समाज सकाफती एतबार से काफ़ी गुना गुनियत का हामिल है और कबायली बिरादरी को आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें की जानी ज़रूरी हैं। सदर जमहूरिया ने मजीद कहा कि आखिरी घर और आखिरी गाँव तक तरक्की का पहुँचना ज़रूरी है। मोहतरमा मुर्मू ने इस बात पर फिक्रमंदी का इजहार किया कि अब भी कुछ कबायली तबकात हुकूमती स्कीमों से वाकिफ नहीं हैं।
1: पीएम जनमन योजना के तहत जनजातीय समुदाय में भी सबसे पिछड़े समूहों के 20,000 से अधिक गांव तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाने का लक्ष्य है। हम सब जानते हैं 75 जो ग्रुप्स वो है पीबीटीजी सबसे पिछड़े अभी भी कोई पेड़ के मंच के रहते रहते हैं, उनके कोई जमीन नहीं, जमीन था लेकिन रिकॉर्डेड नहीं, इसलिए उनको जमीन देकर घर बनाना उनके हर चीज के लिए अधिकारी लोगों को जितने कर्मचारी लोगों का दायित्व है।
0: सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ी सिलसिले की तशरीह और इसकी नक्शा साजी से मुतालिक मरकज की रिपोर्ट का एक आजादाना जायजा लेने की गरज से माहिरीन की आला इख्तियारात वाली कमेटी तश्कील दी है। भारत की जंगलात से मुतालिक तहकीक और तालीम की काउंसिल के डायरेक्टर जनरल कंचन देवी इस कमेटी की सरबराही करेंगी। पैनल से इस साल 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अरावली इको निज़ाम के तहफ्फुज़ से मुतालिक कलीदी मसाइल हल करने की गरज से एक गैर जानिबदाराना और साइंसी जाँच की ज़रूरत है। कर्नाटक कानून साज पार्टी के रहनुमा डी के शिव कुमार आज कर्नाटक के 25वें वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। गवर्नर थावरचंद गहलोत आज सपहर 4:05 पर बेंगलुरु में जनाब डी के शिव कुमार को हलफ दिलाएंगे। साबिक रियासती वजीर दाखिला जी परमेश्वर नायब वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। 12 कानून साज अराकीन भी आज वुजरा के तौर पर हलफ लेंगे। मुंतखब वजीर आला डी के शिव कुमार आज हलफ लेने वाले कानून साजों के अलावा साबिक वजीर आला सिद्धरमैया, बीजेपी के सीनियर लीडर बी एस येदियुरप्पा और जनता दल सेक्युलर के सीनियर लीडर एच डी देवेगौड़ा से आज सुबह मुलाकात की। हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत करने के लिए कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी, कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी के सी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला, मजहबी रहनुमाओं, मजदूरों, अदीबों, अदाकारों और सरकर्दा कारोबारियों और सनतकारों को मदऊ किया गया है। हलफबरदारी की तकरीब के जाए मकाम लोक भवन की हिफाजत के लिए 3,000 से ज़्यादा पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। आवाम के लिए शहर के मुख्तलिफ मकाम और 230 सरकारी बस

0: स्टैंड्स पर बड़े एलईडी स्क्रीन लगाए गए हैं ताकि लोग हलफबरदारी की तकरीब का बराह रास्त नज़ारा कर सकें। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने शमसी तवानाई की सालाना पैदावार की अपनी सलाहियत के मामले में अमरीका पर सबकत हासिल कर ली है और अब वो 2025 में शमसी तवानाई पैदा करने वाली दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मार्केट बन गया है। भारत ने काबिल जिक्र 155 गीगावैट से ज़्यादा नसब शुदा शमसी सलाहियत हासिल कर ली है, जिसकी बदौलत मुल्क की 50% गैर रिवायती ईंधन की सलाहियत के अपने हदफ को हासिल करने और मुकर्रर वक्त से पहले ही अपने NDCs को पूरा करने में मदद मिलेगी। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने कहा है कि तकरीबन 40,000 तलबा ने कामयाबी के साथ अपने जवाबी पर्चों की दोबारा जांच की दरख्वास्तें पेश की हैं और इस पूरे अमल को बगैर किसी परेशानी के मुकम्मल कर लिया गया है। CBSE ने 12वीं जमात के जवाबी पर्चों की स्कैंड कॉपियों में पाए गए मामलों की वेरिफिकेशन और उनकी दोबारा जाँच से मुतालिक ऑनलाइन पोर्टल कल शुरू कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मरकजी वजीर चिराग पासवान का तहरीर करदा एक मजमून शेयर किया है, जिसमें लद्दाख में नए मौके और इम्कानात को उजागर किया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि लद्दाख का एक मुकामी बाशिंदा जिद्दत तराजी इख्तरा और मौके की एक दास्तान तहरीर कर रहा है। बैडमिंटन में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु इंडोनेशिया ओपन के सख्त शुरुआती मुकाबले में कामयाबी के बाद दूसरे दौर में पहुँच गई हैं। वहीं मर्दों के सिंगल्स में आज HS प्रणॉय का मुकाबला आयरलैंड के नेट यूंगेन और आयुष शेट्टी का मुकाबला चीन के वेंग हेंगयोंग से होगा। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। दिल्ली के मालविया नगर इलाके के एक होटल में लगी जबरदस्त आग में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। वजीर आजम ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया है और महलुकीन के अफराद खानदान के लिए 2,00,000 रुपये की फौरी इमदाद का ऐलान किया है। तृणमूल कांग्रेस बहरान का शिकार हो गई है क्योंकि पार्टी से निकाले गए रुकन असेंबली रितब्रता बैनर्जी ने मगरबी बंगाल असेंबली के तकरीबन 60 अराकीन असेंबली की हिमायत का दावा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की तशरी का दोबारा जायजा लेने के लिए आला इख्तियारात के हामिल माहिरीन का पैनल तश्कील दिया है। सीनियर कांग्रेस लीडर DK शिवकुमार आज से पहर कर्नाटक के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आज मर्दों के सिंगल्स में HS प्रणॉय और आयुष शेट्टी अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashwani and I am Anuja Kumar with the Midday News. The headlines. 21 people killed in a massive fire at a hotel in Delhi's Malviya Nagar. Prime Minister Narendra Modi expresses grief. Announces an ex gratia of 2 lakh rupees to next of kin of each deceased. Trinamool Congress faces turmoil as expelled MLA Ritobrata Banerjee claims support of nearly 60 MLAs in West Bengal Assembly. Supreme Court forms high-powered expert panel to re-examine Aravali definition. Senior Congress leader DK Shivkumar to be sworn in as Chief Minister of Karnataka this afternoon. India becomes world's second largest solar growth market, surpasses USA in annual solar capacity additions. And in Indonesia Open Badminton, HS Pranoy and Ayush Shetty to play in men's singles this afternoon. And now the news in detail. 21 people lost their lives and 40 others were rescued after a fire broke out at a hotel in Malviya Nagar in Delhi this morning. DCP of South Delhi, Anant Mittal, said the fire has been successfully extinguished with the assistance of 8 fire tenders. Prime Minister Narendra Modi has expressed grief over the loss of lives in the fire incident. In a social media post, the Prime Minister said that authorities are providing all possible assistance to those affected. He also wished a speedy recovery to the injured. Mr. Modi also announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund to be given to the next of kin of each deceased. The injured would be given 50,000 rupees. Vice President C.P. Radhakrishnan, Home Minister Amit Shah and Delhi Chief Minister Rekha Gupta have also extended condolence over their loss of lives. More from our correspondent.
2: The fire incident occurred at 8:48 this morning. Soon after the incident, teams from Delhi Fire Service

चोरी चोरी। जी हाँ दोस्तों, यह है फिल्म का नाम जिसका नाम आपने अभी अभी चुना, अभी अभी सुना। मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज़ों में आपने ये नगमा सुना।

लीजिए दोस्तों, हमराही फिल्म से नगमा समाप्त कीजिए। एक बार फिर इसी जोड़ी का गाया नगमा है ये, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर।

जय हिंद फौजी भाइयों। फौजी भाइयों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खुश खुर्रम होंगे, अपना प्रोग्राम सुन रहे होंगे। और हमने आपको आपके साथ पिछले प्रोग्राम में आपसे वादा किया था कि हम एक और मुलाकात करेंगे आपके साथ एक और प्रोग्राम में। देखिए ना दोस्तों, हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और एक और मुलाकात हमें नसीब हुई। दोस्तों, कुछ मौसम होते ही हैं जो मुलाकातों के होते हैं, और जहाँ रिश्ते हो, जहाँ प्यार हो, वहाँ मुलाकात होना ज़रूरी है।

आदि बर्मन की मौसीकी में अमित कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में अपनी नगमा समाप्त किया। प्रोग्राम का शुरुआती नगमा था, फिल्म का नाम लवर्स। दोस्तों, मुलाकातों के बारे में हम बात कर रहे थे। इस बात में कोई दो राय नहीं कि आजकल का जो दौर है, आसानियों का दौर है, डिजिटल दौर है, लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं एक दूसरे के साथ मुलाकात करना या बात करना। लेकिन अगर इस बात पे गौर किया जाए कि इंसान जब दूसरे इंसान के साथ उसके रवाबित होते हैं, रबते में होते हैं, रिश्ते होते हैं, या एहसास का जज्बा होता है एक दूसरे के बीच, वहाँ जब रूबरू हो जाता है इंसान, तो उसका जायका, उसका मज़ा और बेहद सुकून देने वाला वो लम्हा होता है। क्योंकि जब हम किसी अपने से रूबरू होकर उससे मुखातिब होते हैं या वो हमसे बात करता है, तो दिल जो है सुकून कल्ब पाता है और इंसान बहुत खुशी इंसान को मैसर होती है। तो दोस्तों, बातें प्रोग्राम में और भी करेंगे। आइए समाप्त करते हैं प्रोग्राम का अगला नगमा।

जी हाँ समीन, आपने सितमगर फिल्म से ये मीठा सा प्यारा सा नगमा समाअत किया। किशोर कुमार की आवाज़ थी, राहुल देव बर्मन ने इस नगमे की धुन बनाई है और यह अशआर हैं मजरूह सुल्तानपुरी के। सही मानों में दोस्तों, जिंदगी में रहने वाली शय कोई नहीं, कभी मुसीबत तो कभी खुशियाँ, कभी दर्द और कभी बेहतरीन जिंदगी के वो लम्हात जिन्हें हम पाकर फूले नहीं समाते। जी हाँ दोस्तों, खुशियों और गमों का मिला जुला संगम है ज़िंदगी, और हमेशा हमें ये बात अपने जहन में बिठा लेनी चाहिए कि जब गम की आंधियाँ आती हैं, हमें उस वक्त अपने आप को बहुत ही मजबूती और सहजता से अपने आप को संभाल कर रखना चाहिए, ताकि आने वाली खुशियों की धूप में हम अपने आप को सेक सकें। आइए दोस्तों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं एक और नगमा।

जी हाँ दोस्तों, इंसान को अपने हालात पे कभी बस नहीं चलता, अपने जज्बात पे कभी बस नहीं चलता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान को इंसान के बस में नहीं होती, उसके दस्तरस में नहीं होती। आनंद बख्शी के अशआर आपने समाअत किए, राजेश रोशन ने नगमे की धुन बनाई है और किशोर कुमार की ये आवाज़ थी। फिल्म का नाम जूली। दोस्तों, इंसान को अपनी ज़िंदगी के साथ साथ उसके साथ चलने वाले रिश्ते राबिते हमेशा मजबूती से पकड़ लेने चाहिए। वो कहते हैं ना कि सख्त हाथों से भी छूट जाती हैं उंगलियां, रिश्ते ताकत से नहीं मोहब्बत से थामे जाते हैं।

0: फौजीभाइयों, आपने मजरू सुल्तानपुरी के कलमबंद के अशआर समाअत किए, बासु मनोहरी की मौसिकी में। जी हाँ दोस्तों, फिल्म का नाम है सबसे बड़ा रुपया। दोस्तों, प्रोग्राम में आपसे और भी बातें करेंगे, और भी फिल्मी नक़मे हैं आपके लिए प्रोग्राम में। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
2: अरे माँ देखो, एक्सीडेंट, रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
3: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
2: नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट की पीएम राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आर है माँ, अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
3: पर बेटा, हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
2: माँ इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का।

0: इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
1: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
0: माँ अब 7 रूल्स हैं, नो हरासमेंट। मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं। पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
1: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
0: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो। पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
1: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
0: वही तो माँ, पीएम राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें, जिंदगी बचाएं।
2: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।
3: फौजी भाइयों, वक्फे के बाद प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है।

फौजी भाई हो, आपने लता मंगेशकर का गाया ये बहुत ही प्यारा सा नगमा समाप्त किया। दोस्तों आपको बता दें कि आपने ट्यून किया है आकाशवाणी श्रीनगर का प्राइमरी स्टेशन मीडियम वेव 268.8 मीटर FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़। इसके अलावा हम आपसे जुड़े हैं DTH पर और आप हमें सुन सकते हैं आप ही के मोबाइल फोन्स पर ऑल इंडिया रेडियो लाइव ऐप के जरिए और न्यूज़ ऑन AIR पर भी।

फाजी दोस्तों, आपने मन मंदिर फिल्म से ये प्यारा सा नगमा समाप्त किया लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। दोस्तों, दौरे जदीद में इंसानों को क्या मयस्सर नहीं, जिस चीज़ की चाह करते हैं वो मिल जाता है, कोई बड़े पैमाने पे तो कोई छोटे पैमाने पे। इसी दौर में जहां इंसान के बहुत सारे रवाबित हैं, बहुत सारे नए नए दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि दोस्तियां आसान हो गई, अब इंसान के दूसरे लोगों के साथ रबते बहुत आसान रह गए, लेकिन इसी दौर में, दौरे जदीद की बात कर रही हूँ दोस्तों, कि इंसान की अगर इंसान अपने इर्द गिर्द अपने गिर्द नवाह में दौड़ाए अपनी नज़र और अपने उन दोस्तों को जिनको वो बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है, बहुत सारे उनमें उन्हीं के ख़िलाफ़ उसको मिलेंगे, और ऐसा भी उसको बहुत बार सबूत मिल जाएगा कि ये लोग जो उसके सामने उसके बहुत बेहतरीन और बहुत खैरख्वाह समझ अपने आप को साबित करते हैं, लेकिन जब कैसा है नहीं, मुनाफिकत का दौर है दोस्तों। अपने आप को इस दौर में किस तरह हम बचा सकते हैं, बचाने की कोशिश करें, अपने रबते मुखलिस लोगों के साथ ज़्यादा रखें। और वो किसी का कॉल है, मुझे यहाँ याद आ रहा है, कि अपने खिलाफ बात को खामोशी से सुन लिया करो, क्योंकि ऐसा होता है दुनिया में और ज़िंदगी की रोज़मर्रा की जो दौड़ धूप है, इसमें ऐसा नहीं है कि हर कोई हमारे साथ साथ ही खड़ा हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारे खिलाफ भी होते हैं, जो हमारी मुतजाद उनकी सोच होती है, हमारी सोच से बहुत अलग सोच रखते हैं और हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं, लेकिन उनके उनका जो सामना है बहुत एहतियात और खामोशी से करना चाहिए, क्योंकि जवाब जो है जो हमें उन्हें देना चाहिए, वक्त पर छोड़ना चाहिए, क्योंकि वक्त से बेहतर जवाब कोई नहीं दे सकता।

माजी दोस्तों, आपने आर डी बर्मन की मौसीकी में मजरू सुल्तानपुरी के अशार समात के फिल्म का नाम बड़े दिल वाला, और दोस्तों ये नगमा गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। दोस्तों, इन दो शानदार और दिलकश आवाज़ों के साथ ही हम अपने प्रोग्राम का अब आपसे इख्तिताम कर रहे हैं, आपसे लेना चाहेंगे इजाज़त। हमें उम्मीद है कि हमारा आज के नगमों का इंतखाब आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो इसी नगमे के साथ दीजिए अपने मेज़बान लाहुता फरहान को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त। खुदा हाफिज़। जय हिंद।

0: हम आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से आपसे मुखातिब हैं। जमीन 3:50 हुआ चाहते हैं। आइए समाप्त करते हैं उर्दू खबरों का बुलेटिन।
1: आदाब, यह आकाशवाणी श्रीनगर है। सपहर के 3:50 हुए हैं। खबरनामा लेकर मैं सईद मुशाहिद हुसैन। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। दिल्ली के मालविया नगर में आग की भयानक वारदात में 21 अपराध हलाक। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने डोडा और किश्तवाड़ अजला के सैलाब से मुतासर इलाकों में सड़कों और पानी की सप्लाई लाइनों की फौरी बहाली पर दिया जोर। आलमी बाइसिकल डे के मौके पर रॉयल सुप्रिंग गोल्फ कोर्स श्रीनगर से साइक्लोथॉन का इनेकाद। वजीर आला ने खेलकूद को बढ़ावा देने पर की स्पोर्ट्स काउंसिल की सराहना। और प्रधानमंत्री बाल राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामजदगियां तलब। अब खबरें तफसील से। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में आज सुबह आग की एक भयानक वारदात में 21 अफराद हलाक और कई दीगर जख्मी हो गए हैं। जनूबी दिल्ली के डीसीपी आनंद मित्तल ने कहा कि 8 फायर टेंडरों का इस्तेमाल करते हुए पुलिस, फायर सर्विस अहलकारों और एमरजेंसी में काम आने वाले दीगर मुतल्लिकीन की अंतक मशक्कत से न सिर्फ आग पर काबू पा लिया गया बल्कि 40 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचाया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर जबरदस्त रंजो गम का इजहार किया है। वजीर आजम ने कौमी इमदादी फंड से मरने वालों के लवाकीन में 2,00,000 रुपए की एक्स ग्रेशिया रिलीफ का ऐलान किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू सूबे के सैलाब से मुतासर डोडा और किश्तवाड़ अजला के डिप्टी कमिश्नर को हिदायत दी है कि वो मुकम्मल चौकसी बरकरार रखें और बुनियादी सहूलियात की फौरी बहाली को यकीनी बनाएं। उन्होंने लोगों की राहत रसानी के लिए तैनात टीमों को हाई अलर्ट पर रहने और सूरत हाल की मुसलसल निगरानी करने की ताकीद की है। LG ने सड़कों, शहरों और पानी की सप्लाई लाइनों की फौरी बहाली को यकीनी बनाने पर जोर दिया है। मनोज सिन्हा ने कहा है कि बुनियादी सहूलियात की बहाली का काम मुकम्मल होते ही नुकसान का तखमीना लगाने का अमल शुरू किया जाएगा। उन्होंने खुडर डोडा की पिंकी देवी, जो आसमानी बिजली गिरने के वाकये में अजजान हो गई, के लवाकिन के साथ ताजियत का इजहार किया है। डिप्टी कमिश्नर से मुतासर खानदान को फौरी इमदाद और हर मुमकिन तआवुन फराहम के लिए कहा गया है। आज वर्ल्ड बाइसिकल डे है। इस दिन को मनाने का मकसद बाइसिकल के इस्तेमाल से ट्रांसपोर्ट के किफ़ायती, बरोसमंद और माहौल दोस्त जरिए को फ़रोग देने और सेहत पर साइकिलिंग के मुसबत असरात को उजागर करना है। आज के दिन की मुनासिबत से मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कई साइकिल रैलियां मुनक़द हो रही हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज रॉयल सुप्रिंग गोल्फ कोर्स श्रीनगर में एक साइक्लोथॉन को झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें जिंदगी के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाले अफराद और तालिब इल्मों ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला ने आइंदा जम्मू साइक्लोथॉन के बारे में मैस्कॉट जर्सी और तशहीरी मुहिम की शुरुआत की। वज़ीर आला ने खेलकूद की सरगर्मियों में खुद नौजवानों की हौसला अफजा शिरकत और दिलचस्पी के लिए जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की सराहना की। इस मौके पर खेल के वजीर सतीश शर्मा, वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी और दीगर की अहम शख्सियात भी मौजूद थी। साइकिल सवारों ने करीब 20 किलोमीटर की मसाफत तय की। J&K एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज के अहतमाम से आकाशवाणी श्रीनगर के ऑडिटोरियम में मारूफ कलमकार, ब्रॉडकास्टर, शायर और मुहक्किक डॉक्टर सतीश विमल के साथ मुलाकात की एक नशस्त मुनक़द हुई, जिस दौरान उनकी अदबी खदमात को उजागर किया गया। तकरीब में अदब नवाजों की एक अंजुमन मौजूद थी। नशस्त की सदारत पद्मश्री, अवार्ड याफ्ता कलमकार और अदीब प्रोफेसर शफी शोक ने की। सतीश विमल के बारे में एक जामिया मुकाला डॉक्टर गुलाम नबी हलीम ने पेश किया। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा,
2: सतीश विमल एक एनसाइक्लोपीडिक पर्सनैलिटी है। वो एक सुखनवर हैं, शायर हैं, अदीब हैं, तर्जमाकार हैं और वो कल्चरल एक्टिव

0: एक्टिविस्ट भी हैं, सिरी शायर है जो इश्यूज पर लिखता है, जो समाज की तीसरी आंख मैं कहूंगा उन्हें, बड़ी बारीक बीनी से चीजों को देखता है, उन्हें अच्छी सूरत में पेश करता है। वो एक सकाफत साज है और एक अदब साज, अदब नवाज और मंजे हुए अदीब है, जिनकी तमाम लिखाई, चाहे गजल, नज्म या कुछ और भी, वो देर पा है और कलील मुद्दती लिखाई नहीं है। उन्हें कश्मीरी कौम उर्से दराज तक याद करती रहेगी।
1: प्रोग्राम के दौरान डॉक्टर सतीश विमल का कलाम वादी के एक मारूफ गुलकार उस्ताद मुनीर अहमद मीर ने पेश किया, जबकि कलमकार मौसूब से सवाल और जवाब का एक दिलचस्प सेशन भी हुआ। ये हैं खुद डॉक्टर सतीश विमल के तासुरात।
2: एकेडमी ने मेरी छोटी सी अदबी कोशिश को रिकॉग्नाइज करके मेरे साथ मुलाकात का एक सिलसिला शुरू किया, जिसमें वादी के बहुत बड़े अदीब अदब नवाज लोग आए थे। इतनी शानदार महफिल का इनेकाद हुआ, मुदल्लल बात हुई मेरे छोटे से कंट्रीब्यूशन पर, और जो मैंने कुछ लिखा है उसके हवाले से बात हुई, और जो मेरा राइटिंग को लेकर के एक विजन है, एक पर्सपेक्टिव है, उस पर मैंने बात की, लोगों के सवालात के जवाबात दिए। मुझे लगता है कि मुझे अपने ही लोगों तक ज्यादा बेहतर रसाई का मौका मिला, और इस तरह का सेलिब्रेशन न सिर्फ मेरे लिए अच्छा है, बल्कि मैं मानता हूं कि एक तहरीक सी बनती है कि जिसने भी थोड़ा सा किया उसकी हौसला अफजाई होती है।
1: एकेडमी की जानिब से कलमकार मौसूफ को इज्जत अफजाई के तौर पर तौसफी सनद और शॉल पेश किया गया, जबकि आकाशवाणी के शोबे खबर की तरफ से भी डॉक्टर सतीश विमल की इज्जत अफजाई की गई। शोबे खबर के साबिक सरबरा और मारूफ अफसाना निगार मुश्ताक अहमद मुश्ताक के तासुरात।
3: डॉक्टर सतीश विमल के कई रुख हैं और वो कई जबानों में लिखते हैं, और हमारा जो मासिर अदबी मंजरनामा है उसमें एक इंतहाई अहम नाम है, और उनका जो तख्लीकी शऊर है, तनकीदी शऊर है, वो बहुत गहरा है, और मुल्की अदबी मंजरनामे और अदबी रिवायात पर उनकी गहरी पकड़ है, और उनकी तख्लीकात भी बहुत ही अच्छी हैं, बहुत आला दर्जे की हैं। मीर द इमिनेंट प्रोग्राम में उनको बुलाया जाना एक बहुत अच्छी बात है, ये रिवायत वैसे चली आ रही है। इससे ये होता है कि एक तो सेलिब्रेट किया जाता है अपने जमाने के एक अदीब को अपने जमाने के दूसरे अदीबों के साथ, और दूसरा उनको उनके अदबी सफर और उनका जो इर्तिका हुआ है उसके बारे में जानने का बता खुद उनसे ही मौका मिलता है, तो ये एक बहुत ही अच्छा अमल है।
1: ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। मरकज में NDA हुकूमत के 12 बरस मुकम्मल हुए हैं, और इस दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में आम लोगों की फलाह व बहबूद के लिए मुतअद्दिद स्कीमें शुरू की गई, जिनमें आयुष्मान भारत योजना भी शामिल है। पूरे मुल्क में बड़े पैमाने पर लोग इस स्कीम से इस्तेफादा करके तिबी निगहदाश्त की मयारी सहूलियात हासिल कर रहे हैं। इस बारे में मारूफ इक्तिसादी माहिर डॉक्टर एजाज़ अयूब ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
4: ये जो कैंसर वाली चीज़ है इसमें जो एक्सपेंडिचर है इट्स मोस्टली प्राइवेटाइज्ड, सरकार की तरफ से इसमें अक्रॉस इंडिया कहीं पे भी ऐसी इसमें लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है बहुत कॉस्टली आते हैं, या बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रोसीजर, कीमोथेरेपी हो गया, रेडियोथेरेपी हो गया, बहुत कॉस्टली है। तो आयुष्मान भारत में अगर वो इंक्लूड करेंगे तो इसके बजट पे अच्छा खासा डेंट आ सकता है, तो आई थिंक उसके लिए मे बी गवर्नमेंट हैज़ टू कम अप विद अ न्यू स्कीम डिजीज स्पेसिफिक।
1: श्रीनगर में आज कई अफराद ने जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर पार्टी के सदर DM शाही ने शमूलियत करने वालों का इस्तकबाल किया। नामा निगारों से बात करते हुए मौसूफ ने जम्मू कश्मीर की मौजूदा अवामी सरकार के कामकाज को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा,
5: ये सरकार कोई काम इनसे नहीं हो रहा, कोई वादा इनका पूरा नहीं हुआ, लोगों की जो उम्मीदें थी वो लोगों से बहुत दूर हो गई। इन्होंने बिजली मीटर लगाने में काम किया, रोड्स की इतनी हालात खराब है, टूरिज्म इंडस्ट्री कोलैप्स पे पहला हमने देखा, गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन इससे बहुत अच्छी थी।
1: महकमा आला तालीम ने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ कॉलेजों में 4 साल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्रामों में दाखिले के ताल्लुक से कॉलेजों के अलॉटमेंट के पहले राउंड की फहरिस्त जारी की है, जो महकमे के दाखिला पोर्टल JKAdmissions.in पर दस्तियाब हैं। डायरेक्टर कॉलेज जम्मू कश्मीर प्रोफेसर शेख एजाज बशीर की जानिब से जारी एक प्रेस बयान में मुतलिक उम्मीदवारों से कहा गया है कि वो ऑनलाइन पोर्टल पर मुकर की गई दाखिला फीस अदा करें। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात महकमे की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। मरकजी सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामजदगियां तलब की है। नामजदगियों के इंदराज की आखिरी तारीख 31 जुलाई मुकर्रर की गई है। यह एजाज बहादुरी, सामाजिक खदमात, माहौलियात, खेल, फन और सकाफत और साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे शोबों में गैर मामूली सलाहियतों का मुजाहरा करने वाले बच्चों को दिया जाता है।

आकाशवाणी केंद्र श्रीनगर थी आई दा पहाड़ी प्रोग्राम सुनने वालों को जहांगीर अहमद खान दा सलाम कबूल होवे। सामीन उम्मीद करदा कि तुसे सारे बखैर वाफियत होसो। अस्ती भी हमेशा ही दुआ होंदी है कि अस्ते सामाइन जड़े अस्ते कदरदाइन हमेशा खुश ता खुशहाल रहवेन। सामीन ब्याह दे बाद जौजैन यानि मियां बीवी दी सब थी बड़ी तमन्ना और आरजू ए होंदी है कि रब उन्हां को औलाद दी नियामत अता करे। औलाद दी आरजू एक फितरती अमर है। इंसान ये चाहता है कि इसका एक वारस होवे जिहड़ा इसके मकसद को मंजिल तुणी पहुँचने विच इसका सही जानशीन साबित होवे। सामीन दुनिया विच सब तो ज़्यादा बुजुर्ग और नेक अस्थियां रसूलां दीन। इन अस्थियां सुन ना सिर्फ औलाद की तमन्ना की बल्कि औलाद वास्ते दुआवां भी मंगियां इन। सामीन नेक औलाद की ना सिर्फ तमन्ना होनी चाहिए बल्कि औलाद को नेक बनने की भी कोशिश करनी चाहिए। इस वास्ते कि नेक औलाद माओ प्यो के ना रोशन कर दिन और पूरे खानदान खासकर माओ प्यो वास्ते दुआए मकफरत कर दिन। सामीन जिस वेले बच्चा दुनिया विच आंदा है वो एक सादा कागज़ नाल आंदा है। माँ पे जे चावन इस तै लिख सकते हैं यानी वो अपनी औलाद को जिजा चावन बना सकते हैं। सामीन बच्चे की तरबियत विच सब तो ज़्यादा तो अहम रोल माऊ दा आंदा है। एक माँ बेहतरीन तरबियत दे के बच्चे को कामयाब और बाखलाक बना छुड़ती है या फिर गलत तरबियत दे के इसकी आने वाली जिंदगी तय मंदे असरात सड़ सकती है। सामीन जिस बच्चे को माओ प्यो और नज़दीकी माहौल दी सही तरबियत होंदी है वह समाज का बेहतरीन इंसान बन गिंदा है और जिस बच्चे को सही तरबियत नहीं मिलती वह मंदे रात टुर गिंदा है। सामीन माऊ की चोल बच्चे की पहली दर्जगा होंदी है। इत्थों बच्चे की असल या मंदा बनने की बुनियाद पैंदी है। बच्चा जिजा अपने माओ प्यो को दिखसी वह भी उजाई बनने की कोशिश करसी। माऊ के अखलाक असल हो सन वह सच आखती हो सी इबादत करती हो सी मंदी गलां तो बचती हो सी तो बच्चे भी आप ही उजा तरीका इख्तियार कर सन। इस वास्ते अलग मेहनत करने की जरूरत नहीं पैंदी। लेकिन अगर हर वेले कार दे रहने वाले दे इखलाक साफ ना हो सन और वह हर वेले एक दूए नाल कुलदे हो सन उन्हां विच कूड़ फरेब और बदयानती हो सी फिर बच्चे दे इखलाक बिगड़ गिंदे न। सामीन अपनी औलाद को इज्जत देनी चाहिए और इनकी सही तरबियत करनी चाहिए। बच्चों के अंदर सच्चाई सबर मेहमान नवाजी वगैरह असल सिफात पैदा करनी चाहिए। गालियां गैबत जुगलखोरी तकबर वगैरह मंदी आदतों तो अपने बच्चों को बचना चाहिए। तसामीन इस बारे गलां का और भी करसा। प्रोग्राम दे शुरू विच पेश है तो सदाबहार गीत। सदाबहार आवाज़।

0: अदा कर दिए। मां बच्चे दे अंदर हौसला पैदा करने दा एक बेहतरीन जरिया है। माऊ दे दिलासे और हिम्मत अफजाई नाल आदमी मुश्किल तो मुश्किल काम भी बड़ी आसानी नाल कर गिंदा है। सामीन तारीख दे अजीम लोकां दी जिंदगी दा मुताला कीते गिच है तां इह गल साफ पता लगदी है कि उन्हां को दुनिया बिच उच्चा मुकाम माऊ दी बेहतरीन तरबियत दे नतीजे बिच हासिल होई है। सामीन बच्चों को पालने और इनकी खिदमत करने दा इलम मुची डूंगा है। एक माऊ को इस इलम दे बारे बिच पूरी मालूमात होनी चाहिए ताकि वह अपने बच्चे दी परवरिश सही तरीके नाल कर सके। तसामीन इस हवाले नाल पेश है तो सवास्ते एक गलबात मौजू है बच्चों की तालीम बिच माऊ दा रोल ते गलबात पेश कर रही हैं शबनम परवीन।
1: इस तरह हर मां प्यो दी यही चाहत होंदी है कि उन्हां दा बच्चा पढ़ लिख के एक अच्छे थी अच्छा शहरी बन जुले, समाज बिच इज्जत ते एहतराम नाल जिंदगी बसर करे ते ये ख्वाबां तेई पूरियां होसन के बच्चे को सही तरबियत दिती जुले। इंसान दी ज्यादातर जिंदगी सही तरबियत नाल ती जुलदी है। इब्तदाई दौर थी दौर जदीद तक कई पहलो बदले, कई दौर गुजरे, गारां थी निकल के इंसान बस्तियां बिच आया, नंगे जिस्म को टकने वास्ते तरह तरह दे लबास बने, टेरियां थी मकान बने, रस्तियां थी सड़कां बनिया, शहर बने, इल्म आए। इस तरीके दिगर कई 1,24,000 पैगंबर दुनिया ते खुदा करीम सुन भेजे ताकि इंसान हदायत बिच जिंदगी गुजारे, किया के रहबरी बगैर इंसान दी जिंदगी बसर करनी मुश्किल ते नामुमकिन है। गरज हर दौर बिच अल्लाह पाक सुन इंसान को रहबरी थी मालोमाल कीता, ए सिलसिला ता क़यामत कायम दायम है। समाज बिच हर इंसान बतौर इंसान पैदा होंदा है ते ना कोई मजहब ना कोई रंग होंदा है। हर मां प्यो इसको तरबियत और तालीम देन देन आज दा दौर तेजी दा दौर है। इस दौर बिच बगैर तालीम इंसान कोई मकाम नहीं रखता। हर मां प्यो ते इस जिम्मेदारी होंदी है कि अपने बच्चे को इस जदीद दौर बिच तालीम तरबियत दे नूर थी आरास्ता करे। अजकल छुट्टियां चल रही हैं, सर्दी दा इस मौसम बिच बच्चों को घर दे माहौल दा असर होंदा है, किया के ओ बड़ी संजीदगी नाल मां प्यो दा करदार मुशायरा करदे हैं। सिर्फ तालीम बच्चों वास्ते काफ़ी नहीं होंदी, उसकी तरबियत दी जिम्मेदारी भी असा ही क्यों है। एक बच्चा बेहतर थी बेहतर तालीम हासिल कर सकता है जे उसते साफ पाक दिमाग उते गलत असर ना होएन। असां दी घर दी लड़ाई समाज दा बुरा असर बनदी है और असां दी गलत तरबियत सब चीज़ां बच्चे वास्ते काफ़ी मुज़िर हैं, क्या कि एक असी उस्ताद को बच्चे दी तरबियत का जिम्मेदार ना ठहरा सकते हैं। घर दे माहौल बिच बच्चे को इब्तदाई थी गिन के मौत तक जिम्मेदार होंदा है, ये चीज़ दिमाग बिच घर घर जुलदी है। इस वास्ते असा को असी खराबियां नहीं करनिया चाहिदियां कि असां दे बच्चे दे दिमाग ते ये असर होवे। और एक मां प्यो दा हक जरूर बनता है कि खासकर ओ दौरे छुट्टियां बिच बच्चों को किसी माहिर तालीम दी सूरत बिच रखें और स्कूल दे कमां को रोज़ चेक करना चाहिए। अगर असी अपनी मेहनत दा खर्चा और कमाई इन्हां ते लेंदे हाँ ते फर्ज असां को हर रोज़ बच्चों दा सबक चेक करना चाहिदा। और स्कूल दे माहौल थी एक घर दा माहौल बिल्कुल अलग होंदा है। इस विच मुख्तलिफ स्कूल दे बच्चे मिल के एक उस्ताद को जुलदे हैं, जियां के दुनिया दे मुख्तलिफ आदतां मिलदियां हैं। उस्ताद कोलू निकल के इंसान बच्चों को टेम ते घर पहुंचावे, एकदम अपने बच्चों को टेम ते आने और फर्ज यही बनता है मां प्यो दा घर बिच ग्रानी रखे, नालो नाल बच्चों को खेडन दा आइटम भी देना चाहिदा ताकि बच्चे किसी जहनी दबाव दा शिकार ना होवन। और असां को चाहिदा कि असी इसका ख्याल रखां और जिस तरह असी तालीम दा ख्याल ते आं। बच्चे यार समाज दे कौम दी तकदीर होंदे न। ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਰਬੀਤ ਦਿੱਤੀ ਜੁਲੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਦੇਣ।

0: आदाब। ए आकाशवाणी श्रीनगर खबरनामा केन का मैं रेहान अजीज। पहलियां खबरां दियां सुर्खियां। दिल्ली दे मालविया नगर विच आज दी खौफनाक अग दी वारदात विच एक 21 नफरां दी मौत। लेफ्टिनेंट गवर्नर सुन डोडा और किश्तवाड़ जिलियां दे सैलाब नाल मुतासर इलाकें विच सड़कां पानी दी सप्लाई दियां लाइनां को फौरी बहाली पर दिता जोर। आलमी बाइसिकल डे दे मौके उत्ते रॉयल स्प्रिंग्स गाफ कोर्स श्रीनगर तू साइकलोथान दा इनकाद। वजीर आला सुन खेड कूद को बढ़ावा देते वास्ते स्पोर्ट्स कौंसल दी कीती तारीफ। और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 वास्ते नामजदगियां तलब। हुण पेशा खबर दी तफसील। दिल्ली दे मालविया नगर इलाके विच अज सुबह अग दी एक खौफनाक वारदात विच 21 नफरां दी मौत हो गई और कई बाकी जख्मी हो गए। जनूबी दिल्ली दे डीसीपी आनंद मित्तल सुनाख्या के 8 फायर टेंडरां दा इस्तेमाल करदे होया पुलिस फायर सर्विस एहलकारां और एमरजेंसी विच काम करने वाले बाकी मुतलकीन दी बेहद मेहनत मशक्कत नाल ना सिर्फ अग उत्ते काबू कीते गए बल्कि 40 कोलों ज्यादा नफरां को घटका अस्पताल पहुंचाया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी सुन इस हादसे पर जबरदस्त रंज गम का इजहार किया। वजीर आजम सुन कौमी इमदादी फंड विचों मरे वालियां दे करीबी रिश्तेदारां विच 2 लाख रुपए की एस एक्स ग्रेशिया रिलीफ की इमदाद का ऐलान भी किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुन जम्मू सूबे दे सैलाब नाल मुतासर डोडा और किश्तवाड़ जिले दे डिप्टी कमिश्नर को हिदायत दीती कि मुकम्मल चौकसी बरतन और बुनियादी सहूलियात की फौरी बहाली को यकीनी बनावन। उन्होंने सुन लोगों की राहत रसानी वास्ते तैनात टीमों को हाई अलर्ट पर रहने वास्ते और सूरत हाल की लगातार निगरानी करने की ताकीद की। एल जी सुन सड़कों शहरावां और पानी की सप्लाई लाइनों की फौरी बहाली को यकीनी बनाए वास्ते जोर दिता। मनोज सिन्हा सुन आख्या कि बुनियादी सहूलियात की बहाली का काम मुकम्मल आंदिया ही नुकसान का तखमीना लाए का अमल शुरू किए गए। उन्होंने सुन खुडहर डोडा की पिंकी देवी जिड़ी आसमानी बिजली चढ़ी दे वाके विच गुजर गई इस दियां रिश्तेदारां नाल ताजी दा इजहार कीता। डिप्टी कमिश्नर सुन मुतासर खानदान को फौरी इमदाद और हर मुमकिन तावन फराम कीते वास्ते आख्या। अज वर्ल्ड बाईसाइकिल डे आ। इस ध्याड़े को मनाए दा मकसद बाईसाइकिल दे इस्तेमाल नाल ट्रांसपोर्ट दे सेल सस्ते भरोसेमंद और माहौल दोस्त जरिए को फरोग देते और सेहत पर साइकिलिंग दे चंगे असरात को उजागर करना। आज दे ध्याड़े दी मुनासबत नाल मुल्क दे नाल नाल जम्मू कश्मीर विच भी कई साइकिलां दियां रैलियां मुनक्कद हो रहियां। वजीर आला उमर अब्दुल्ला सुन अज रॉयल स्प्रिंग्स गाफ कोर्स श्रीनगर विच एक साइकलोथान को चंडी दसाल का रवाना किया जिस पर जिंदगी दे मुख्तलिफ शोबे नाल ताल्लुक रखे वाले नफरां और तालिबे इल्मां सुन शिरकत की। इस मौके पर वजीर आला सुन आख्या आइंदा जम्मू साइकलिंग थान दे बारे विच मस्कट जर्सी और तहशीरी मुहिम की शुरुआत की। वजीर आला सुन खेड कूद दियां सरगर्मियां विच नौजवानों की हौसला अफजाई कीती और दिलचस्पी रखे वालियां जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स कौंसल दी सराहना कीती। इस मौके पर खेड दे वजीर सतीश शर्मा वजीर आला दे मशीर नासर असलम वानी और बाकी कई अहम शख्सियात भी मौजूद आसे। साइकिल सवारां सुन करीबन 20 किलोमीटर दा सफर कट खड़िया। जे एंड के अकैडमी आफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज के एहतमाम नाल आकाशवाणी श्रीनगर के आडिटोरियम विच मारूफ कलमकार ब्रॉडकास्टर शायर और मुहक्किक डॉक्टर सतीश मीमल नाल मुलाकात की थी। एक निशस्त मुनक्कद हुई जिस दौरान इनकी अदबी खिदमात को उजागर किया गया। तकरीब विच अदब नवाजा की एक अंजुमन मौजूद आसी। निशस्त सदारत पद्मश्री अवार्ड याफ्ता कलमकार और अदीब प्रोफेसर शफी शोक सुन की थी। सतीश मीमल के बारे में एक जामिया मकाला डॉक्टर गुलाम नबी हलीम सुन पेश किया। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर नाल गल्लां करदे होया उन्होंने सुन कुछ इस तरह आख्या।
1: सतीश विमल एक एनसाइक्लोपीडिक पर्सनैलिटी है। वो एक सुखनवर हैं, शायर हैं, अदीब हैं, तर्जमाकार हैं और वो कल्चरल एक्टिविस्ट भी हैं। श्री शायर है जो

0: शूज पर लिखता है, जो समाज की तीसरी आंख में कहूंगा उन्हें, बड़ी बारीक बीनी से चीजों को देखता है, उन्हें अच्छी सूरत में पेश करता है, वो एक सकाफत साज है और एक अदब साज, अदब नवाज और मंजे हुए अदीब है, जिनकी तमाम लिखाई है, चाहे गजल, नज़म या कुछ और भी, वो देर पा है और कलील मुद्दती लिखाई नहीं है, उन्हें कश्मीरी कौम और से दराज तक याद करती रहेगी।
1: प्रोग्राम के दौरान डॉक्टर सतीश मीमल का कलाम वादी के एक मारूफ गुलकार उस्ताद मुनीर अहमद मीर सुन पेश किया, जबकि कलमकार मौसूफ सुन सवाल और जवाब का एक दिलचस्प सेशन भी हुआ। एन आप डॉक्टर सतीश मीमल दे तासरात समाप्त फरमाओ।
2: एकेडमी ने मेरी छोटी सी अदबी कोशिश को रिकॉग्नाइज करके मेरे साथ मुलाकात का एक सिलसिला शुरू किया, जिसमें वादी के बहुत बड़े अदीब अदब नवाज लोग आए थे। इतनी शानदार महफिल का इनेकाद हुआ, मुदल्लल बात हुई मेरे छोटे से कंट्रीब्यूशन पर, और जो मैंने कुछ लिखा है उसके हवाले से बात हुई, और जो मेरा राइटिंग को लेकर के एक विजन है, एक पर्सपेक्टिव है, उस पर मैंने बात की, लोगों के सवालात के जवाबात दिए। मुझे लगता है कि मुझे अपने ही लोगों तक ज्यादा बेहतर रसाई का मौका मिला, और इस तरह का सेलिब्रेशन न सिर्फ मेरे लिए अच्छा है, बल्कि मैं मानता हूं कि एक तहरीक सी बनती है कि जिसने भी थोड़ा सा किया उसकी हौसला अफजाई होती है।
1: अकेडमी की तरफों कलमकार मौसूफ को इज्जत अफजाई के तौर उत्ता तौसीफी सनद और शाल पेश किए गया, जबकि आकाशवाणी शोभा खबर की तरफों भी डॉक्टर विमल की इज्जत अफजाई की गई। शोभा खबर के सबका सरबरा और मारूफ अफसाना नगार मुश्ताक अहमद मुश्ताक के तसरात।
3: डॉक्टर सतीश विमल के कई रुख हैं और वो कई जबानों में लिखते हैं, और हमारा जो मासिर अदबी मंजरनामा है उसमें एक इंतहाई अहम नाम है, और उनका जो तख्लीकी शऊर है, तनकीदी शऊर है, वो बहुत गहरा है, और मुल्की अदबी मंजरनामे और अदबी रिवायात पर उनकी गहरी पकड़ है, और उनकी तख्लीकात भी बहुत ही अच्छी है, बहुत आला दर्जे की है। मीर द इमिनेंट प्रोग्राम में उनको बुलाया जाना एक बहुत अच्छी बात है, ये रिवायत वैसे चली आ रही है। इससे ये होता है कि एक तो सेलिब्रेट किया जाता है अपने जमाने के एक अदीब को अपने जमाने के दूसरे अदीबों के साथ, और दूसरा उनको उनके अदबी सफर और उनका जो इर्तिका हुआ है उसके बारे में जानने का बता खुद उनसे ही मौका मिलता है, तो ये एक बहुत ही अच्छा अमल है।
1: एक खबर तुसी आकाशवाणी सीनियर तो सुन रहे हो, खबर तुसी आकाशवाणी मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर सुन सकते हो। श्रीनगर विच अज कई नफरा सुन जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर विच शमूलियत अख्तियार कीती। इस मौके ता पार्टी दे सदर GM शाहीन सुन शमूलियत करने वालियां दा इस्तेमाल कीता। नामा निगारा को गल्लां करदे होए मौसूफ सुन जम्मू कश्मीर दी मौजूदा अवामी सरकार दे कामकाज को तनकीद दा निशाना बणांदे होए इस तरह आख्या।
4: ये सरकार कोई काम इनसे नहीं हो रहा, कोई वादा इनका पूरा नहीं हुआ, लोगों की जो उम्मीदें थी वो लोगों से बहुत दूर हो गई। इन्होंने बिजली मीटर लगाने में काम किया, रोड्स की इतनी हालात खराब, टूरिज्म इंडस्ट्री कोलैप्स पे पहला हमने देखा, गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन इससे बहुत अच्छी थी।
1: मरकज विच NDA हुकूमत दे 12 साल पूरे हुए और इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क्यादत विच आम लोगों की फलाह व बहबूद वास्ते मुतअद्दिद स्कीमां शुरू की गई, जिन्हां विच आयुष्मान भारत योजना भी शामिल है। सारे मुल्क विच बड़े पैमाने पर लोग इस स्कीम को फायदा हासिल करका तिबी निगहदाश्त की मियारी सहूलियात हासिल कर रहे। इस बारे विच मारूफ इकतसादी माहिर डॉक्टर एजाज अयूब सुन आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर नाल गल्लां करदे होए कुछ इस तरह आख्या।
5: ये जो कैंसर वाली चीज है, इसमें जो एक्सपेंडिचर है इट्स मोस्टली प्राइवेटाइज्ड, सरकार की तरफ से इसमें अक्रॉस इंडिया कहीं पे भी ऐसी इसमें लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है बहुत कॉस्टली आते हैं, या बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रोसीजर, कीमोथेरेपी हो गया, रेडियोथेरेपी हो गया, बहुत कॉस्टली है। तो आयुष्मान भारत में अगर वो इंक्लूड करेंगे तो इसके बजट पे अच्छा खासा डेंट आ सकता है, तो आई थिंक उसके लिए मे बी गवर्नमेंट हैज टू कम अप विद अ न्यू स्कीम डिजीज स्पेसिफिक।
1: महकमा आला तालीम सुन जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ कालजा में 4 साल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्रामों में दाखिले के तालुक नाल कालजा की अलाइनमेंट के पहले राउंड की फहरिस्त जारी की, जेडे महकमे के दाखिला पोर्टल JKAdmissions.in पर दस्तियाब है। डायरेक्टर कॉलेज जम्मू कश्मीर प्रोफेसर शेख एजाज बशीर की तरफों जारी एक प्रेस बयान में मुतलका उम्मीदवारों को आखे गया कि ऑनलाइन पोर्टल पर मुकर्रर की गई दाखिला फीस अदा करन। اس سلسلے وچ مزید تفصیلات

मोजस सजनों दे मेहरबानों थारी खिदमत मा थारा मेज़बान डॉक्टर अल्ताफ निज़ामी तरफों प्यार भरियो अस्सलाम अलैकुम। उम्मीद करूँ जी खैर सुख नाल होवेगा ते यही दुआ भी है जे रब तआला आसना खेड़ता रखे सदो सलामत रखे खुशहाल रखे ते यो मारो जड़ो मुहब्बत को सिलसिलो है यो हवाई लहरों का सिलसिला इसी तरह जुड़ी रहे ते तम अपनी नेक तो अपना नवाजता रही ते अम्मी कोशिश करता रहा कि बेहतर दू बेहतर कुछ खास मौजूआत वर फायदेमंद मौजूआत वर थारे नाल गल सांझी करता रहा। सजनों गर्मी को मौसम चले लगो वो ते आज कुछ इसे बारे गल करांगा। तम जानी कि जून ते जुलाई तेज धूप ते इसमें बद तो दर्जा हरारत इस संग न छड़ी मारी रोजमर्रा की जिंदगी मुतासर वह बल्कि इस नाल मारी सेहत पर भी डूंगा असरात मुरतब होवी। जे एहतियात न बरती जाए तो गर्मी की शिद्दत पानी की काटी थकन मुझ सारी और बीमारी भी इस मौसम में इंसान ना मुतासर करी। हुण जरूरी यह बने जे इन गर्मियों का त्याड़ा मामना पानी को खासी मकदार में इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि गर्मियों में तरसे ज्यादा निकला ते इस गलू पानी को जिसम में जरूरी मकदार में रहनू जरूरी है। ते माहिरीन के मुताबिक एक सेहतमंद इंसान ना रोजाना घट ते घट 10 गिलास पानी का जरूर पीना चाहिए। पानी इंसान का खून ना भी साफ रखे थायराइड जैसी बीमारियां ते भी महफूज रखे। ते गलबात को सिलसिलो अगे जारी रखांगा। प्रोग्राम को आगाज कर दें नात शरीफ नाल ते आवाज है मोहम्मद यूसुफ की।

हम सुन रहे था एक खूबसूरत जी गज़ल सूरज सिंह की आवाज़ में। सजनों, गर्मियां में जड़ी गजा है वह भी छट छीर के खानी चाहिए। बाजारी द तली हुई चीज़ों को घट इस्तेमाल करनो लोड़िए ता जे मैदा की खराबी नाले बदहजमी जड़ी है वह ना बन सके। तो इस मौसम में हम अपनी गजा में ताज़ा सब्जी, मौसमी फल, खट्टो दूध वगैरह सही इस्तेमाल कर सकें। तो ऐसी गजा ना सिर्फ जिसम ने ठंडक बख्शी बल्कि पानी की कमी घाटी ना भी पूरा कर छोड़ी जी। ते अगे इस तरह करा के थारी खिदमत में पेश कर दिया एक माइयो ते या आवाज़ है यूनस लुलाबी की ते कलाम है चौधरी इसराइल असर साहब को।

जी सजनो, तुम सुन रहे था मायो यूनस लुलाबी की आवाज़ थी तो कलाम थो चौधरी इसराइल असर साहब को। सजनो, गर्मियों में बच्चों ते बुजुर्गों को खास ख्याल रखना लोड़ी है, क्यों जे इन पर मौसम का ज्यादा असरात पैवे, चाहे फिर वह गल ठंडी होवे या गर्मी की। बच्चा ना बाजारी चीज़ों ते महफूज रखने की कोशिश करनी चाहिए, मसलन बाजारों की आइसक्रीम ठंडा वगैरह इसके बदले कारवर मशरूबात बना गए या नॉर्मल पानी को इस्तेमाल जड़ो है वो किया जा सके। हर मौसम की तरह गर्मी का मौसम में भी सफाई को खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में जरासीम तेजी नाल फैली, इस वास्ते हाथ धोने की आदत चंगी रहे, साफ पानी को इस्तेमाल करना इंसान के वास्ते बेहतर रहे, तो सफाई जी है ना वह मुझे जरूरी हो जाए। तो हम देखें कि मक्खियों को जो कण बैस है या गंदगी के ऊपर, इस नाल कई सारी बीमारी जड़ी है वे फिर शुरू हो जाए, तो सफाई जी है ना इन सारिया बीमारियों ने मात दे छोड़े। तो अगे आओ इस तरह करा कि थारी खिदमत में पेश कर दें एक और गज़ल, आवाज़ है फयाज़ अहमद खान की,

सजनों, ये जड़ी एहतियात हैं हमने मुझ सारी बीमारियां थी बचा सकें। तो जे इसा मौसम में किसी शख्स ने शदीद बुखार होवे, चक्कर आवे या शदीद कमजोरी महसूस होवे तो फौरन माहिरीन डॉक्टर संग राबतो करनो लोड़िए। तो चूंकि परहेज इलाज तो बेहतर है और इंसान ना ऐन वक्त पर मुनासिब वक्त पर इस चीज़ को ध्यान रखनो लोड़िए ता जे वो किसी मंदी बीमारी गलीज बीमारी थे बच सके। ते अगे इस करा के लोकगीत सुन लिया

हम अज गर्मियों का मौसम साफ सफाई बारे गल करन लगा सजनो मुक्ती गल या भी है जे एहतियात जड़ो है परहेज जिस नाम का वो इलाज ते बेहतर है ते ये जी निक्की निक्की मामूली एहतियाती तदाबीर हो ना इन्हां नाल हम गर्मियों का मौसम ना छड़ो साफ सफाई नाल गुजार सकां बल्कि इस मौसम ते लुत्फअंदोज भी हो सकां। यो मौसम अपना आप में बड़ो रंग बिरंगो मौसम है भावें इसमें धूप डाढ़ी होवे मगर साफ सफाई के नाल इस मौसम ना इंजॉय किया जा सके इस ते लुत्फ उठाया जा सके। ते दीन मुहम्मदी ने भी सफाई ना आदमी को निस्फ ईमान करार दितो है इसे गलू अपना कर की आंड गमांड की ते गली कूचा की ते नाले जड़ा रा रस्ता है उनकी साफ सफाई रखनू भी मारो बुनियादी फर्ज बने क्यों जे इन जगह ते बीमारी फुटी ते हम सफाई नाल बीमारियां का राह जेना ही भी बंद कर सकां। ते अगे गलबात को सिलसिले जारी रखूंगा कदे वक्त ने इजाजत दी ते इसरा करा के बैत थारी खिदमत में पेश कर दें बैत ही सदाकत अली की आवाज़ में इसराइल असर साहब बोली है वो कलाम।

तो सजनों कुछ वेलो मारा को बचा लो वो अगे आओ कुछ और एक बैत सुन लिया। आवाज़ है चमन लाल गुरदासपुरी की।

तेरे बाज हूँ बहुत बेहाल ही रे तेरी सक हमेश रे दिल अंदर आके तक जाइए मेरो हाल ही रे।

इसके नाल ही मारो गोजरी प्रोग्राम को वेलो मुकरना आवे है। गोजरी प्रोग्राम का प्रोड्यूसर है वसीम फारूक वानी, अपना मेजबान डॉक्टर अल्ताफ निजामी ना। अगली मुलाकात थोड़ी दे इजाजत, चला जी फिर, रब रखो।

हमारी आवाज़ अब तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है। मीडियम वेव 268.1 मीटर और FM2 103.5 MHz पर। पाँच बजकर 50 मिनट हो रहे हैं। अब आइए गोजरी में खबरें सुनते हैं। गोजरी खबरों के फौरन बाद आप आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में खबरें सुनेंगे। पहले खबरें गोजरी में।

सामीन आदाब, 5:50 हो गए। यो आकाशवाणी को श्रीनगर स्टेशन है, गोजरी खबरनामा नाल हूं रिहास अहमद बिजाड़। पहला इस वक्त तक की खास खबरें पर एक नजर।

0: दिल्ली का मालवीय नगर में आग की खौफनाक वारदात में 21 आदमी मारे गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने डोडा और किश्तवाड़ जिला का सैलाब से मुतासर इलाका में सड़कों और पानी सप्लाई की फौरी बहाली पर दिया जोर। आलमी बाइसिकल डे का मौका पर रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स श्रीनगर से साइक्लोथन को इनेकाद। वजीर आला ने खेडना बादो देवन वास्ते स्पोर्ट्स कौंसिल की तारीफ। तय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 वास्ते नामजदगी तलब। और खबर की तफसील। दिल्ली का मालवीय नगर इलाका में आज सुबह आग की एक खौफनाक वारदात में 21 आदमी मारे गए और कई जख्मी हो गए। जनूबी दिल्ली का डीसीपी आनंद मित्तल ने कहो जे 8 फायर टेंडरों को इस्तेमाल करता पुलिस फायर सर्विसेज एहलकारों और एमरजेंसी में कम आने वाला दूजा मुतलकीन की अंथक मशक्कत नाल न सिर्फ आग पर काबू किया गया बल्कि 40 से ज्यादा लोगों ने रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचाया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर जबरदस्त दुख को इजहार किया है। वजीर आजम ने कौमी इमदादी फंड से मरनाणा का लवाहकीन मां 2 लाख रुपया की ग्रेशिया इमदाद को ऐलान किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू सूबा का सैलाब से मुतासरा डोडा और किश्तवाड़ जिला का डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत दी कि वे मुकम्मल चौकसी बरकरार रखें और बुनियादी सहूलियत की फौरी बहाली यकीनी बनाएं। उन्होंने लोगों का आराम वास्ते तैनात टीमों हाई अलर्ट पर रहन और सूरत हाल की मुसलसल निगरानी करने की ताकीद की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सड़क और पानी की सप्लाई लेना की फौरी बहाली यकीनी बनाने पर जोर देते हैं। मनोज सिन्हा ने कहा कि बुनियादी सहूलियत की बहाली मुकम्मल होता ही नुकसानात को अंदाजो लाउन को काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने खुडहर डोडा की पिंकी देवी जिसकी चड़क पेउन नाल जान चली गई का लवाहकीन नाल ताजियत को इजहार किया है। डिप्टी कमिश्नर ना मुतासरा खानदान ना फौरी इमदाद और हर मुमकिन ताउन देउन वास्ते कियो गयो है। आज वर्ल्ड बाइसिकल डे है। इस दिन का मनाने का मकसद बाइसिकल का इस्तेमाल ना ट्रांसपोर्ट का किफायती भरोसामंद और माहौल दोस्त जरिया नाल फरोग देन और सेहत बाइसिकलिंग और सेहत पर बाइसिकलिंग का मस्बत असरात ना उजागर करनो है। आज के दिन की मुनासबत ते मुल्क के नाल नाल जम्मू कश्मीर में भी कई साइकिल रैली हो रही है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स श्रीनगर में एक साइक्लोथन ना चंडी दस के रवाना किया जिसमें जिंदगी का मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों और तालिबे इल्मों ने शिरकत की। इस मौके पर वजीर आला ने आहिंदा जम्मू साइक्लोथन वरे मिस्किट जर्सी और तशहीरी मुहिम की शुरुआत की। वजीर आला ने खेड़ा में नौजवानों की हौसला अफजा शिरकत और दिलचस्पी लेने वास्ते कश्मीर स्पोर्ट्स कौंसिल की तारीफ की। इस मौके पर खेड का वजीर सतीश शर्मा वजीर आला का मशीर नासिर असलम वानी और दूजा कई अहम शख्सियात भी मौजूद था। साइकिल सवारा ने करीब 20 किलोमीटर की मसाफत तय की। श्रीनगर में आज कई लोगों ने जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर पार्टी का सदर जीएम शाहीन ने शमूलियत करने वालों को इस्तकबाल किया। नामा निगारा ना गल करता मौसूफ ने जम्मू कश्मीर की मौजूदा अवामी सरकार का कामकाज न तनकीद को निशानो बनाता कियो।
1: ये सरकार कोई काम इनसे नहीं हो रहा, कोई वादा इनका पूरा नहीं हुआ, लोगों की जो उम्मीदें थी वो लोगों से बहुत दूर हो गई। इन्होंने बिजली मीटर लगाने में काम किया, रोड्स की इतनी हालात खराब है, टूरिज्म इंडस्ट्री कोलैप्स पे पहला हमने देखा। गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन इससे बहुत अच्छी थी।
0: मरकज में एनडीए हुकूमत का 12 साल मुकम्मल हो गए और इस दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में आम लोगों की फलाह बहबूद वास्ते कई स्कीम शुरू की गई जिनमें आयुष्मान भारत योजना भी शामिल है। पूरा मुल्क में बड़ा पैमाना पर लोग इस स्कीम से फायदो लेकर तिब्बी निगदाश्त की म्यारी सहूलियात हासिल कर रहे हैं। इस बारे में मारूफ इकतसादी माहिर डॉक्टर एजाज अयूब ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर नाल गल करता कियो।
2: ये जो कैंसर वाली चीज है इसमें जो एक्सपेंडिचर है इट्स मोस्टली प्राइवेटाइज्ड सरकार की तरफ से। इसमें अक्रॉस इंडिया कहीं पे भी ऐसी इसमें लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है बहुत कॉस्टली आते हैं या बहुत सारी चीजें बहुत सारे प्रोसीजर कीमोथेरेपी हो गया रेडियोथेरेपी हो गया बहुत कॉस्टली है। तो आयुष्मान भारत में अगर वो इंक्लूड करेंगे तो इसके बजट पे अच्छा खासा डेंट आ सकता है। तो आई थिंक उसके लिए मे बी गवर्नमेंट हैज टू कम अप विद अ न्यू स्कीम डिजीज स्पेसिफिक।
0: ये खबर तम आकाशवाणी से नगर से सुन रहे हैं। खबर तम आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर और डीटीएच पर भी सुन सकें। हमारा खबरों का बुलेटिन और न्यूज रूम का प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट न्यूज लेटर नई मंजिलें और शहर शहर मंजर वर है। तम अपनो फीडबैक हमारी ईमेल एड्रेस रेडियो कश्मीर

0: sunnyfm@gmail.com पर तोड़ सकें। महकमा आला तालीम ने जम्मू कश्मीर का मुख्तलिफ कॉलेज में चार साल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में दाखिला का ताल्लुक थे कॉलेज की अलाटमेंट का पहला राउंड की फहरिस्त जारी की है जड़ी महकमा का दाखिला पोर्टल jkadmission.in पर दस्तियाब है। डायरेक्टर कॉलेज जम्मू कश्मीर प्रोफेसर शेख एजाज बशीर की तरफों जारी एक प्रेस बयान में मुतलका उम्मीदवाराना कहा गया है जे वे ऑनलाइन पोर्टल पर मुकर्रर की गई दाखिला फीस अदा करें। इस सिलसिला में मजीद तफसीलात महकमा की वेबसाइट पर देखी जा सकें। मरकजी सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 वास्ते नामजदगी तलब की है। नाम दर्ज कराउन की आखिरी तारीख 31 जुलाई मुकर्रर की गई है। ये एजाज बहादरी समाजी खिदमत माहौलियात खेड फन और सकाफत और साइंस और टेक्नोलॉजी जैसा शोबा में गैर मामूली सलाहियत को मुजाहिरो करने वाला बच्चा न देता जाए। कालसिरी और बच्चा की तरक्की की वजारत ने दस्यो जे किसी भी शहरी की तरफों नामजदगी सिर्फ कौमी एजाजात पोर्टल के जरिए वसूल की जाएंगी। कौमी पंचायत अवार्ड 2025 की तकरीब आज नई दिल्ली में मुनक्कद हो रही है। इस मौके पर पूरा मुल्क की 42 नुमाया पंचायतों ने इनकी शानदार कारकर्दगी का एतराफ में एजाजात नाल नवाजे जाएगो। अवार्ड हासिल करने वाली पंचायतों का सरबराहान अपनी बेहतरीन कारकर्दगी इख्तराई इकदाम और नुमाया कामयाबियों को खुलासो पेश करेगा ताकि दूजी पंचायत इनका तजुर्बात से फायदा ले सकें। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का चीफ प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर अमित शर्मा ने मर्दमशुमारी की अहमियत उजागर करता तमाम इंदराज कुनंदगान और सुपरवाइजराना हिदायत दी है जे वे मकान को शुमार करने में अपना फराइज निहायत पेशावारियत नाल अंजाम दें। आज जनूबी जिला कुलगाम को दौरों करके अफसर मौसूफ ने प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर जिला सेंसस ऑफिसर चार्ज ऑफिसर इंदराज कुनंदगान और सुपरवाइजर नाल एक मीटिंग के दौरान जिला में मर्दमशुमारी का अमल वास्ते की गई तैयारियों की तफसीली जायजा लियो। मारा नुमाइंदा खुर्शीद पडरू ने खबर दी है जे अमित शर्मा ने आवाम से अपील की जे मर्दमशुमारी का इंदराज कुनंदगान ना सही तफासील देकर अपनो भरपूर ताउन दें। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर नाल गल करता उन्होंने कहो
1: मैं ये बताना चाहूंगा कि जो मर्दमशुमारी में आपसे डेटा लिया जाता है आप निश्चिंत होकर बिल्कुल सटीक सही जानकारी दीजिए। गलत देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि जो सेंसस का डेटा है वो नॉन शेयरेबल डेटा है, नॉन एडमिसिबल डेटा है। सेक्शन 15 ऑफ सेंसस एक्ट 1948 क्लियरली टेल्स कि जो सेंसस का डेटा है ये सवाल ही नहीं है कि कहीं किसी इनकम टैक्स वालों को किसी एजेंसी वालों से शेयर किया जाएगा। तो इसके लिए जितने आपकी चार गाड़ी है तो चार ही बताओ, दो मत बताओ। घर में इंटरनेट कनेक्शन है तो जरूर बताओ, एलपीजी कनेक्शन है तो जरूर बताइए क्योंकि इसी से आने वाले जितने भी डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स हैं उसकी तामीर रखी जाती है। और हम विकसित भारत 2047 की बात करते हैं तो उसकी फाउंडेशन यही रखी जाएगी।
0: जम्मू कश्मीर ना नशा की लानत ते पाक करण वास्ते जम्मू कश्मीर नशा मुक्त अभियान के तहत मनुष्यात मुखालिफ सरगर्मी शद्दोमत नाल जारी है और बेदारी प्रोग्राम ते अलावा ड्रग स्मगलर ना कैफरे किरदार तक पहुंचाउन की कार्रवाई भी चल रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जाती तौर पर मुंशियात मुखालिफ कार्रवाइयों पर नजर रख रहे हैं। अभियान की शुरुआत का मौका पर उन्होंने मुंशियात के खिलाफ अपनों एक वाज़े पैगाम दितो।
2: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
0: समाजी सतह पर मुंशियात के खिलाफ दरकार इकदाम वर है। वादी का एक गुलकार एजाज अहमद खान ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर नाल गल करता कहो।
3: नौजवानों से बस यही गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर अपने फ्यूचर अपने घर बार को बचाना चाहते हो, अपने मोहल्ले की इज्जत की लाज रखना चाहते हो तो कम से कम इस लानत से दूर रहो क्योंकि ये जो बला है आदमी को लगता है कि मैं ड्रग पी रहा हूं या खा रहा हूं मगर दरअसल ये ड्रग उस आदमी को ही खा रहा है। इसको लगता है कि मैंने एक दाम किया, मैं परी हूं, मैं जनरल हूं, ये सब धोखा है। जवानी भी खत्म, पैसा भी खत्म और सबसे मसला है कि घर बार खत्म हो जाता है।
0: इसके नाल ही यो गोजरी खबरनामो मुख्यो खबरां को अगलो बुलेटिन 6:25 पर कश्मीरी में नशर वेगो। देव इजाजत, रब राखो।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा।

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रत बैनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथेंद्र बोस को सौंपा गया है। इसमें ऋतव्रत बैनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। उधर कोलकाता में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर विभाजन की साजिश रचने का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और उम्मीद है कि समझौता अगले कुछ सप्ताह में अंतिम रूप ले सकता है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मिक्स डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे की भारतीय जोड़ी ने भी प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: इशा आकाशवाणी श्रीनगर शब जित 5 मिनट सपद समय पेश गनी बान हिंद खतर अजुक प्रोग्राम।

0: आकाशवाणी श्रीनगर, अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे हैं।
1: प्रोग्राम शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट, अपनी तामीरात दिल से बनाइए।
0: शेरबीन के समयन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौजूदात हैं,

0: के एक होटल में आग लगने के नतीजे में 21 अफराद हलाक हो गए, जिनमें कई वस्त एशियाई और अफ्रीकी सयाह भी शामिल हैं। हादसे में मरने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता है, चूंकि कई अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। जख्मी अफराद की तादाद 40 से ज्यादा बताई जाती है, मजीद तफासील का इंतजार है। दरियासा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में एक होटल में पेश आने वाली खौफनाक आतिशजदगी पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि वो इस अलमनाक वाकये पर शदीद रंजीदा हैं और मुतासर खानदानों के साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ भी की। इधर वजीर आलम उमर अब्दुल्ला ने भी इस सानहे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए मुतासर कुंबों से यकजहती का इजहार किया है और कहा है कि यह हादसा इंतहाई दिलदोज है। समय नेशनल कॉन्फ्रेंस और इसकी हलीफ जमातों के अरकान कानून साजिया की मीटिंग इस वक्त श्रीनगर के मारूफ सियाती मकाम दाठीगाम में जारी है। वाजिर है कि मीटिंग आज दोपहर से कुछ वक्त पहले शुरू हुई। बताया जाता है कि मीटिंग पहले वजीर आलम उमर अब्दुल्ला की गुपकार रिहायशगाह और फिर चश्माशाही में होना थी, अलबत्ता आखिरी मौके पर इसकी वेन्यू में तब्दीली लाई गई और इसे दाठीगाम शिफ्ट किया गया। इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इमरान नायकू मौजूद हैं। इमरान, अभी जो मीटिंग हो रही है दाठीगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान कानून साजिया की और इनकी जो हलीफ जमाते हैं उनके अरकान कानून साजिया की, अभी तक मीटिंग जारी है। सुबह से लगभग दोपहर से पहले पहले मीटिंग शुरू हुई है और अभी तक मीटिंग जारी है। आप क्या समझते हैं कि इस तवील मीटिंग का क्या मुद्दा मकसद है? जैसा कि कयास आ रही है, हो रही थी कई तरह की, तो आप क्या समझते हैं कि अभी इस तवील मीटिंग में क्या कुछ तय पा रहा है?
1: जी बिल्कुल, वजीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक अहम और आला सतही इजलास आज दाठीगाम नेशनल पार्क में मुनक्किद हुआ, जिसमें पार्टी के अरकान असेंबली, अरकान पार्लियामेंट और हुकूमत की हिमायत करने वाले आजाद अरकान असेंबली ने शिरकत की। और इजलास इब्तदाई तौर पर वजीर आला की गुपकार रिहायशगाह पर सुबह 10 बजे मुनक्किद होना था और शुरका को जारी दावतनामे भी यही दावतनामे में भी यही मकाम दर्ज था। तमाम बाद में इजलास दाठीगाम मुंतकिल कर दिया गया और इजलास के शुरका को गाड़ियों के काफिले के जरिए दाठीगाम पहुंचाया गया, जहां तकरीबन 11:30 बजे इजलास का आगाज हुआ और 7 घंटे से जायद वक्त गुजरने के बावजूद अभी भी इजलास जारी है। और इस इजलास में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और रुकनी पार्लियामान मियां अल्ताफ और आदरुल्ला मेहदी शरीक नहीं हुए। तहम ये वाजिया नहीं हो सका कि इन्हें इजलास में मदद क्यों नहीं किया गया।
0: अच्छा, ये भी सुनने में आ गया आज दिन में कई मौके पर थोड़ी थोड़ी जो खबर आती रही इजलास के बारे में, ये सुनने में आ गया कि जो एमएलए कुलगाम है मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, वो और अभी कुछ वक्त पहले मालूम हुआ कि जो एमएलए गुलमर्ग हैं फारूक अहमद शाह, वो इस मीटिंग से पहले ही निकल गए, मीटिंग के खत्म होने से पहले ही वहां से रवाना हुए, वहां से निकल गए। उसकी कुछ वजूहत आप बता सकते हैं?
1: बिल्कुल, सीपीआईएम के और अपने असेंबली मोहम्मद यूसुफ तारिगामी तकरीबन 3 घंटे इजलास में शरीक रहने के बाद यहां से रवाना हो गए। उन्होंने बाहर मौजूद मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करने से गुरेज किया। इसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकने असेंबली फारूक शाह भी तकरीबन 4 घंटे तक इजलास में शरीक रहने के बाद रवाना हुए और उन्होंने भी मीडिया से कोई बात नहीं की। अगर जी इजलास का बाजाबता एजेंडा पहले से जारी नहीं किया गया था तहम जराय का कहना है कि जम्मू कश्मीर के इंतजामी मामला, अवामी मसाइल और नेशनल कॉन्फ्रेंस के तंजीमी ढांचे को मजबूत बनाने के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया जा रहा है। और इजलास में काबीना में मुमकिन तोसी मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी, अरकान असेंबली के हलकों में दरपेश मसाइल और अवामी शिकायत पर भी गौर किया जा रहा है। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन के जारी तनाजा, तरक्याती अमूर और दीगर अहम सियासी मामला पर भी जैर बहस है।
0: तो अगर प्रोग्राम के दौरान आपके पास कोई और खबर आई, कोई और इतना मिली आपकी मीटिंग के बारे में, तो आप हमसे बात करेंगे। जी इमरान, अगर प्रोग्राम के दौरान कोई और खबर आपको मिली मीटिंग के बारे में, तो आप हमसे बात करेंगे।
1: ये यहाँ पे इस वक्त हरियाणा के जो मुशीर है बाहर निकल चुके हैं और यहाँ मीडिया से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये क्या आराम से भाई, आराम जो एडवाइजर है बाहर निकल चुके हैं, इजलास इख्तिताम पजीर हुआ है और अब वो मीडिया से बात करेंगे। और नासिर साहब, ये बताएं कि इजलास का बुनियादी मकसद और एजेंडा क्या था?

0: इमरान, इनकी आवाज़ हम तक साफ नहीं आ रही है, आप इनसे बात करके हमसे दोबारा रابطہ कायम करें।
1: जी बिल्कुल,
0: शुक्रिया बहुत। ये थे हमारे नुमाइंदे इमरान नायकू, और मालूम हुआ कि अभी अभी तनवीर सादिक जो मुशीर हैं, और साथ ही साथ नासिर असलमानी जो कि वज़ीर आला के मुशीर हैं, वो मीटिंग से बाहर आ चुके हैं और अभी मीडिया नुमाइंदों से बात कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे वहां पे मौजूद हैं इमरान नायकू, और जो तफासील होंगी हमसे वो कुछ वक्त के बाद ही साझा करेंगे। दरअसल हुकूमत ने आज सुबह वाजे किया कि दाचीगाम नेशनल पार्क सयाहों के लिए मामूल के मुताबिक खुला है, और आज पार्क में दाखिले पर किसी किस्म की पाबंदी आयद नहीं की गई है। गौरतलब है कि आज वज़ीर आज़म अब्दुल्ला ने दाचीगाम में ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और इसकी हलीफ जमातों के अरकान कानून साजिया की खसूसी मीटिंग तलब की थी, जिसके बायस ये कयास आ रही की जा रही थी कि दाचीगाम को आम लोगों के लिए आज के दिन बंद कर दिया गया है। तहम हुकूमत ने इसकी वजाहत करते हुए कहा कि ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। इधर भारतीय जनता पार्टी के सदर बराए जम्मू कश्मीर सत शर्मा ने कहा है कि बीजेपी चाहती है कि उमर अब्दुल्ला की हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत मुकम्मल करे, ताहम यह हुकूमत अवामी तवक्कात पर खरा उतरने में नाकाम रही है। अवंतीपुरा में पार्टी की एक तकरीब के बाद ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बात करते हुए सत शर्मा ने कहा कि अगर उमर अब्दुल्ला हुकूमत चलाने में खुद को नाकाम महसूस करते हैं तो उन्हें फौरी तौर पर इक्तदार से दस्तबरदार होना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी रोज बरोज मजबूत हो रही है और पार्टी के लिए अवाम की हिमायत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सत शर्मा ने मजीद कहा कि अवाम ने जिन वादों और तवक्कात के साथ मौजूदा हुकूमत को मुंतखब किया था उनमें से बेशतर अभी तक पूरा नहीं किए गए हैं।
2: पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो कर रहे हैं। देखिए, वो पॉलिटिकल पार्टी जो ना अपनी उम्मीदों पर खरी उतरी है, उम्मीदें होती हैं लोगों को भी होती हैं, अपने अपने आप को भी होती हैं। वो पॉलिटिकल पार्टी जो ना अपनी उम्मीदों पर खरी उतरी है, ना लोगों की उम्मीदों पे ऊपर खरी उतरी है, और ना वो उतरना चाहती है। मैनिफेस्टो एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा मैनिफेस्टो उनके माध्यम से चुनाव के दिनों में आया था। बदकिस्मती है लोगों की, 1.5 लाख कम वोट लेने के बावजूद आज वो सत्ता में हैं, लेकिन सत्ता को चला नहीं पा रहे। 88% बजट इनके माध्यम से है, ऑफिसर्स की एलिवेशन इनके माध्यम से है, ऑफिसर्स की ट्रांसफ़र इनके माध्यम से है, KPS सभी ऑफिसर्स इनके माध्यम से जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन उसके बावजूद कमियां ढूंढने का प्रयत्न, जो मात्र 12%, एक छोटा सा बजट जो है हमारे ऑनरेबल एलजी साहब के पास है, उसमें भी वो कमियां ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। बैठक बुलाना उनका अपना निजी मामला है, और यहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है। हम लोग जानते हैं और हम लोग चाहते भी हैं कि वो सत्ता चलाएं, सत्ता नहीं चला पा रहे तो कहीं ना कहीं उनकी गलतियाँ। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि इनके दो बड़े नेता लड़ते थे, वो भी दिखाने के लिए थे। हाथी के दांत खाने की ओर होते हैं, दिखाने की ओर होते हैं, और ये आज की बैठक भी, और मान कर चलिए कि अगर सिर्फ इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री को बैठक बुलानी पड़ती है तो कहीं ना कहीं कमियां हैं इस पॉलिटिकल पार्टी में। और देखिए, जब आप सेवा करना चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं, तो ऐसे समय में कोई आड़े नहीं आता, लेकिन जब कोई काम ही नहीं करना चाहता। मैं तो चाहता हूं कि एक खास तौर पर वाइट पेपर इनके माध्यम से इशू होना चाहिए कि कितनी ट्रांसफर्स इनके माध्यम से हुई है, कितनी एलिवेशन इनके माध्यम से हुई है, और कितने डेवलपमेंट के कार्य इनके माध्यम से हुए हैं, और मैनिफेस्टो के ऊपर कितना खरा उतरे हैं। हमारे एलओपी साहब लगातार से, क्योंकि ये हमारे जो चुने हुए विधायक हैं उनका काम भी है अपना काम तो करना, लेकिन खास तौर पर जो काम नहीं कर रहे, सरकार काम नहीं कर रही, उनकी गलतियों को भी जो है उजागर करना है, और उजागर हम लोग करते हैं। सड़कों के ऊपर हमारे कार्यकर्ता करते हैं, हमारे महामंत्री, हमारे जिलाध्यक्ष टीम के सदस्य करते हैं, और असेंबली के बीच में हमारे विधायक हमारे LOP की क्यादत में जो है उनको उनकी गलतियों को जो है उजागर करते हैं।
0: बीजेपी के सदर बराए जम्मू कश्मीर सत शर्मा जो आज अवंतीपुरा में पार्टी की एक तकरीब में शिरकत कर रहे थे, इस मौके पर बीजेपी के सीनियर लीडर अशोक कौल, मोहम्मद अनवर खान, अल्ताफ

0: आखिर शौकत गयूर अंदराबी और दीगर पार्टी लीडरान भी मौजूद थे। आज वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने वर्ल्ड बाइसिकल डे के मौके पर रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स से साइक्लोथॉन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने जम्मू साइक्लोथॉन की तशहीरी मुहिम जम्मू कश्मीर साइक्लोथॉन की तशहीरी मुहिम जर्सी और मैस्कट का इफ्तिताह करते हुए कश्मीर साइक्लोथॉन को कौमी सतह के इवेंट के तौर पर मुनक्किद करने का ऐलान भी किया। मौसूफ ने नौजवानों में फिटनेस, सेहतमंद तर्ज जिंदगी और खेलों के फरोग पर जोर देते हुए कहा कि साइकिलिंग न सिर्फ जिस्मानी और जहनी सेहत के लिए मुफीद है बल्कि माहौल दोस्त सफरी जरिया भी है। आलमी साइकिल डे के सिलसिले में GMS यानी गर्ल्स मिडिल स्कूल हिब डांगरपुरा के तलबा ने भी साइकिल रैली में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और जिस्मानी तंदरुस्ती, सेहतमंद तर्ज जिंदगी और माहौलियाती तहफ्फुज़ का पैगाम आम किया। शुरका ने भरपूर जज्बे के साथ सेहतमंदी और पायदार माहौलियाती निज़ाम के पैगाम को आम किया। स्कूल इंतजामिया ने तलबा की फाल शिरकत को सराहते हुए उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में साइकिलिंग को अपनाने की तरगीब दी। जम्मू डिवीजन के दूरफ डोडा और किश्तवाड़ जिलों में कल सपहर और कल शाम बादल फटने और तेज आंधी के नतीजे में इमलाक को भारी पैमाने पर नुकसान पहुंचा, जबकि डोडा में एक खातून बादल फटने के वाकये में हलाक हुई। मौसूल इत्तिलात के मुताबिक दोनों अजला में बादल फटने की वजह से मकामी नदी नालों में तुगयानी आई और उनका पानी पास की सड़कों के ऊपर से गुजरता हुआ घरों के अंदर दाखिल हुआ। यही नहीं, दोनों जिलों में कल हुई ज्वालाबारी ने फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान ज़दा किया। बताया जाता है कि इस सूरत हाल के नतीजे में डोडा और किश्तवाड़ जिलों के मुतासर इलाकों में लोग इंतहाई खौफजदा हुए और सरकार से अब मुतालबा करते हैं कि नुकसान का तखमीना लगाकर उन्हें माकूल मुआवजा दिया जाए और सरदस्त बुनियादी ढांचे को होने वाले नुकसान पर तवज्जो देकर मुतालिक सहूलियात को बहाल किया जाए। इस वक्त हम सबसे पहले किश्तवाड़ से मुश्ताक देव की रिपोर्ट नश्र करते हैं।
1: जिला किश्तवाड़ के कुछ दूर दराज इलाकों में कल बादलों ने बरसना शुरू किया, जिससे किसानों में कुछ उम्मीदें जगने लग गई थी, लेकिन मुख्तसर से ही वक्त में इन बादलों ने कहीं कहीं शदीद चालाबारी शुरू हुई और फिर बारिशें शुरू हुई और कहीं कहीं बादल भी फटे और तबाही के मनाजिर सामने आने लगे, जो इन इलाकों के किसानों, जमींदारों और मालकान वादात के लिए तशवीश के बाइस बने। अगरची कलवाड़, वन मड़वा, दक्षण और छात्र के मुख्तसर से इलाकों में कदरे बारिश हुई और वो इस्तिफादा बख्श समझी जा रही है। जिला सदर मकाम के साथ साथ इलाका पाडर में भी बारिश न हुई। अलबत्ता पल, छिछा, सुरूर, सरथल, बंजवा, कुंदवाड़ा वगैरह में सियाह बादलों ने हैबत पांच दर्जे की चालाबारी और बारिश शुरू की, जिसमें किसानों, जमींदारों की उम्मीदें और मेहनत पर अमन पानी फेर दिया। नागजनी खिता के पोलर इलाके में पहाड़ों से आए आबी नाले की जद में तकरीबन 1000 कनाल अराजी माई फसलों के चटान नुमा पत्थरों और मलबे तले दब गई है, जिसे देखकर अराजी के मालकान हाथ मलबे लगे। यहाँ नजीर अहमद बकरवाल नामी शख्स जमीन और फसल को बर्बाद होते देखकर दारों कतार रोने लगा। अलावा अजी यार, गुजर बस्ती, गलहार और केरू में भी जमीनों और फसलों को काफी नुकसान हुआ है। इलाका सरथल के सयाती मकाम गहन के बालाई हिस्से में बादल फटने से नाले में तुगयानी सी आ गई, जमीनों का जिया हुआ, लेकिन किसी भी तरह का कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। और ऐसे ही मछीपाल नामी एक दूसरी जगह के पहाड़ी हिस्से में बादल फटा है, जिससे वहां से मिट्टी और पत्थर आमेज मलबा नीचे आने लगा। इधर सुरूर इलाके में मरकजी जामा मस्जिद को अब खतरा लाहक हो गया है कि अगर कभी बालाई हिस्से से आने वाले पानी का रुख इसकी तरफ बढ़ गया तो पानी सीधे मस्जिद के अंदर चला जा सकता है। मस्जिद की हिफाजत के लिए मुकामी सतह और जिला इंतजामिया की तरफ से हिफाजती एकदम उठाने की जरूरत है। यहाँ टटानी, प्यापुल, कुकरवास, बीजू, गढ़, लोनपोरा, होरा वगैरह में भी हजारों कनालों पर इस्तादा मकई, राजवांश के अलावा सब्जियों को इस बारिश ने बर्बाद करके रख दिया है और किसानों, जमींदारों के चेहरे मुरझाई से हो गए हैं। इन लोगों का जरिए माश यही फसलें और मेवा है, जिनकी फरोख्तगी से उनका कारोबारी जिंदगी चल जाता है। बेशतर देहात में पानी की नालियां भी टूट फूट गई है और कुछ बह भी गई है। वही वजह लोगों को पीने के पानी की अदम दस्तियाबी का भी सामना है। पहाड़ी इलाका बोंजवा में शदीद किस्म की चालाबारी से दरख्तों के असमार बहुत हद तक गिर भी गए हैं।
0: किश्तवाड़ से मुश्ताक देव की रिपोर्ट आपने सुनी और डोड़ा में पेश आई सूरत हाल पर नसीर खोड़ा की यह रिपोर्ट।
2: गुज़श्ता रात की तेज हवाओं, जालाबारी बारिशों व बादल फटने के नतीजे में जिला डोडा के मुख्तलिफ मकामात पर बड़े पैमाने पर नुकसानात की खबरें मौसूल हुई हैं। तफसीलात के मुताबिक खिताई चनाब के जिला डोडा में चार मकामात पर बादल फटने के वाकात पेश आए हैं, जिनकी वजह से

नदी नालों में जबरदस्त तुगयानी आई हुई है और पानी की सतह में बेहद इजाफा हुआ था और पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि मुख्तलिफ नदी नालों का ये पानी बहकर जिला की अंदरूनी राबता सड़कों पर आने से पसियां मिट्टी पत्थर और नदी का कटाव भी हुआ और अब ये अंदरूनी सड़कें गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए फिलहाल बंद पड़ी हैं। जिला डोडा के मुख्तलिफ मकाम जहाँ आसमानी बादल फटने की इत्तला मिली है इनमें ठाठरी कोड़ा कविलदार कासीगढ़ कलिहांड कहरा होंडा गुजरबस्ती मच्छीपाल शामिल है। कासीगढ़ कुटदाहर में गुजश्ता शाम बादल फटने से एक खातून की भी मौत वाका हुई है। बताया जाता है कि यह खातून शाम के वक्त अपने घर से बाहर निकली थी कि अचानक बारिशों व झालावारी के दौरान बादल फटने और औरत की मौत वाका हुई जिसकी शिनाख्त पिंकी देवी उम्र 25 साल जौजा रामकृष्ण साकना कुटदाहर के तौर हुई है। ठाठरी से इतला मिली है कि वहां शाम से कबल बादल फटने से ठाठरी के बालाई हिस्से से पानी आकर बाजार में फैल गया था और अपने साथ मट्टी मलबा और पत्थर साथ लाए

0: मौत वाका हुई जिसकी शिनाख्त पिंकी देवी उम्र 25 साल जौजा रामकृष्ण साकना उद्धार के तौर हुई है। ठाठी से इतला मिली है कि वहां शाम से कबल बादल फटने से ठाठी के बालाई हिस्से से पानी आकर बाजार में फैल गया था और अपने साथ मट्टी मलबा और पत्थर साथ लाए थे कि बस्ती के चंद राशि मकानों में सैलाबी रहरों का पानी भी दाखिल हुआ था और मदरसा जियाउल कुरान को भी जुजवी नुकसान पहुंचा है। गुंडो बलेस मचीपाल के लोगों ने शहरबीन को बताया कि बादल फटने के साथ ही इर्द गिर्द के नदी नालों में तुगानी आने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई थी। कहीं कहीं मकाम पर आबादी भी खिसक गई है। बताया जाता है कि गुज्जर तबका से वाबस्ता कुछ अफराद माल मवेशी को दूर दराज बालाई धारों पर ले जा रहे थे कि अचानक बादल फटने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई और सैलाबी रेलों में गफूर अहमद वालिद नूर मोहम्मद चौधरी साकना नागनी फिक्सू की तकरीबन 25 अदद भेड़ बकरियां सैलाब की नजर हुई हैं।
1: डोडा से नसीर अहमद खोड़ा की रिपोर्ट आपने सुनी। डोडा और किश्तवाड़ जिलों में इसके अलावा भी भारी नुकसान हुआ है इमलाक का, और जैसा कि आपने सुना कि डोडा में एक खातून की मौत भी हुई बादल फटने के वाकये में, और उम्मीद की जाती है कि सरकार नुकसान का तखमीना लगाकर मुतासरीन को माकूल मुआवजा बरवक्त अदा करेगी। फिलहाल शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा।
2: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
3: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
1: जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन, आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। प्रोग्राम के आगाज में हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस अरकान कानून सहजा की मीटिंग का तस्करा किया। मीटिंग अभी मुकम्मल हुई है, लगभग 7 घंटे तक मीटिंग जारी रही, 7 घंटे से ज्यादा वक्त के लिए मीटिंग जारी रही, और अभी हमारे नुमाइंदे इमरान नायकू ने खबर दी है कि मीटिंग में तय पाया है कि पार्लियामान के मानसून इजलास के पहले रोज नेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली में जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली के लिए एहतजाज करेगी। इधर अनंतनाग जिले के गांजीवाड़ा इलाके में कल तेज हवाओं के दौरान दरख्त गिरने के वाकये में जख्मी होने वाली खातून आज जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गई, जिसके बाद इस हादसे में जान बहक होने वालों की तादाद 2 हो गई है। वाजिर है कि ब्यारे आंगन शांगस से ताल्लुक रखने वाले मियां बीवी कल गांजीवाड़ा अनंतनाग में उस वक्त शदीद जख्मी हुए थे जब तेज आंधी के बायस एक दरख्त जड़ से उखड़कर उन पर आ गिरा था। इस वाकये में मोहम्मद रफी खान कल ही जख्मों की ताब न लाकर चल बसा, जबकि उनकी अहलिया मरीना जो जीएमसी अस्पताल अनंतनाग में जेर इलाज थी आज दम तोड़ गई। और अब एक रिपोर्ट के साथ कुलगाम से अकरमुल हसन।
4: लोगों ने सुन्नती इब्राहिमी अदा करते हुए बड़े पैमाने पर कुर्बानी की। तहम मुतजिद इलाकों में लोगों ने सफाई सुथराई का ख्याल न रखने के बायस गंदगी और बदबू फैल गई है। जिला के मुख्तलिफ देहात और कस्बों में कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें खाले और दीगर फजला अब भी कई मुकाम पर पड़ा हुआ है, जिससे न सिर्फ बदबू फैल रही है बल्कि माहौलियाती आलूदगी और बीमारियों के खदशात भी बढ़ गए हैं। इन इलाकों में खास तौर पर छमगुंड, मालवन, आरिगोतनू, पोलू, जंगलपुरा, बोजगाम, द्यूसर, केलम, गोंड टंकीपुरा, चौगाम, चुरट, खारगुंड, बिचरू, ब्राजू, जागीर और दीगर दर्जनों देहात काबिल जिक्र है। समाजी कारकुनान पर मुश्तमिल ग्रुप का कहना है कि कुर्बानी एक अजीम इबादत है, लेकिन इसके साथ सफाई का ख्याल रखना भी इस्लामी तालीमात का अहम हिस्सा है, और इस्लाम ने जिस्मानी पाकिजगी के साथ साथ आसपास साफ सफाई सुथराई पर मुकम्मल तौर अमल करने की तलकीन की है।
1: कुलगाम से अकरमुल हसन की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम का एक वफ्त फोरम

0: चेयरमैन मेराजुद्दीन जरगर की क्यादत में रुकने पार्लियामान चौधरी मोहम्मद रमजान से मुलाकात हुआ और उनकी दानिस्त में टीईटी मामले की निस्बत से सुप्रीम कोर्ट के हालिया हिदायत लाई। वफ ने रुकने पार्लियामान को अदालत के हालिया फैसले के बाद असातजा में पाई जाने वाली बेचैनी से आगाह किया और उनसे गुजारिश की कि वो जम्मू कश्मीर हुकूमत को इस बारे में लाजमी इकदाम करने की तलकीन करें। और प्रोग्राम के आखिर में यह खबर कि पीडीपी के जिले कोऑर्डिनेटर बारामुल्ला अल्ताफ अहमद मलिक ने आज रफियाबाद के मुंडजी इलाके का दौरा किया और वहां मकामी आबादी से मिले। अल्ताफ अहमद मलिक ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला से अपील की है कि मुंडजी और विज टॉप को कम अज कम मकामी सयाहों के लिए खोल दिया जाए ताकि इन मकाम की आबादी को रोजगार मिल सके। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हो चाहता है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
1: शहरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताबून कर रहे थे खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए।
2: आप बिजनेस की तरक्की को लेकर हैं फिक्रमंद? अरे रेडियो पे दे इश्तिहार और बढ़ाएं अपना कारोबार। अब फिक्र की क्या बात जब है कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का साथ। जी हाँ, अपने कारोबार की उड़ान को दीजिए एक नई पहचान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, फोन नंबर 9419000255।
3: मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियाँ बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग।
4: घर का AC हो या गीजर, वोल्टेज का हीरो सिर्फ एक BS वॉइस स्टेबलाइजर्स। पावर फ्लक्चुएशन सॉर्टेड, लॉन्ग लाइफ फॉर योर अप्लायंसेस गारंटीड। BS वॉइस, दैट्स बेस्ट सर्विस। कॉल नाउ 9419001960।
5: अरे ये सेवाराम की दुकान बंद क्यों है?
6: बंद नहीं, मिलावट करता था, किसी ग्राहक ने माल की जांच करवा दी।
7: जी हाँ, नए खाद्य कानून के तहत हर एक को अधिकार है मिलावटी खानपान वस्तुओं की लेबोरेटरी से टेस्ट करवाने का। पकड़े जाने पर मिलावटखोरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
8: याद रखें, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.fssai.gov.in पर।
9: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
10: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
11: अरे माँ देखो एक्सीडेंट, रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
12: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
11: नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट की PM राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आर है माँ, अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
12: पर बेटा, हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
11: माँ इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
12: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
11: माँ अब 7 रूल्स हैं, नो हरासमेंट, मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं, पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
12: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
11: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
12: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
11: वही तो माँ, PM राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें जिंदगी बचाएं।
9: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।

0: की फराहमी में दो अहम इकदाम किए हैं। श्री माता वैष्णो देवी अस्थाफन में श्रद्धालुओं के रश को देखते हुए रेलवे डिवीजन ने कटरा स्टेशन पर अपनी नौयत की पहली ऑटोमेटिक फूड एंड वाटर वेंडिंग मशीन नस्ब की है, जिसकी बदौलत अब मुसाफिरों को खाने पीने के लिए लंबी कतारों में रहने की जहमत नहीं करनी पड़ेगी। सीनियर डिवीजनल कमर्शियल मैनेजर जम्मू उचित सिंगल ने बताया कि ये मशीन दिन रात काम करेगी। इसी तरह से रेलवे के जम्मू डिवीजन ने ई ऑक्शन के जरिए रेलवे के असासों का स्मार्ट और शिफाफ इस्तेमाल यकीनी बनाया है। इस दौरान रेलवे ने मुसाफिरों की सहूलत के लिए अपना ऐप भी दस्तियाब रखा है।
1: अब सफर होगा और भी इजी और स्मार्ट। इंडियन रेलवेज लेकर आया है रेल वन ऐप, आपकी हर ट्रेन जर्नी के लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन। चाहे रिजर्व या अनरिजर्व टिकट्स बुक करने हो या प्लेटफॉर्म टिकट लेना हो, सब कुछ एक ऐप से पॉसिबल है। रेल वन ऐप इंस्टॉल करो और अपना ट्रेवल एक्सपीरियंस अपग्रेड करो।
0: रेलवे की जानिब से इस साल 5 जून को मनाए जाने वाले आलमी यौम माहौलियात की मुनासिबत से एक माह तवील मुहिम के चलते एक पेड़ माह के नाम पहल के तहत बड़े पैमाने पर शजरकारी का काम अंजाम दिया। इस सिलसिले में मुख्तलिफ रेलवे स्टेशनों और रेल कॉलोनियों में आज मेवादार, सायादार और अद्वियात की अहमियत के हामिल दरख्तों के बूटे बोए गए। वादी में आज मारूफ सूफी शायर वाज महमूद का 110वां योम विसाल अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में उनके आस्थान आलिया वाका शोरगिरी मोहल्ला नवाब बाजार में अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। इस मौके पर वाज महमूद की इल्मी, रूहानी और शायराना खिदमात को याद किया गया। जिला सतह पर स्टार्टअप और कारखानदारी के माहौल को फरोग देने की समत में एक अहम इकदाम के तौर पर स्टार्टअप इंडिया और DPIIT की तरफ से जम्मू कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट और जिला इंतजामिया कुपवाड़ा के बाहमी इश्तराक से कुपवाड़ा में 6 जून को तेजस वर्कशॉप का अहतमाम है। कंट्रोलर लीगल मेट्रोलॉजी जम्मू कश्मीर शिव कुमार गुप्ता ने आज जनूबी कश्मीर और वस्ती कश्मीर के डिप्टी कंट्रोलरों के हमरा जिला ऑफिस कम्पलेक्स अनंतनाग में जेर तामीर लीगल मेट्रोलॉजी लेबॉरेटरी का मुआयना किया। उन्होंने तामीराती एजेंसी को इसकी बरवक तकमील यकीनी बनाने की हिदायत देते हुए कहा कि यह प्रोजेक्ट जनूबी कश्मीर के ताजरों और सनतकारों के लिए नहायत सूदमंद साबित होगा। एम्बुलेंस गाड़ी को तिब्बी निगहदाश्त के शोबे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल होती है। वक्त की जरूरत है कि जम्मू कश्मीर में एम्बुलेंस कॉरिडोर कायम किए जाएं, नीज एम्बुलेंस गाड़ियों को हर तरह की जदीद तिब्बी सहूलियात से लैस किया जाए। इस ताल्लुक से कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर श्रीनगर के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट और सीनियर कंसल्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नज़ीर अहमद खान ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
2: जरूरी है एक तो लोगों में बेदारी होना चाहिए, जब भी एम्बुलेंस चले जहां से भी चले, चाहे वो साइन बजाए या ना बजाए, उसको जगह देनी चाहिए, क्योंकि कभी खाली एम्बुलेंस भी जाती है, उसको पेशेंट कहीं से कहीं लाना होता है, तो कभी लोग सोचते हैं कि शायद इसमें इमरजेंसी नहीं है, नहीं जगह देते हैं, तो उसके लिए एक बहुत जरूरी इम्पोर्टेंट चीज है जो लोगों के ध्यान में आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर इसको गवर्नमेंट भी एक ऐसी पॉलिसी बनाए, जब रोड बनते हैं तो उस रोड में एक लाइन होनी चाहिए, जिस तरह से एक VIP मूवमेंट होती है, उनको जगह हर जगह देते हैं, इसी तरह से एक एम्बुलेंस को भी हर जगह देना चाहिए, कहीं ट्रैफिक जामों में फंसना नहीं चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, मुझे लग रहा है लोगों को भी इस पे ध्यान देना चाहिए और गवर्नमेंट को भी इस पे ध्यान देना चाहिए, ताकि एम्बुलेंस की मूवमेंट बहुत इजी बनाई जाए।
0: महकमा आला तालीम ने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ कॉलेजों में 4 साल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्रामों में दाखिले के ताल्लुक से कॉलेजों के अलॉटमेंट के पहले राउंड की फहरिस्त जारी की है, जो महकमे के दाखिला पोर्टल JKAdmissions.in पर दस्तियाब है। डायरेक्टर कॉलेजेस जम्मू कश्मीर प्रोफेसर शेख एजाज बशीर की जानिब से जारी एक प्रेस बयान में मुतल्लिका उम्मीदवारों से कहा गया है कि वो ऑनलाइन पोर्टल पर मुकर्रर की गई दाखिला फीस अदा करें। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात महकमे की वेबसाइट पर देखी जा सकती हैं। मरकजी सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामजदगियां तलब की हैं। नामजदगियों के एंद्राज की आखिरी तारीख 31 जुलाई मुकर्रर की गई है। यह एजाज बहादुरी, सामाजिक खिदमत, माहौलियात, खेल, फन और सकाफत और साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे शोबों में गैर मामूली सलाहियतों का मुजाहरा करने वाले बच्चों को दिया जाता है। खवातीन व अतफाल की तरक्की की वजारत ने बताया कि किसी भी शहरी की जानिब से नामजदगियां सिर्फ कौमी एजाजात पोर्टल के जरिए वसूल की जाएंगी। कौमी पंचायत अवार्ड 2025 की तकरीब आज नई दिल्ली में मुनाकिद हो रही है। इस मौके पर मुल्क भर की 42 नुमाया पंचायतों को उनकी शानदार कारकर्दगी के एतराफ में एजाजात से नवाजा जाएगा। अवार्ड हासिल करने वाली पंचायतों के सरबराहान अपनी बेहतरीन कारकर्दगी, इख्तराई इकदाम और नुमाया कामयाबियों का खुलासा पेश करेंगे, ताकि दीगर पंचायतें उनके तजुर्बात से इस्तेफादा कर सकें। मौसम। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29.2 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 14.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

ने यहाँ के कुदरती वसाइल को लूटने और अवाम की उमंगों को दबाने का एक तवील सिलसिला शुरू कर रखा है। ये बात भी गौरतलब है कि चंद कबायली लोगों ने 1948 में पाकिस्तान का साथ देकर जम्मू कश्मीर से इस हिस्से को अलग करने की जो हरकत की थी, उसका खामियाजा यहाँ के अवाम तब से भुगत रहे हैं और वो कबायली लोग भी आज अपने किए पर पछता रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने उन लोगों को मजहब के नाम पर गुमराह करके इस दलदल में फंसाया था। जम्मू कश्मीर के इस हिस्से पर नाजायज कब्जा करके पाकिस्तान ने वहां के लोगों का जीना हराम कर रखा है और उस इलाके की तरक्याती जरूरियात को कभी पूरा नहीं किया गया, जिस वजह से वहां के लोग गरीबी और पसमानदगी का शिकार हैं। पाकिस्तान ने सिर्फ एक काम किया, वो ये कि उसे उस खित्ते में कुदरती वसाइल का लूट खसूट करने के अलावा मकबूजा कश्मीर का एक हिस्सा चीन को सौंप दिया। गुज़श्ता 76 बरस से मकबूजा कश्मीर के लोग पाकिस्तानी फौज का जुल्म सितम बर्दाश्त कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि मकबूजा कश्मीर के कई अवामी लीडर इस जुल्म सितम से तंग आकर दीगर मुल्कों से पनाह लिए हुए हैं और वहां से भी मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान ने इस सारे इलाके को तरक्की से महरूम रखकर उन्हें अपने ताबिया रखने की हमेशा कोशिश की, मगर वहां के अवाम पाकिस्तानी जुल्म सितम के खिलाफ सरापा एहतजाज है और किसी भी सूरत में पाकिस्तान के चुंगल से आज़ादी हासिल करने का तहिया कर चुके हैं। यही वजह है कि पूरे मकबूजा कश्मीर के लोग आए रोज पाकिस्तानी नाजायज कब्जे के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर के लोग गुर्बत और पसमानदगी की हालत में जिंदगी बसर तो कर रहे हैं, मगर दिल में यही तमन्ना है कि कब वो इस जुल्म सितम से आजाद होकर दोबारा भारत का हिस्सा बने। पाकिस्तान की इस इलाके की तई सर्द मोहरी की वजह से खित्ते में बेरोजगारी अरूज पर है और नौजवानों में काफी गम गुस्सा पाया जा रहा है। कुदरती खूबसूरती से मालामाल ये हिस्सा सयाहती एतबार से अगरचे काफी अहमियत का हामिल है, मगर पाकिस्तान ने कभी भी यहाँ की सयाहत को फरोग देने के लिए ठोस इकदाम नहीं किए, जिस वजह से इस बार के जम्मू कश्मीर के मुकाबले में मकबूजा कश्मीर का इलाका काफी पीछे रह गया और इस तरफ के लोग तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन है। ये देखकर मकबूजा कश्मीर के लोग उस दिन को कोस रहे हैं जिस दिन पाकिस्तान ने उस इलाके पर नाजायज कब्जा करके उन्हें यरगमाल बना लिया था, नाम निहाद आजादी के नाम पर उस इलाके के लोगों को जुल्म सितम का शिकार बनाया गया और उनके कुदरती वसाइल के लूट खसूट का न थमने वाला सिलसिला शुरू किया गया। मकबूजा कश्मीर के लोगों की तरफ से शुरू की गई तहरीक आजादी जोर पकड़ती जा रही है और आए रोज इलाके में एहतजाजी धरने और रैलियां निकाली जा रही है। वहां के लोग पाकिस्तान को साफ अल्फाज में कह रहे हैं कि वो फौरी तौर इलाके से निकल जाए और उन्हें जम्मू कश्मीर के इस तरफ के अवाम के साथ दोबारा मिलने के लिए राह हमवार की जाए ताकि वो भी तरक्की और खुशहाली की राह पर चल सकें। पाकिस्तानी हुकाम इन लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए हर जालिमाना हरबा अपना रहे हैं, मगर मकबूजा कश्मीर के लोगों की जुर्रत के सामने उनका हर हरबा नाकाम साबित हो रहा है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में हाल ही में हुई हक हुक्मरान और हक मिल्कियत कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी हुकूमत और फौज को वार्निंग दी गई कि वो मकबूजा कश्मीर से निकल जाए और यहाँ के लोगों को आज़ाद छोड़ दें। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सरदार अमान कश्मीरी ने पाकिस्तानी मजालिम का जिक्र करते हुए कहा कि वो दिन अब दूर नहीं जब मकबूजा कश्मीर फिर एक बार भारत का हिस्सा बनेगा और वहाँ के लोग भी तरक्की और खुशहाली से हमकिनार होंगे। सामी पाकिस्तान के हवाले से प्रोग्राम में और भी बात करेंगे, पहले आप और हम सुनते हैं ये खूबसूरत सा फिल्मी नगमा।

वादी की आवाज़ आप समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। समिन, पाकिस्तान के मौर्ज वजूद में आने के बाद से ही वो मुल्क गरीबी और पसमानदगी की दलदल में फंसता रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उस मुल्क के हुक्मरानों ने रोज अव्वल से ही भारत दुश्मनी की पॉलिसी इख्तियार करके अपने तमाम वसाइल भारत को कमजोर करने पर सर्व किए। इतना ही नहीं बल्कि वहां की फौजी आमरियत ने भी उस मुल्क को अंदर से खोखला कर दिया और कभी भी जमहूरियत परवान नहीं चढ़ सकी, जिस वजह से मुल्क की आवाम गरीबी और पसमानदगी से निकल नहीं पाए और हुक्मरान तबका अमीर से अमीर होता गया, जबकि गरीब लोग कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हुए। कभी भी किसी सरकार ने वहां के आवाम की हालत जिंदगी को बेहतर करने के लिए संजीदा कोशिश नहीं की। सरकारें और वहां की फौज दिन रात भारत के खिलाफ नाकाम साजिशें करने में मसरूफ रहे और लोगों को मजहब के नाम पर गुमराह करते रहे। हमेशा नौजवान पोत को ये बाविर कराने की कोशिश की गई कि भारत उनका दुश्मन है। इसके लिए स्कूली किताबों में भी भारत दुश्मनी भर दी गई। हालांकि भारत ने कभी भी पाकिस्तान के साथ कोई दुश्मनी नहीं की और इस मौकिफ पर रहा कि

वादी की आवाज़ आप समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से और बात हो रही है पाकिस्तान की। समिन, पाकिस्तान में सहाफ़ी बरादरी को अपने फ़राइज अंजाम देने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ की सरकार और फौज ने इजहार राय और आज़ादी सहाफ़त पर कई कदगन लगा रखे हैं और सहाफ़ी बरादरी को सच लिखने या बोलने से रोका जा रहा है। गुज़श्ता बरसों के दौरान पाकिस्तान में कई सहाफ़ियों को अगवा करके या तो जेलों में बंद किया गया या उन्हें सिरे से ही गायब कर दिया गया। इतना ही नहीं बल्कि सच्चाई मंजर आम पर लाने के लिए कई सहाफ़ियों पर मुकदमे दर्ज किए गए और उन्हें जेलों में डालकर अजियतें दी जा रही हैं। सहाफ़ियों से तशद्दुद करने के इल्ज़ाम खासकर फौज और ISI पर लगते आए हैं और कई मौकों पर यह साबित भी हुआ कि पाकिस्तानी ISI सहाफ़ियों को सच्चाई मंजर आम पर लाने पर तशद्दुद का शिकार बनाता रहा है। ख़वातीन सहाफ़ी भी इस ज़ुल्म सितम से बच नहीं पा रहे हैं। गुज़श्ता साल के दौरान पाकिस्तान में ख़वातीन सहाफ़ियों की तादाद सिर्फ 4% रह गई है। ये इसलिए हुआ है कि उन्हें भी सच बोलने और आज़ादाना तौर पर खबरें रिपोर्ट करने से रोका जा रहा है। फ्रीडम नेटवर्क के सालाना रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान में सहाफ़त के लिए साजगार माहौल नहीं है और सहाफ़ी बरादरी को आज़ादाना सहाफ़त करने की इजाज़त नहीं है, जिस वजह से सच्चाई अवाम तक नहीं पहुंच पा रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाने के लिए फौज और ISI मुख्तलिफ हरबे अपना रहे हैं। साल 2016 में प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट लागू किए जाने के बाद से इसी एक्ट को आज़ाद सहाफ़ियों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। न सिर्फ सहाफ़ी बल्कि वकला, समाजी कारकुन और सियासी तज़िया कारों को भी इस एक्ट की आड़ में हरासा किया जा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अक्टूबर 2025 तक 30 सहाफ़ियों के खिलाफ इस एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई है, जबकि फेक न्यूज़ के बहाने 187 सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसमें यह भी बताया गया है कि 129 सहाफ़ियों पर तशद्दुद करने के वाकयात रोनुमा हुए हैं और तशद्दुद की इन कार्रवाइयों में 60% मामलों में सरकारी एजेंसियां मुलविस पाई गई हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा सहाफ़ियों के लिए सबसे खतरनाक इलाके माने गए हैं और तशद्दुद के ज्यादातर मामले इन्हीं दो इलाकों में पेश आए हैं। ताहम बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में सहाफ़ियों पर हुए तशद्दुद के मामलात को मंजर आम पर नहीं लाया जा रहा है। YouTube चैनलों पर फेक न्यूज़ चलाने के इल्ज़ामात लगाकर कई ऐसी चैनलों को बंद किया गया है। रिपोर्ट में प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट का असर नौ जायजा लेने का मुतालबा किया गया है ताकि पाकिस्तान में सहाफ़ी बरादरी को खबरें अवाम तक पहुँचाने में आज़ादी के साथ काम करने का मौका मिले। दूसरी ओर बिगड़ती इक्तिसादी सूरतेहाल की वजह से पाकिस्तानी लोगों को गुनागुन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी ने यहाँ के लोगों का जीना हराम कर रखा है। महंगाई की वजह से मुतवस्ता तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग दो वक्त की रोटी का खर्चा पूरा नहीं कर सकते, जिसका बराह रास्त असर न सिर्फ इन लोगों की सेहत पर पड़ रहा है बल्कि उनके बच्चों की तालीम भी मुतासर हो रही है। जब लोग खाने के लिए तरस रहे हों तो वो किस तरह बच्चों का स्कूल फीस अदा कर सकते हैं। महंगाई ने जिंदगी के हर शोबे पर अपने मनफी असरात मुरतब किए हैं और वहाँ की सरकार बढ़ती महंगाई पर काबू पाने में बुरी तरह से नाकाम हो रही है क्योंकि गैर मुल्की कर्जों के बोझ तले पाकिस्तान दबा हुआ है और ये मुल्क कर्जों पर लगने वाले सूद को चुकाने के लिए मजीद कर्जे लेने पर मजबूर हो रहा है, जिस वजह से मुल्क की इक्तिसादी हालत बेहतर होने के बजाय बिगड़ती ही जा रही है। रोजगार के वसाइल की कमी की वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है और नौजवानों को अपना मुस्तकबिल तारीख दिखाई दे रहा है। हर साल मुल्क के लाखों नौजवान रोजगार की तलाश में मुख्तलिफ ममालिक का रुख कर रहे हैं। साल 2024 के दौरान 7 लाख नौजवानों ने रोजगार की तलाश में मुल्क से हिजरत

पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शाम नश्र होता है।

0: इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है, तो दीजिए अपने मेजबान को इजाजत। खुदा हाफिज।
1: बाजी की आवाज।

0: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: कशिर छे नुंदरिश्त लल्दिन हिं जबान, बचे हिशने वो कशिर बोलून तो समझून। कशिर छे सठा मीर जबान,

0: हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है। मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM2 103.5 MHz पर। आठ बजकर 30 मिनट हुए हैं।
1: डिस्ट्रिक्ट न्यूज लेटर मुख्तलिफ अजला में जारी तरक्याती मनसूबों से मुतलिक जामिया रिपोर्ट्स पर मबनी आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर की पेशकश। डिस्ट्रिक्ट न्यूज लेटर।
2: जिलानामा का ताजा शुमारा लेकर आपका मेजबान शेख तजम्मुल हाजिर है। आज के जिलानामा में हम शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा जिले में हॉर्टिकल्चर शोबे से मुतलिक बात करेंगे। समीन गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान वादी के कुर्बो जवार में बागबानी शोबे में कई तरह की तब्दीलियां वकू पजीर हुई हैं, जिनकी बदौलत ये शोबा पहले से ज्यादा आमदन बख्श और रोजगार के मौके पैदा करने वाला शोबा बन गया है। एक तरफ से हुकूमत की HADP और दीगर फलाही स्कीमें इस अहम शोबे को जदीद खतूत पर उस्तवार करने में अहम किरदार अदा कर रही हैं और दूसरी जानिब हाई डेंसिटी सेब की मुख्तलिफ अकसाम लागत कम और फसल ज्यादा के नजरिए के तहत बाग मालिकान की आमदनी में इजाफा कर रही हैं। शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा जिले में सेब के हाई डेंसिटी बागात कितनी तादाद में लगाए गए हैं और महकमे हॉर्टिकल्चर इस सिलसिले में क्या किरदार अदा कर रहा है, यही सवाल जब हमारे नुमाइंदे आदिल इस्माइल ने चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर बांडीपोरा पवन कुमार के सामने रखा तो उन्होंने जवाब में कहा,
3: बांडीपुरा में इतनी रिसेप्शन नहीं मिल रही है, मतलब इतना वो लोग आगे नहीं आ रहे हैं हाइड्रोनेस्टी में। थोड़ा वो हिचकिचाते हैं कि हम पुराने बागों को काट के नए बाग हाइड्रोनेस्टी का लगाएंगे, पता नहीं फायदा होगा नुकसान होगा, ये चलेगा नहीं चलेगा, थोड़ा सा ये उसको रिस्क के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे हम अपनी एक्सटेंशन एजेंसी जो हमारे HDO साहिबान है और जो फील्ड में काम कर रहे हैं, या वक्त वक्त पे हम अवेयरनेस कैंप्स भी कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि इसमें ट्रेडिशनल में 10

0: से 12 मेट्रिक टन जो आपको प्रोडक्शन मिल रही है उसके मुकाबले में हाई डेंसिटी में 50 से लेके 70 मेट्रिक टन तक पर हेक्टर की जो प्रोडक्शन है वो आपको मिलेगी, जिसमें डबल नहीं हम 5 से 7 टाइम की बात कर रहे हैं हाई डेंसिटी में जब कन्वर्ट हो जाएगा। तो चूंकि हमारा जो बांडीपुर का सुंबल और हाजिन एरिया है इसमें धीरे धीरे लोग अभी इसमें हाई डेंसिटी में आ रहे हैं, वहाँ एरिया भी अच्छा है और वो चूंकि कश्मीर से थोड़ा श्रीनगर से के नजदीक लगता है तो वहाँ लोग थोड़ा इसमें मोटिवेट हो गए हैं। लेकिन जो एरिन बांडीपुरा अलूसा के जो जोन है हमारे यहाँ अभी तक थोड़ा हमें दिक्कत आ रही है, और जो हमारा गुरेज एरिया है वहाँ पे थोड़ी मौसम की अभी प्रॉब्लम चल ही रही है, वहाँ हम थोड़ा रिसर्च कर रहे हैं और केवी के साथ भी बात चीज चल रही है कि वहाँ एप्पल के बजाय हम जो लद्दाखी एप्रिकॉट है या जो रेजिलेंट वैरायटीज एप्रिकॉट की है हम वहाँ एप्रिकॉट और वॉलनट पे काम करेंगे, और बांडीपुरा के जो पहाड़ी एरिया है यहाँ भी हम वॉलनट पे ज्यादा काम करेंगे बनिस्बत एप्पल के, क्योंकि एप्पल में एक तो पानी का सोर्स परमानेंट सोर्स चाहिए और इसमें लेबर भी ज्यादा लगती है और जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा है, तो यहाँ लोग बैंक के पास जाना नहीं चाहते, लोन लेना नहीं चाहते। हालांकि HADP में और जेके सिप में ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो 80% तक का लोन है वो बैंक हमें देंगे और वो 3 साल तक उसकी रीपेमेंट EMI हमें नहीं भरनी है, जब हमारी जो फसल है वो प्रोडक्शन में आ जाएगी तब हमें जाके जो है वो बैंक का लोन रीपे करना है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग थोड़ा इसमें हिचकिचा रहे हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं इसमें, और आपके माध्यम से भी हम बता दें कि लोग अगर ये मेरी बात सुन रहे हो तो वो मेहरबानी हमारे SDO साहिबान से वहाँ रब्ता करें और जो हमारे फील्ड एजेंसी है उनसे रब्ता करें, तो आने वाले साल में हम इसमें एक मिशन के तौर पर काम करेंगे और बहुत सारे हम कैंप्स भी लगाएंगे, अवेयरनेस चलाएंगे, और बांडीपुरा में जितना पेंडिंग हमारा टारगेट बचा हुआ है हम अगले 2 साल में इंशाल्लाह इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे।
1: सर, अगर कोई नया बाग लगवाना चाहता है तो वो किस तरह से आपके महकमे से वो दरख्त हासिल कर सकता है, इसके लिए क्या करना चाहिए
0: उसे? ये आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। पहले तो क्या होता था कि एप्लीकेशन ऐसे आके सिंपल एप्लीकेशन डालते थे, उसमें जो भी रिक्वायरमेंट होती थी वो फिजिकल चलता था। आजकल हमें ऑनलाइन जो भी करना है, HADP का स्कीम में अगर आपने कोई काम करना है तो HADP पोर्टल पे जाना है, जेके सिप स्कीम के तहत अगर आपने कोई कंपोनेंट में काम करना है तो जेके सिप पे जाना है, और सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में अगर आपने कोई भी फैसिलिटी अवेल करनी है, चाहे वो बोरवेल है, वाटर हार्वेस्टिंग टैंक है, कोई मशीनरी है या वर्मी कंपोस्ट यूनिट है, आपको जन सुगम पे अप्लाई करना है, वो भी एक पोर्टल। फिर आपने बस उसमें जो जो चीजें मांगी जाएंगी वहां पे आपका जमीन के कुछ कागजात लगेंगे, आपका आधार कार्ड और दूसरे KYC जो आपकी बैंक की कॉपी होती है, हॉर्टिकल्चर पासबुक होती है, वो आपने चढ़ा अपलोड कर देने, उसके बाद आपका काम खत्म है। उसके बाद वो HDO से सीधा हमारे पास आएगा, हम उसको DLC एक होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी जिसके डिप्टी कमिश्नर हेड होते हैं, वहाँ वो जाती है ऑनलाइन ही, वहाँ पे अप्रूव होके फिर वो हम किसान को बता देते हैं आपका केस अप्रूव हो चुका है, आपको बस काम करना है। ये इसमें सबसे जो फायदा है इस ऑनलाइन में, इसमें ये है कि हमें कोई सिफारिश किसी की नहीं सुनी जाएगी, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे काम चलेगा। जो लोग पहले आएंगे, मान लो पहले 10 लोग हमारे पास वाटर हार्वेस्टिंग टैंक के लिए किसी ने अप्लाई किया है, 1 से लेके 5 तक इस साल हो गए, तो अगले साल 6 से लेके 10 वाले हम कैरी करेंगे, जो अगले साल आएंगे वो 11, 12, 13 नंबर लगेगा उसका, तो हम उसको डिबेट नहीं कर सकते हैं। अगर कोई नहीं लगाना चाहता है या किसी वजह से वो काम नहीं करने थे, उससे लिख के लेंगे हम विलिंगनेस कि आप काम नहीं करना चाहते हो, तभी हम दूसरे आदमी को देंगे। तो इसमें सिफारिश वाला या कोई ऊपर से प्रेशर आ जाएगा कि इस बंदे का काम करो, तो ऐसा नहीं है। हमारे लिए अमीर गरीब छोटा बड़ा सब एक जैसे हैं, जो लाइन में जिस रेटम में आएगा उसी रेटम में हम उसको सब्सिडी करेंगे।
1: हमारा एक सरहदी इलाका गुरेज है जी, वहाँ पे बागवानी के शोबे को फरोग देने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं?
0: जी, मैं वहाँ पे 2 बार टूर करके आया, क्योंकि वहाँ 6 से 7 महीने बर्फ ही रहती है
1: जी।
0: वहाँ हमने अपनी हमारी एक नर्सरी है इजमरक में, वहाँ हमने डेमोंस्ट्रेशन के तौर पे वॉलनट और एप्रिकॉट और हाई डेंसिटी एप्पल के 3 छोटे-छोटे प्रोजेक्ट लगाए हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि वहाँ सरवाइव करते हैं कि नहीं करते हैं। तो एप्पल जो है हमारा हाई डेंसिटी का, वहाँ फल तो आ रहा है लेकिन उसको उतना जो टेम्परेचर मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है, उसका उतना अच्छा कलर नहीं आ रहा है, तो लहजा हम ये सोच रहे हैं कि वहाँ पे एप्रिकॉट जो है वो बहुत अच्छी बनती है, एप्रिकॉट पे ही काम करें।

0: ये एप्रिकॉट भी दो तरह की, एक तो बल्ब वाली होगी और दूसरी जो है वो ऑयल निकालने वाली होगी, जिसको हम जंगली टाइप की समझ लो, और वहाँ की जो लोकल जो हमारे द्रास एरिया में या करगिल एरिया में लगती है वही हम सोच रहे हैं। और वहाँ के जो ऑनरेबल एमएलए साहब हैं उनका भी ये कहना है कि लद्दाखी जो एप्रिकॉट है क्योंकि हमारा और उनका एक जैसा इन्वायरमेंट है, क्लाइमेट है, तो वो ली जाए। दिक्कत हमें सिर्फ ये आ रही है कि लद्दाख की जो एप्रिकॉट है उसका प्लांट मटेरियल हम डायरेक्ट ला नहीं सकते हैं, उसमें क्वारंटीन है, उसमें कुछ एक बीमारी है जो हम यहाँ नहीं ला सकते कि कोई बीमारी फैल नहीं जाए दूसरी क्रॉप्स में। तो लहजा हम उसके अलावा इथ और जो स्क्वास्ट कश्मीर है इनके साथ हम रब्ता कायम कर रहे हैं, और एक कृषि विज्ञान केंद्र वहाँ पे कायम हुआ है गुरेज में, उनके साथ भी बात कर रहे हैं कि कौन सी वैरायटी यहाँ पे एप्रिकॉट की लगाई जाए, ताकि हम एप्रिकॉट को और वॉलनट को वहाँ पे प्रमोट करेंगे। एप्पल के बनिस्बत वो ज्यादा कामयाब है। हम पहले एप्रिकॉट विलेज और एक वॉलनट विलेज बनाने का वहाँ के जो प्रोजेक्ट बनाया हमने, तो एमएलए साहब से भी बातचीत हो गई है, वो डाबर में और पुलेल में कुछ उन्होंने हमें जगह बताई है, वो अगले साल हम इसको टेकअप करेंगे और विद द कंसल्टेशन कास्ट और केवीके के साथ हम काम करेंगे।
1: आखिर पर हम आपसे जानना चाहेंगे लोगों के लिए क्या पैगाम रहेगा आपका, ताकि वो इनकी मुझसे ज्यादा से ज्यादा इस्तेफादा कर सके।
0: मैं अपने किसान भाइयों से, ग्रोअर्स से यही गुजारिश करता हूँ कि महकमा आपके लिए बिल्कुल ताबेदार है, हम यहाँ आपकी सेवा के लिए बैठे हैं, आप आइए हमारे साथ मिलके काम करें। और हॉर्टिकल्चर में बांडीपुरा को हम थोड़ा ऊपर के स्तर पर ले जाएंगे। किसान भाई अगर इनिशिएटिव लेते हैं तो हम तो पहले ही तैयार हैं, हमारे तरफ से जो भी उनको सहायता चाहिए, जो भी तावन चाहिए, हम उनके लिए तैयार हैं।
2: समीन, कुछ साल कबल तक हाई डेंसिटी सेब के पौधे हमारे बाग मालिकान को यूरोपीय ममालिक से दरामद करना पड़ते थे। इसमें नुकसान ये था कि एक तो हमारे काश्तकारों को काफी उर्से तक इंतजार करना पड़ता था, और दूसरा तवील उर्से तक क्वारंटीन और कोल्ड स्टोरेज में रहने के नतीजे में इन पौधों में मोर्टेलिटी रेट काफी ज्यादा रहती थी। बीरूनी ममालिक से प्लांट मटेरियल दरामद करने का सिलसिला अगरचे अब भी जारी है, ताहम अब हौसला अफजा बात यह है कि अब मकामी तौर पर भी जरई यूनिवर्सिटी और महकमे हार्टिकल्चर के जेर निगरानी वादी के तोलो अर्ज में सैकड़ों नर्सरीज कायम हैं, और हमारे अक्सर बेशतर काश्तकारों को इन्हीं नर्सरियों से प्लांट मटीरियल फराहम किया जाता है। हमारे नुमाइंदे आदिल इस्माइल ने हाई डेंसिटी प्लांट मटीरियल हासिल करने वाले काश्तकारों से बात की तो उन्होंने अपने तासुरात यूं बयान किए।
3: मोहम्मद शफी परे, रोजा सुम्बल वंगीपोरा, हॉर्टिकल्चर जोन HDO सुम्बल डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा। अस बूज अवेयरनेस कैंप कर सिपस मुतलिक यलाकस मवेयरनेस गई तौर पोर ऑनलाइन हाई डेंसिटी बाग खतर जेके सिपस नाम कनाल गई पेंशन अहम जरिए नाम कनाल प्लांटेशन गई फेबरवरी जतव प्रोजेक्ट कास्ट टोटल 14 लाख रुपये बनो नवन कनाल एज पर् जिस रुपये पर् कनाल इस मे डिपार्टमेंट तरफ 50% सब्सिडी तर गो 9 लाख रुपये आज डिपार्टमेंट सब्सिडी ये मे 50% सब्सिडी तर तो
4: 50% क्योंकि पे हॉर्टिकल्चर वालों स्कीम क्या क्या मोन जेके सिप CIP मैं सब्सिडी तो बेस पे रूट स्टाक नर्सरी बनाना पत् कर् स्टाक नर्सरी गई जून सुम्बल अच्छ हॉर्टिकल्चर अफसर सजाद सब HDO तेज बड़ शुक्र गुजार तेम हाउ पूर गाइडेंस क्या क्या कर कौन कर् जमीन तैयार कर्स एप्लाई बोर कागज वागज तुम दिपत और रूट स्टाक पता है सब्सिडी 30,50 अस गो रूट 8 लाख 30,50 है सब्सिडी कुछ वन ब्या दुम GST गलब इस जून मज ग तिक्रिवन बेस 3 लाख रुपये टोटल नी सब्सिडी 6.5 लाख अस लग पानी रुपये लग 2.5 लाख वह बड़ शुक्र गुजार हॉर्टिकल्चर वाल वक्त वक्त और अस गाइडेंस कर अत क्या कर दवा क्या छकुन तमें मजीद बाकी स्कीम ये सत्या شٹ دِوان پیکج شٹ دِوان حظ.

0: Borbel ce devan, borbel tu osas bekit bagus gaus petras tem tu kur borbel tim sos bar stakti abuj amujbus stakta tim subsidies bu shes bar shukr gozar hardi kalsi.
1: इसके साथ ही जिलनामा का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर हुआ। निगरान आला तारिक राथर, तरतीब व तहजीब अशफाक अहमद शाह और कौश की कश्यप, रिकॉर्डिंग व एडिटिंग नूरुलैन इशरत, तहरीर शेख तजम्मुल, पेशकश रीजनल न्यूज यूनिट आकाशवाणी श्रीनगर। अब समाप्त कर रहे थे हमारी शोबे खबर का तैयार करदा प्रोग्राम जिलानामा। आज का जिलानामा बांडीपुरा जिले से मुतल्लिक था।

0: वादी कश्मीर की खूबसूरत फिजाओं में एक नई सुबह, एक नई ताजगी पयामे सुबह।
1: आकाशवाणी श्रीनगर पेश कर रहा है एक जामिया लाइव शो पयामे सुबह,
0: जहां होंगी सेहत, साइंस और जिंदगी से जुड़ी मुफीद मालूमात
1: और साथ ही खेल, सकाफत और अवामी मसाइल पर बामाने गुफ्तगु। पयामे सुब
2: यारो वन बाजियारो वन।
0: हर रोज सुबह 7:10 से 11:30 तक सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी श्रीनगर से।
1: मीडियम वेव 268.81 और FM 103.5 MHz पर। पयामे सुब
3: सुनो सजना,
1: पयामे सुब।
4: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं, मीडियम वेव 268.81 और FM 103.5 MHz पर। 8:45 हो रहे हैं, थोड़ी ही देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी खबरों का बुलेटिन समाप्त करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली NCR क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति मिली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता DK शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एक मुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं

0: जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन दिस सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
1: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कॉन्ट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया।
1: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा।
2: उड़ीसा में कोस्टल हाईवे जो स्टेट की बहुत लंबे समय से एक डिमांड रही है, बिकॉज कोस्टल एरियाज का बार बार साइक्लोन से इम्पैक्ट होना, कोस्टल एक्टिविटीज जो है फिशिंग हो, धान की खेती हो, धान की खेती हो, कई तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, और साथ ही साथ जो टूरिज्म और श्रद्धा के बड़े केंद्र हैं जैसे पुरी हो गया, चिलिका हो गया, इन सब की कनेक्टिविटी अलोंग द कोस्ट कैसे हो, ये एक लंबे टाइम से उड़ीसा की डिमांड रही है। तो इस डिमांड को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में अप्रूव किया।
1: मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बैनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बाकी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। एक रिपोर्ट।
2: ऋतव्रत बनर्जी पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद थे और बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन मिल गया है। यह संख्या दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आवश्यक 2/3 बहुमत के आंकड़ों से अधिक है। ममता बनर्जी गुट ने इससे पहले शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष नेता नामित किया था। इससे पहले पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के लिए जमा किए गए हस्ताक्षरों से जुड़े विवाद में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साह को निष्कासित कर दिया था। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज नबन्ना में सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा की शुरुआत की। इसके अंतर्गत 28 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 3,000 रुपए भेजे गए। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पंजीकरण कराने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। 25 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा शपथ ग्रहण के बाद एक्स साइट में कहा कि इस बदलते टेक्नोलॉजी के युग में कर्नाटक नए आइडियाज के साथ अपने विकास पथ में सबसे आगे बढ़े। लोकभवन से विधानसौध पहुंचने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी, डॉक्टर बीआर अंबेडकर, जगत ज्योति बसवन्ना और अन्य महान पुरुषों की पुतली पर पुष्प नमन किया। उसके बाद उन्होंने विधानसौध के नॉर्थ गेट पर झुककर नमस्कार किया। अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में वह कुछ नए समाज कल्याण कार्यक्रमों की घोषणा करने की संभावना है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिव कुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। दिल्ली

0: मालवीय नगर के एक होटल में आज सुबह आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
1: दिल्ली पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में आग लगने की घटना में गैर इरादतन हत्या के आरोप में FIR दर्ज किया है। इस हादसे में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई, 26 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। दिल्ली नगर निगम ने भी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधू ने कहा है कि कल से जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस उपायुक्तों और नगर निगम के उपायुक्तों की संयुक्त नेतृत्व में एक महीने तक चलने वाला प्रवर्तन और रोकथाम अभियान शुरू किया जाए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बनकर उभरा है। श्री यादव ने बताया कि 2025 तक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में देश ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार के कदमों की।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
3: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है, जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको हो रही है।
2: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है, जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
4: लगभग 1 साल ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
2: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिन तेज वर्षा हो सकती है।

0: भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और अगले कुछ सप्ताह में समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। इसमें एक भारतीय की मौत हो गई है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंग यांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंग फांग और यांग पो ह्युआन को पराजित किया। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पंजाब और उत्तर प्रदेश में भारत और कम्बोडिया से संचालित मानव तस्करी गिरोह मामले में तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने बताया कि इस गिरोह के मानव तस्करी साइबर धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है। निदेशालय ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत जांच शुरू की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
1: बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 304 अंकों की गिरावट से 74,346 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 78 अंक कम होकर 23,406 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 44 पैसे कमजोर होकर 95.70 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति दी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माही में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ईशा आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव 77.8 मीटर तक एफएम 2 73.5 मेगाहर्ट्ज़ पेट रात संज 9 बजे सामिन वलियो किया کشر غزل بوزو آغاز مز بوزو کلام اسد میر پیش کرن کیلاش مہرہ

0: सीपी और एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर की मुश्तरका कयादत में कल से एक माह के दौरान आग लगने की रोकथाम पर अमल आवरी से मुतालिक मुआयने ऑडिट्स और अदम तामील की सूरत में सीलिंग की कार्रवाई करने के लिए होटल्स गेस्ट हाउसों नर्सिंग होम्स कोचिंग सेंटर्स और दीगर मराकज के मुआयने की मुहिम शुरू की जाएगी। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
1: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू नायब सदर सीपी राधा कृष्णन वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आग लगने के सानहे में हुए जानी नुकसान पर रंजो अफसोस का इजहार किया है। छत्तीसगढ़ में शहरी बल्दियाती इदारों के इंतखाबात के

0: रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
1: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधा कृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आग लगने के सानहे में हुए जानी नुकसान पर रंजो अफसोस का इजहार किया है। छत्तीसगढ़ में शहरी बल्दियाती इदारों के इंतखाबात के वोटों की गिनती कल होगी। तीन महलों में हुए पंचायती इंतखाबात के नतीजे का ऐलान भी कल ही होगा। शहरी बल्दियाती इदारों के आम और जिमनी इंतखाबात और तीन महलों में हुए पंचायती इंतखाबात पिछले पीर को हुए थे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की गुज़िश्ता 12 साल के दौरान दूर अंदेश क़यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के तहत भारत में खातिर ख्वाह तब्दीली आई है। इस मुद्दत के दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और जवानों के फलाह बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी न्यूज गुज़िश्ता 12 बरसों के दौरान अहम शोबों में हुकूमत की तरफ से किए गए इकदाम के बारे में एक खुसूसी फीचर पेश कर रहा है। आज हम भारतीय मुतवस्सित तबके को बाइख्तियार बनाने के लिए हुकूमत की तरफ से किए गए इकदाम के बारे में बात करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: गुज़िश्ता 12 बरसों में हुकूमत ने वसी इस्लाहात के जरिए भारतीय मुतवस्सित तबके को बाइख्तियार बनाया है। टैक्स निजाम को सहल बनाया, बैंक कार्य को मुस्तहकम बनाया और पेंशन निजाम ने इस तबके के माली तहफ्फुज को मजीद बेहतर बनाया है। नए टैक्स निजाम के तहत 12 लाख रुपए सालाना की आमदनी वाले अफराद को टैक्स से मुस्तस्ना रखा गया है। इसके अलावा जीएसटी में इस्लाहात के जरिए रोजमर्रा की अशिया की कीमतों में कमी आई है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी स्कीम के तहत करोड़ों अफराद की जिंदगी में नुमाया तब्दीली आई है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने कहा कि इस स्कीम से किराए पर रहने वाले अफराद को नुमाया राहत मिली है।
3: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं।
2: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 हेल्थ कार्ड जारी किए गए जिससे आम लोगों को हिफ्जाने सेहत के शोबे में तहफ्फुज फराहम किया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना स्कीम के तहत जन औषधि केंद्रों पर मयारी जेनरिक दवाएं 50-80% कम कीमतों पर दस्तयाब हैं। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए बिहार के ब्रह्मदेव ने कहा कि इन केंद्रों पर आम दुकानों के मुकाबले दवाएं निहायत ही किफायती कीमतों पर दस्तयाब हैं।
4: लगभग एक साल से यहाँ से दवाई ले रहा हूँ, तो सस्ती दवाई मिलती है। डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
2: 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी आम आदमी को बाख्तियार बनाने के अमल में एक मजबूत अवामिल साबित हुई है। इस स्कीम के तहत अहल मुस्तफिदीन को अब तक 40 लाख करोड़ रुपए के कर्जे तकसीम किए जा चुके हैं। जैसे जैसे आमदनी में इजाफा हो रहा है और मौके वसी हो रहे हैं, भारतीय मुतवस्सित तबका मुल्क की तरक्की, उमंग और खुशहाल मुस्तकबिल में फाल रोल अदा कर रहा है। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शबाना बेगम।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क के वजीर आजम के तौर पर लगातार तीसरी बार ओहदा संभालने पर मेटे फ्रेडरिक्सन को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि भारत और डेनमार्क के दरमियान बाहमी एतमाद, मुश्तरका अकदार और पायदार मुस्तकबिल के मुश्तरका अज़्म पर मबनी शराकत दारी है। वजीर आजम ने कहा कि वो भारत डेनमार्क ग्रीन कलीदी शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने के लिए जनाब फ्रेडरिक्सन के साथ करीबी तौर पर मिलकर काम करने के मुंतजर हैं। लाओस के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा थोंग सावन फोम विहाने ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मीटिंग के दौरान सदर जमहूरिया ने कहा कि दोनों ममालिक के दहरीना सकाफती ताल्लुकात हैं जो बुद्ध मत के मुश्तरका विरसे और रामायण से जाहिर होते हैं। उन्होंने कहा कि सिफारती ताल्लुकात के क्याम के 70वीं सालगिरह का जश्न भारत लाओस दोतरफा ताल्लुकात में एक अहम संगे मील है। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेलसी एलियोना रॉड्रिग्स कोम्स भारत के 5 रोजा दौरे के लिए नई दिल्ली पहुंच गई हैं। उमूर खारजा, इक्तिसादियात और खजाना के वजरा और दीगर हुकाम पर मुश्तमिल एक वफ्द भी उनके हमरा भारत तशरीफ लाया है। दौरे के दौरान मोहतरमा रॉड्रिग्स वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ दोतरफा तबादले ख्याल करेंगी। इस तबादले ख्याल में भारत वेनेजुएला ताल्लुकात के वसी तर पहलुओं का जायजा और तवानाई के तहफ्फुज, तजारत व सरमायाकारी, दवासाजी, हिफ्जान सेहत, نقل و حمل اور قابل تجدید توانائی کے شعبوں میں مزید تعاون کے لیے

0: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, कौन और कहां से बात कर रहे हैं?
0: मैं शबीर अहमद खान, सदरबाग नुन्नर गांधरबल से अर्ज कर रहा हूं। दूसरी बार आपसे बात हो रही है।
1: शबीर साहब, कैसे हैं आप?
0: बस आप लोगों की दुआ होनी चाहिए
1: जी। कैसी गुजरी आपकी ईद?
0: बिल्कुल अच्छी गुजरी। अल्लाह हर एक की ईद ऐसी गुजरे जैसी हम लोगों की गुजरी है।
1: चलें, बहुत अच्छी बात है, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। तो आज कौन सी गजल सुनेंगे आप?
0: मुझे जो गजल सुननी है वो पंकज उदास की आवाज में है
1: जी।
0: एक तरफ है नेक अदा, एक तरफ उनका घर।
1: बिल्कुल, आप तक जरूर पहुंचाएंगे ये गजल। आपके कोई साथी जो ये गजल सुनना चाहेंगे आपके साथ?
0: पहले तो मेरा एक बेस्ट फ्रेंड जो कारपेंटर काम करता है, उसका कारपेंटरी का काम इतना फेमस है कि बहुत सारे लोग उसको अपनाते हैं। तनवीर कारपेंटर उसका नाम है
1: जी। जी
0: तो वो भी मेरे साथ सुनेगा। और तो मेरे घर के फैमिली है, पहले तो दीदी आप सुनोगी,
1: बिल्कुल,
0: उसके बाद मोमिन शबीर, आरजू शबीर, आबरू शबीर, जुबैदा बानो, रफीका बानो, अतीका बानो, मेरे दो भाई है मुश्ताक अहमद खान, मोहम्मद अमीन खान, मेरी बहन हसीना, मेरे जीजू है अब्दुल गनी, और जाहिद मुश्ताक है, शबनम गनी है दीदी, और सारे जितने भी मेरे सुनने वाले हैं जो मुझे सुनेंगे वो भी मेरे साथ है, मेरे पूरे गांव के लोग।
1: जी शबीर, तो आप क्या काम करते हैं?
0: दीदी मैं R&B में सर्विस करता हूँ।
1: तो आप हमारा ये प्रोग्राम सुनते हैं, आपको पसंद है, और आज के जमाने में जो हमारी यंग जनरेशन है वो देखा गया है कि गजलें ज्यादा पसंद नहीं करते, तो आप जरा हटके हैं जो गजलों को भी पसंद करते हैं।
0: दीदी गजल वो चीज है, गजल वो आवाज है, वो दर्द है जो इंसान की रियलिटी को बयान करती है।
1: बिल्कुल, बहुत बजा फरमाया आपने, आप तक ये आपकी पसंदीदा गजल जरूर पहुंचाएंगे। आप सुनते रहिए हमें, शुक्रिया कॉल करने के लिए।
0: अस्सलाम वालेकुम।

0: ஹலோ, மஹ்ஃபிலே கஸல்.
1: அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.
0: வஅலைக்கும் அஸ்ஸலாம்.
1: ஹோரவன் திருவன் மார்பட் அப்துல் ஹமீத் சேலி அரஸ் கரன்.
0: அப்துல் ஹமீத் சப் தூ சுவஸ் ঠিকই?
1: அஹர ஜாப் ঠিক பிராஸ்.
0: கிதோஸ் கோ போர்டோ கியோத் கோ?
1: பலல அஸ்ல போர்டோ ঠিক குட்.
0: சலோ শুকুর খোদা আসকুম সরি গোয়া ঠিক পাইছি?
1: আসলে আসব সরি বুঝছি পুরো আমার প্রবদি গাড়ি কি মুসকু।
0: আব্দুল হামিদ সাহেব তুই কি আছো কারণ?
1: এই জব কা গভর্নমেন্ট সার্ভিস। জসি সাইমা হামিদ। কামিনা হামিদ। রাশিদ হামিদ। নদীম গুলজার। ইকরা গুলজার। ব্রিয়ান দামপুর বাজার রমজান। বিরু ওয়ারহান বাচ্চ আব্দুল খালিক ডার। মোহাম্মদ রমজান ডার। গোলাম মোহাম্মদ ডার তাহাজ।
0: عبدال حمید صاحب تہند سٹھا سٹھا شکریہ کال کرنے باپت تہ تام واتنو یہ غزل روزی بوزان سون پروگرام
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام

0: हेलो, महफिल गजल।
1: अस्सलाम वालेकुम दीदी।
0: वालेकुम अस्सलाम
1: दीदी, आप ठीक हो?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं?
1: बस शुक्र है अल्लाह का दीदी, तुम्हारा प्रोग्राम रोज सुनता है, बहुत अच्छा लगा।
0: क्या मैं जान सकती हूँ कि किन से बात हो रही है और कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: शाहुल सनावारी से, फारूक अमडार।
0: फारूक साहब, कैसी गुजरी आपकी ईद?
1: बस अच्छे तरीके से ईद गुजरी दीदी। आपने दीदी ईद मनाई?
0: बिल्कुल, बहुत ही उम्दा तरीके से हमने भी ईद मनाई।
1: हाँ दीदी, ईद के दिन वो बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि वो सब लोग अमीर नहीं है, कुछ लोग गरीब ही है। तकरीबन दीदी 70% जो लोग गरीब है उनको ख्याल रखना है।
0: बिल्कुल, हम सबकी यही कोशिश रहनी चाहिए कि हमारे आसपास जितने भी लोग जिन्हें हमारी ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, उनकी हम मदद करें। और इस ईद की खास बात यही है कि हम सब मिलजुल के ईद मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं और साथ में खुशियां बांटते हैं।
1: हाँ दीदी, सब लोग कहते हैं हम किसी को मदद करना है, लेकिन ज़बानी से सब बोलता है लेकिन दिल से कोई नहीं करता है।
0: बिल्कुल, हमारी यही कोशिश रहती है। अक्सर लोग कहते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे, फिर कई बार सोशल मीडिया पर उसको अपलोड कर लेते हैं और कई बार दिल भी दुखता है कि अगर आप मदद कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पर क्यों अपलोड कर रहे हैं। पर हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए, आपकी ये कोशिश रहनी चाहिए कि हम हमारे जितने भी आसपास के लोग हैं जिन्हें मदद की ज़रूरत है उन्हें आइडेंटिफाई करें और उनकी मदद करें और खुले दिल से मदद करें और जितनी भी हमारी खुशियाँ हैं उनके साथ बांटें। और अगर उनका कोई गम है तो वो भी हम उनके साथ बांटे, उनके गम में भी उनके साथ हम खड़े रहे।
1: हाँ दीदी, मैंने वो जिंदगी में कुछ लोग भी ऐसे देखा
0: जी
1: जो अपनी बीवी को नहीं बता सकते मैंने किसको क्या दिया, वही इंसान है।
0: जब हम एक हाथ से मदद करते हैं तो हमारे दूसरे हाथ को बिल्कुल पता नहीं होनी चाहिए कि हमने इसकी मदद की है। यही हमारा इस्लाम है, ये हमारा दीन है, यही हमारी जो है राह है, सीधी राह जिस पे हमें चलना है।
1: हाँ दीदी, यही तो इंसान है कि अगर किसी को देना पड़ेगा दूसरों को मत बताओ, क्या फायदा देने के लिए।
0: जी जी जी फारूक साहब, इस बात का हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो आज आपने कॉल लगाया है और आज आप कौन सी गजल सुनना चाहेंगे?
1: दीदी आज हमें सुनना है, मुझे ये गजल बहुत पसंद है, जवान ये गोरी बाकी सब संसार।
0: पंकज उदास जी की आवाज में गजल है।
1: जी दीदी,
0: आप तक जरूर पहुँचाएंगे। जी जी, नाम बताइए।
1: चंद्रगिर सोनावारी से मोहम्मद शाहबान भट्ट
0: जी,
1: और मोहम्मद शफी पारे सोनावारी इस पारे से, और संबल सोनावारी से साहिल अशरफ, मोहम्मद शफी ड्राइवर, मेरा भाई बशीर अहमद जावेद और फारूक अहमद मीर।
0: इन सब तक

0: तक और आप तक भी और हमारे सभी सुनने वालों तक ये गज़ल ज़रूर पहुंचाएंगे पंकज उदास जी की आवाज़ में। फारूक साहब, आपका कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: दीदी, जब भी तुम्हारा प्रोग्राम लगता है, तू तो नया आया है, हम तो बहुत बहुत अच्छा लगा।
0: हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब हमारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़ते हैं।
1: अल्लाह करे तुम्हारा प्रोग्राम दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करे।
0: आमीन। जब हमारे लिसनर्स हमारे साथ होंगे तो बिल्कुल वैसा ही होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल दीदी, हम लोग तुम्हारे साथ है। मैं तो तकरीबन 20 साल का लिसनर हूँ। जब वो डायरेक्टर बशीर आरिफ है ना,
0: जी जी,
1: तब से आज तक मैं कश्मीर तकरीबन 50 बार आते भी जाते भी है, मुझे सारा लोग जानती है।
0: जी फारूक साहब, हमारे जब लिसनर्स हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमें भी बहुत ही अच्छा लगता है और ये कारवां ऐसे ही चलता रहता है। 20 साल से आप हमारे लिसनर हैं और ऐसे ही हमारे साथ हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं, फोन कॉल्स के जरिए या यहाँ आते हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। आगे भी ये सिलसिला जारी रहे इसकी उम्मीद करेंगे। बहुत ही शुक्रिया कॉल करने के लिए।
1: हाँ दीदी, जब ताहिरा दीदी रिटायर हुए है, हुमैरा दीदी रिटायर हुए है, वजीर साहब रिटायर हुए है,
0: जी जी,
1: उसके बाद मोहम्मद अशरफ भी रिटायर हुए है। दीदी, मैं कब से रेडियो सुनता है बहुत अच्छे तरीके से, जब वो मरहूम मोहम्मद अशरफ राजा प्रोग्राम चलाते हैं 3 बजे से 4 बजे तक, अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे।
0: जी जी फारूक साहब, आपका अगली बार भी कॉल का इंतजार रहेगा, आप हमें जरूर कॉल करिएगा और आप तक आपकी फरमाइश जरूर पहुंचाएंगे। शुक्रिया कॉल करने के लिए।
1: अस्सलाम दीदी।
0: वालेकुम अस्सलाम।

0: वक्त की रफ्तार को भला कौन रोक पाया है। पता ही नहीं चला कि कब एक घंटा गुजर गया और हमारी इस हसीन महफिल को सिमटने का वक्त हो गया। जान दोस्तों, अगली मंगलवार हमें हमारी कॉलर्स की कॉल्स का इंतजार रहेगा हमारे फोन नंबर 2480364 पर। दीजिए हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज़। नासिर।
1: महफिले गजल,
2: गजलों का फरमाइशी फोन इन प्रोग्राम।
3: होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है।
2: महफिले गजल सजा करती है बुधवार रात 10 बजे से 11 बजे।
4: سمن بھی آپ سماعت کر رہے تھے اردو غزلوں کا فرمائشی فون ان پروگرام ہیلو محفل غزل۔ پروگرام پیش کر رہی تھیں ارم قریشی۔ یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔

यह आकाशवाणी श्रीनगर है। मीडियम वेव 268.81 मीटर के अलावा FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। शब के 11 बज रहे हैं। थोड़ी देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेज़ी खबरों का बुलेटिन समाप्त करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
2: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिए में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी

विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धरमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डी के शिव कुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में आवागमन वाहन पारितंत्र अब किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा। नई दिल्ली में हीरो मोटोकॉर्प की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल बाजार में उतारे जाने के अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य का वाहन पारितंत्र इलेक्ट्रिक वाहनों, जैव ईंधन, हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एकीकृत करेगा। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जीएसटी, रोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया गया है और रेरा जैसे सुरक्षित घर का सपना लोगों का पूरा हुआ है पीएम आवास योजना के अंतर्गत। तो ऐसे कई कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे आयुष्मान भारत की हम बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करें, उज्ज्वला योजना की बात करें, जनधन योजना की बात करें, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें, सामाजिक सुरक्षा की बात करें, पीएम स्वनिधि योजनाओं की बात करें, तो ऐसी कई योजनाएं हैं जो केवल मध्यम वर्ग को तो सहायक तो नहीं हो रही, लेकिन जो मध्यम वर्ग नहीं था उनको मध्यम वर्ग में लाने का जो काम किया,
1: जैसे भी शरद जी ने
0: बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि भारत में हम जैसे कहते थे कि गरीबी रेखा के नीचे इतने प्रतिशत लोग हैं, कितने लोगों को गरीबी रेखा से उठाकर मध्यम वर्ग में लाया गया, क्योंकि भारत में मध्यम वर्ग की आप 15-16 कैटेगरी बना सकते हैं, तो उन सब कैटेगरीज को लाभ हुआ है। और जिसकी जो पहचान है वो ये है कि आज लोगों की जेब में खर्च करने के लिए पैसा आ गया है।
1: आपने और शरद जी ने दोनों ने अभी जितनी एक जो सरकार की जितनी पहल थी इनिशिएटिव्स की उनकी बात की, और आप दोनों ने एक जो बात की उसी से बात आगे बढ़ाते हैं कि जो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग थे उनको, गरीबी रेखा से नीचे लोगों को जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से उठाकर ऊपर लेकर आए हैं, तो देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट विद मोर देन 25 करोड़ पीपल एग्जिटिंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एंड एंटरिंग द न्यू मिडिल क्लास। हाउ बिग एन अचीवमेंट would do you think that is of the government, of the Modi government, Sharad ji?
2: I think it's a huge achievement, because 25 crore may be a very easy number to speak, yes, but this number itself may be more than Anubha, the population of many of the countries around the world. Aur dekhiye hua kya ke poverty index ki jo definition badla gaya, you know, we've changed the definition, because ab poverty ko pehle kaise define karte the itne rupaye roz ka. I think Niti Aayog came out with a very new and a promising definition कि आपका अगर जीवन का स्तर सुधर रहा है, यू नो, ऑन न्यूट्रिशन, ऑन हेल्थ, आपके पास घर नहीं है, टुमारो यू गेट अ हाउस, यू डोंट हैव अ वाटर कनेक्शन, नाउ यू हैव अ वाटर कनेक्शन, लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट द टॉयलेट्स व्हिच इज बीन, यू नो, सैनिटेशन हैज बीन वेरी क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर्स हार्ट, यू नो, जंगल में और खेतों में जाके यू नो टॉयलेट का इस्तेमाल करना या वहां पर इधर उधर बैठ के, महिलाओं के लिए खासकर बहुत, सो आई थिंक नाउ देयर आर टॉयलेट्स एट, सो द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीड्स टू बी अंडरस्टूड अनुभव from the point of view that not that a person has a very huge bank balance, but he's able to afford and live a lifestyle which any other normal middle class lives. So I think that has been the paradigm shift in the way we look at poverty, because those people are financially fine, they may be earning whatever they earn, but today they have facilities which are probably being enjoyed by some of the people who lead a more prosperous life.
1: The facilities that are very basic facilities. Absolutely. Which is everybody's right and which should they should get.
2: No, but the thing is that me and you can call them basic, but for them it was a luxury at one point of time. And today they feel that these were basic amenities which I was lacking, and it is thanks to the government schemes like Pradhan Mantri Awas Yojana. You know, the whole sanitation program which has been done. You know, Arba, before you move forward, I would like to highlight that for me as an economic analyst, the biggest takeaway, because there's a long list. In fact, if we just named all the developmental and welfare schemes, I think the next half an hour may not be enough. So, biggest takeaway for me, because we are hardcore economic analyst, for me is the massive 100 lakh crore plus infrastructure spend. Because that is one, in economics we call it, Anubha, the trickle-down effect. That has impact हर वर्ग को समाज के उसने फायदा पहुंचाया, और मिडिल क्लास तो उसमें आती आती, क्योंकि इससे नौकरियां बनी हैं, इससे लोगों की इनकम। और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो टंडन साहब मेरी बात से अग्री करेंगे कि मुझसे जब लोग पूछते हैं, क्योंकि होता क्या जब आपकी जिंदगी में ये सब घटनाएं घटती रहती है वेलफेयर स्कीम, तो यू टेक इट इन योर स्टेड, आपको लगता है ठीक है ये तो होना ही था भाई, ये तो मेरा हक है वगैरह वगैरह, ऐसे ख्याल आते हैं। पर बहुत अच्छा तरीका इसको देखने का क्या है, विच आई एम श्योर द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी वुड लाइक टू ड्वेल अपॉन एंड डीप डाइव, कि आप 2014 में जब ये सरकार आई थी 12 साल पहले, आप कहां खड़े थे? शायद लोगों की मेमोरी इतनी अच्छी ना हो, इट्स वेरी हार्ड टू रिमेम्बर के व्हाट आई यूज्ड टू अर्न, व्हाट वाज माय नेटवर्थ इन 2014, और आज आप कहां खड़े हैं? तो अगर आप दोनों को कंपेयर, क्योंकि हम तो कैसे देखते हैं, बहुत आसान तरीका है, आई थिंक मिस्टर टंडन वुड अग्री, इन 2014 वी वर अ $2 trillion इकोनॉमी, सो इन 67 ईयर्स फ्रॉम जीरो वी रीच 2 trillion, एंड इन द लास्ट 12 ईयर्स वी रीच 4 trillion. तो अगर इकोनॉमी डबल हुई है, तो इकोनॉमी तो हमको और आपको मिलाकर ही बनती है ना, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय पीपल लाइक अस, सो आई थिंक दैट्स अ बेटर वे टू लुक एट इट, एंड दैट फॉर मी दैट इज द बिगेस्ट टेक अवे।
1: अशोक जी, मध्यम वर्ग की, जैसे कि भी शरद जी ने भी हमारे डिस्कशन की शुरुआत में कहा कि तीन सबसे बड़ी चिंताएं होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, और इन तीनों के लिए ही जरूरी है रोजगार और नौकरी। तो पिछले बीते 12 सालों में भारत सरकार ने जो तेजी से बढ़ती

0: युवा आबादी है देश की, उसके लिए नौकरी और खासकर स्वरोजगार के अवसरों को जो दिए हैं, उनको जो उसके लिए पहल शुरू की हैं, जो उसके लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, उन्हें आप कैसे देखते हैं? खासकर अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है या नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है या फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इन सब योजनाओं का आबादी को नौकरी रोजगार या स्वरोजगार दिलाने में कितना बड़ा योगदान है?
1: मैं आपकी बात पर आने से पहले स्वास्थ्य की बात करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि समाज में स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना रोटी कपड़ा और मकान है, और उस दिशा में जो आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के 22 करोड़ से अधिक नागरिकों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत 11 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए जैसे अभी बताया गया था, और आवास नल यानी पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ से अधिक किफायती घर बनाए गए हैं, आपने रोटी कपड़ा मकान की बात की, वहीं जल जीवन मिशन के माध्यम से करोड़ों ग्रामीण और अर्ध शहरी घरों तक सीधे जल से साफ पानी पहुंचाया गया है, और जैसे अभी बात हो रही थी अब हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं तो जीडीपी के दम पर, लेकिन इसमें एक राष्ट्र एक टैक्स यानी जीएसटी और ये जो इसमें जो सरलीकरण किया गया ये एक बड़ा ही ऐतिहासिक सुधार था जिसने हमारे देश के बिखरे हुए टैक्स ढांचे को खत्म कर पूरे भारत को एक बाजार बना दिया। मैं अगर स्टार्टअप की बात करना चाहूं तो हम देखते हैं कि इसके पीएलआई योजनाओं के सहयोग से भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है और जिससे इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में घरेलू जो इन्वेस्टमेंट है उसको बहुत बढ़ावा मिल रहा है। तो इस तरह से और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं।
0: शरद जी, मैं अपने अभी जैसे अशोक जी ने बात की स्वास्थ्य की पर मैं वापस आऊंगी, जो हम नौकरी की बात कर रहे थे उसमें उन्होंने और अशोक जी ने जो एक और बात करी स्टार्टअप जो इकोसिस्टम की, तो हम जब बात कर रहे थे कि जो सरकार की जो पहल थी जो विभिन्न योजनाएं हैं उनमें रोजगार मुहैया करवाने में, उनके लिए रोजगार क्रिएट करने में कितना बड़ा, और खासकर अगर हम स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के जो के लिए जो उसको इंकरेज करने के लिए सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं उससे मिडिल क्लास की जो एस्पिरेशंस हैं उसको कितना प्रोत्साहन मिला है?
2: बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है अनुभव। देखिए गवर्नमेंट यू नो एज एन एम्प्लॉयर सरकारी क्षेत्र में जितनी नौकरियां हैं अनुभव वो तो सरकार उतनी देगी। आप देखें प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है समय समय पर अपॉइंटमेंट लेटर्स प्रधानमंत्री जी खुद बांटते हैं।
0: बिल्कुल,
2: पर इसमें यह ध्यान रखना होगा दैट गवर्नमेंट कैन नॉट एम्प्लॉय एवरीबॉडी इन द कंट्री। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एन एनेबलिंग प्लेटफॉर्म वेयर इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। तो आपने स्टार्टअप का बात किया, आई वुड लाइक टू कमेंट ऑन दैट। टुडे वी हैव स्टार्टअप इंडिया, जब शुरू किया गया था मुझे याद है 2016 की ये बात है, and I think a lot of people said that startup India, you know, people have been doing businesses here for times immemorial. So what is new? Yes, there was something new because startup focused on innovation, startup focused on new ideas, and that is where the youth of the country or the youth intellect of the country got activated. A lot of youngsters, and today just on startup India there are 2 lakh plus registered startups, and you know you will not believe that the employment provided by these startups today is 2.3 million plus people who've been employed. And government has created a startup fund where, you know, because these startups look for funding and they've been looking at funding to private sources, these angel investors and so on. So here government became an angel. Right. And I think the whole centers, setting up of those places where these startups can get trained, I think that has done magic to this country. And today I'm telling you, when from being job seekers to being job creators, when I talk to a cross section of youth today, what they tell me is that, yes, we want to work, not that, but we only want to work once they gain experience. They want to be, you know, there is a flame burning inside every youth. Yes, I have to do something of my own. And I think this aspirational India is driving the growth of the country. You know, if 65% of our population, Anubha, is below 35 years of age, we are a very, very young country. And, you know, for everybody to find employment, you know, may not be possible in the times to come. So if you become job creators, you just don't employ yourself. You create jobs for so many people around you. And, you know, we talk of Mudra Yojana, which was focused on women entrepreneurs, where government gives you a loan for up to a certain level, up to 10 lakh rupees, 5 lakh rupees. You borrow, you start. I've seen so many women entrepreneurs. You know, you'll be surprised, the participation of women in the mainstream economic activity in this country is not as high as men. We all know that. There are so many although I treat homemakers as a very, very active GDP. In fact, we did an analysis recently which said that if the GDP of women homemakers, it's not counted in the GDP, but then they contribute very

0: now want to emulate that example. So many countries have borrowed this fintech innovation from us, and they want to go for it, from buying a roadside nariyal to probably making big payments at the hotels. Just about, I have a feeling, Anubha, as an economic analyst, that to my mind, this has added about a percentage point to GDP, which means just the UPI has facilitated our GDP in stepping up by about 100 basis points, which is a very, very significant value for that matter.
1: Ashok ji, aap kuch kehna
2: chahte hain? Main ye kehna chahta hoon ki ye Janadhan Aadhaar aur mobile, ye jo jam ki tikdi hai, isne bicholiyon ko khatam kar diya hai. Aur iske saath saath jo 1600 se adhik purane aur obsolete kanoon jinko hum kehte hain unko khatam kiya gaya hai. Sarkari naukriyan ho, nichle star mein interviews ko khatam kiya gaya hai. Dastavejon ke self attestation ko shuru kiya hai. Ye sab bhrashtachar ko bhi samapt karte hain aur sabse zyada iska labh jo hai wo madhyam varg ko hua hai.
1: Ji, hum kyunki digitization ki baat kar rahe hain aur hum baat kar rahe hain technological revolution ki, to internet connectivity ko bhi baat karna bahut zaruri ban jata hai. Pichle 12 saalon mein sarkar ke vibhinn prayason ke chalte लगभग 98% गांवों में 4G कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है और तेज इंटरनेट के चलते ग्रामीण विकास में काफी तेजी आई है. उसे आप कैसे देखते हैं और साथ ही साथ डेटा इतना सस्ता हुआ है पिछले 12 सालों में और ये जो हमारी जिस तरह से तेज कनेक्टिविटी मिली है इससे मध्यम वर्ग के विकास पर किस तरह का और कितना प्रभाव पड़ा है?
0: जबरदस्त प्रभाव पड़ा है अनुभव. आपने ऐसा लगता है जैसे इस मध्यम वर्ग की जो दुखती रग थी उस पे हाथ रख दिया. बिकॉज दुनिया का सबसे सस्ता डेटा हमारे देश में है और क्या कमाल इसने किया है कि इसने जो गांव और शहर के बीच में जो एक खाई हुआ करती
1: डिजिटल डिवाइड, जिसको
0: डिजिटल डिवाइड क्या लाइफस्टाइल डिवाइड था. बिकॉज दीज पीपल इन द विलेज अनुभव, दे नेवर यूज्ड टू नो व्हाट्स हैपनिंग इन द टाउन. टुडे व्हेन आई गो टू अ विलेज आई फाइंड द थिंग्स दे यूज, द वे दे टॉक, व्हाट दे वेयर, द लाइफस्टाइल दे लीड इज प्रीटी मच लाइक अ नॉर्मल टाउन सिटीजन. एंड देयर आर सो मेनी लर्निंग्स व्हिच आर हैपनिंग. प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली मेड एन अपील व्हिच सेड कि आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए. कैसे ये कोविड में हम करते पढ़ाई लिखाई बंद हो जानी थी अगर ये कनेक्टिविटी नहीं होती. बच्चों का कोई नुकसान कोविड में नहीं हुआ. आज भी प्रधानमंत्री जी हम अपने विदेशी मुद्रा बचाने के लिए उन्होंने कहा कि आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए. क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि उसके पीछे इंटरनेट और डिजिटल कनेक्टिविटी की पावर आज है.
1: सरकार ने जो पिछले 12 सालों में काम
0: किया है हमें उसके आधार पर उन्होंने बोला. उनको पता है कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा और लोग वैसे ही लाभ उठाते रहेंगे. सो आई थिंक दिस होल्ड और वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम एनीवेयर फॉर दैट मैटर. मुझे ऐसे लोग मिलते हैं अनुभव हु यूज्ड टू लिव इन से दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, आज वो कई पहाड़ों पर जाकर रहते हैं और बहुत सुकून की जिंदगी जीते हैं और शायद उनके एम्प्लॉयर को, उनके क्लाइंट्स को ये मालूम भी नहीं होता कि वो कहां बैठ के काम कर रहे हैं. दैट हैज बीन द मैजिक ऑफ डिजिटलाइजेशन.
1: अशोक जी, आप कुछ कहना?
2: नहीं, मैं इसमें सोशल सिक्योरिटी का एंगल जरूर लाना चाहता हूं क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और जो लेबर है, श्रमिक है, उनके लिए जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आई है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आई है और अटल पेंशन योजना आई है, ये ऐसी योजनाओं के आने से और पीएम स्वनिधि योजना है, इसके जरिए स्ट्रीट वेंडर जो है, सड़क पर जो सामान लगाता है, रेड़ी खोमचा लगाता है और उनको फिर से अपना काम करने के लिए कितनी आसान शर्तों पर जो है वो लोन दिया जा रहा है. तो इसी कड़ी में मैं एक चीज और ऐड करूंगा कि 12 सालों में ये जो गुड गवर्नेंस का मंत्र दिया गया, सुशासन, और भारत के जो प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया गया है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये जो सिद्धांत पर चलते हुए सरकार ने ट्रांसपेरेंसी लाई है, स्पीड लाए हैं और टेक्नोलॉजी पर जो जोर दिया है, ये गुड गवर्नेंस भी अल्टीमेटली हम देखें तो मिडिल क्लास को ही इसका लाभ होना है.
1: We have seen in the last 12 years since 2014 when NDA government under Prime Minister Modi, you know, came in power, we have seen that there's been a continuous focus on expanding and improving infrastructure. In fact, every year in budget, we've been seeing an increase in the allocation for infrastructure. So how has this improved the quality of life of the middle class and fast-tracked their economic prosperity?
0: Oh, it's done in a huge way because we pick up anything. For example, highways. Any middle class family traveling from one town to another, 8 to 9 hours, Anubha, for a 200 kilometer distance was a normal earlier. Now you cover that distance in 2 hours and 2.5 hours. Look at the time saved. And if you're using your own vehicle to travel, look at the wear and tear that you save. And why forget metro? Expanded, Anubha, over the last few years, I have stories of somebody in Delhi or Mumbai, you know, who used to spend 2 hours to reach the workplace, 2 hours to come back. Today, that journey happens in 25 minutes. Look at the saving in fatigue which that commuter does. And Uran, Hawaii Chappal se Hawaii Yatra tak. Well, a plane journey used to be a dream for people. Ke hum sari umar mein sochta tha, kab main hawaii jahaj mein baithungi, baithunga. Aaj mujhe lagta hai, aap agar kisi bhi hawaii yatra mein jaye, aapko ek aam aadmi usme dekhega. Ab wo aisi luxury nahi hai. छोटे छोटे एयरपोर्ट्स को बनाकर उनको कनेक्ट कर देना और चंद मिनटों में या घंटे में पहुंच जाना, जिसके लिए आप सारी रात की जर्नी करते थे. आपको याद होगा

0: राजधानी और शताब्दी अकेली ट्रेन हुआ करती थी जो कि प्रीमियम बोली जाती थी, जल्दी पहुंचना है। आज वंदे भारत लेके आप कुछ घंटों में एक जगह से दूसरी जगह और ऐसे कंफर्ट में पहुंच रहे हैं, विच इज ऑफ इंटरनेशनल लेवल। द थिंग्स वी यूज्ड टू वॉच इंटरनेशनली, के इस ट्रेन में टीवी भी होता है, इसमें रिक्लाइनिंग सीट्स होती है, आज वो मुझे लगता है आम आदमी की पहुंच में। सो आई थिंक दिस गवर्नमेंट हैज ब्रॉट लग्जरी विच यूज्ड टू बी कॉल्ड अर्लियर एज अ कंफर्ट एंड नेसेसिटी टू द पीपल ऑफ द कंट्री।
1: एंड यू नो दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप जैसे बात करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इंप्रूवमेंट हुआ है, बी इट रोड्स, बी इट रेलवेज, बी इट यू नो एयरपोर्ट्स, जो एक्सपेंशन हुआ है, तो हमने देखा है कि हवाई यात्रा में जैसे भी आपने कहा कि बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है। वंदे भारत जैसे हमारे पास वर्ल्ड क्लास ट्रेन है, जहां 2014 में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे, अब वो बढ़ के 160 हो चुके हैं, 225 तक। जो मेट्रो रेल का नेटवर्क है वो 26 शहरों में फैल चुका है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम कार्यक्रम के शुरू में हम बात कर रहे थे कि मध्यम वर्ग की चिंता होती थी रोटी कपड़ा मकान, पर अब जब उनकी ये बेसिक नेसेसिटीज काफी हद तक वो आराम से उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं क्योंकि वो पूरी हो रही है, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ा है, इसको जो फैल रहा है तेजी से, इससे मध्यम वर्ग की जो आकांक्षाएं हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, उस पर कितना असर पड़ेगा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे अशोक जी? पहले आपसे
2: इसके लिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर में बुनियादी ढांचे हो, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया गया, और इसीलिए एक सेक्टर में जो प्रगति हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो सब एक दूसरे को जानते हैं, उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, और उससे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है और उसमें स्टार्टअप भी लगे हुए हैं। ये सब काम कोई सरकार अकेले नहीं कर रही है, चाहे वो हम सड़कों की बात करें या रेलवे की बात करें, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो हो रही है वो भी मिडिल क्लास को बहुत फायदा कर रही है। अब देखिए ना, जब रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा है तो हम देखें लाखों मजदूर उसमें काम करते हैं, तो ये कुल मिलाकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जीडीपी में केवल हाईवेज और रोड 1% तो जीडीपी में वही बढ़ोतरी करते हैं। अगर आप सोचिए रेलवे को अगर ले लें और हम एयर ट्रैफिक वगैरह की बात करें, तो इस मामले में अगर देखें तो जो एक डेवलपिंग कंट्री के नाते भारत रहा है अब तक, उसकी पहचान है, वो अब बड़ी तेजी से डेवलप्ड कंट्री की ओर जा रहा है। इसलिए जो लक्ष्य रखा गया है कि हम 2047 तक हम विकसित भारत बनेंगे, उसकी ओर देश तेजी से बढ़ रहा है।
1: शरद जी, आप क्या कहेंगे? हम जब बात कर रहे थे एस्पिरेशंस की, आकांक्षाओं की, मध्यम वर्ग का जो पिछले 12 सालों में हमने देश में विकास देखा है, आर्थिक विकास देखा है, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन देखी है, हर तरह से जो हमारा देश प्रगति की राह पर एक बहुत तेजी से अग्रसर हो रहा है, उससे मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं पर कितना असर पड़ रहा है, और उनकी आकांक्षाएं जो पूरी हो रही है उससे देश की पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट पर कैसा असर पड़ रहा है?
0: आई थिंक द पॉइंट यू हैव रेज्ड अनुभव रिलेट्स टू विकसित भारत 2047, और अभी आपने जब बुनियादी ढांचे की बात करी तो उसमें हर एक रुपया जो बुनियादी ढांचे पर खर्च किया जाता है, ये एक आर्थिक सिद्धांत है, उसका 8 गुना मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। आपने कहीं सड़क बनाई, उसके आसपास अस्पताल आ जाएंगे, होटल्स आ जाएंगे, अपार्टमेंट्स आ जाएंगे, मॉल्स आ जाएंगे, इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स आ जाएंगे। देखिए, एक सड़क बनने से, और ये ऐसे मेरे पास अनेकों उदाहरण है देश के, अगर मैं कोई भी एक सड़क उठा लूं, तो मुझे लगता है कि ये जो विकसित भारत की यात्रा है पूरी, ये जो आपने एस्पिरेशनल इंडिया की बात करी, ये विकसित भारत की यात्रा में बहुत बड़ा कदम है। क्योंकि मुझे याद है एक फिल्म आई थी रोटी कपड़ा मकान, और अगर आप उस फिल्म को याद करें और आज उसको इस परिप्रेक्ष्य में देखें, ऐसा लगता है उस फिल्म को हम 300-400 साल पहले छोड़ के आ चुके हैं। क्योंकि जब लोग देखते हैं, वो कहते हैं ये भी जमाना था क्या, रोटी कपड़े मकान के बारे में सोचना पड़ता था? क्योंकि आज आप सोचते हैं कि आप हवाई जहाज में बैठ रहे हैं, आज आप सोचते हैं कि आप वर्ल्ड क्लास हाईवे में ट्रैवल कर रहे हैं, आज आप सोचते हैं कि आप एक इनोवेटिव स्टार्टअप चला रहे हैं। तो मुझे लगता है वी हैव कम अ वेरी लॉन्ग वे अनुभव फ्रॉम वेयर वी वर।
1: यू नो, व्हेन वी टॉक अबाउट द मिडिल क्लास नाउ, वन सेगमेंट ऑफ द मिडिल क्लास दैट आई थिंक वी हैव टू टॉक अबाउट एंड वी शुड मेंशन इज द वुमेन। Women, you know, are the backbone of any middle-class family. What, in your opinion, in the last 12 years, the various schemes, the various initiatives that the Modi government has taken, how have they uplifted and empowered women, especially of the middle-class women, which in turn, you know, have made the middle-class much more prosperous? Ashok ji, aap batana chahiye.
2: Dekhiye, humne jitni bhi jan kalyan yojanaon ki baat ki hai, agar hum dekhenge to fayda to usse हर वर्ग को हुआ है, लेकिन विशेष तौर से महिलाओं और किसानों और युवाओं से जुड़े हुए जो हैं। अब आप देखिए, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, तो जो गरीब परिवारों की महिलाओं को धुएं से जो मुक्ति मिली और उससे स्वच्छ ईंधन की उपलब्धि हुई और मुफ्त एलपीजी मिली, ये तो सीधा सीधा मैं कहूंगा महिलाओं के ही कल्याण के लिए हुआ है। इसी तरह से हम जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें और सामाजिक सुरक्षा के लिए, तो मैंने पहले भी कहा है, तो महिलाओं के लिए आवास की योजना हमने बात की, टॉयलेट के बारे में बात की, तो ये सब योजनाएं, आयुष्मान भारत, ये योजना से भी जो 5 लाख का मुफ्त इलाज है, इसमें महिलाएं सबसे ज्यादा, इनको भी लाभ हो रहा है। और सबसे बड़ी यही है कि जिसको हम वेमेन एम्पावरमेंट कहते हैं, तो उसमें

0: ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं, स्टार्टअप में बहुत महिलाएं हैं, तो हर क्षेत्र में महिलाएं जब सामने आ रही हैं और उनकी अगर स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे विमेन सिक्योरिटी है
1: जी जी।
0: तो ये चीजें जब आज तसल्ली होगी तो महिलाएं ज्यादा से ज्यादा बाहर आकर काम करेंगी और इन सब योजनाओं का लाभ उठाते हुए वो आज खुद भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू या अदरवाइज स्टार्टअप के थ्रू वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही हैं।
1: जी अशरद जी आप कुछ कहना चाहेंगे?
2: आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट हैज बीन द थीम ऑफ दिस गवर्नमेंट एंड महिला सशक्तिकरण जिसको हम कहते हैं, और महिलाएं चाहे उनकी एजुकेशन की बात हो, बिटिया की पढ़ाई की बात हो, बिटिया की सुरक्षा की बात हो, मुझे लगता है यहां से सारा का सारा ये जो उत्थान हुआ है वहां से निकल कर आया। एंड टुडे वुमेन एज आई सेड अर्लियर दे आर इन द मेन स्ट्रीम, द परसेंटेज ऑफ वुमेन हु आर इन्वॉल्व इन द मेन स्ट्रीम दैट इज इंक्रीजिंग, एंड दिस इज अनुमा नॉट जस्ट हैपनिंग इन द टाउन। I find lot of women, as Mr. Tandon said, that you know, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वहां पर महिलाएं इकट्ठी होकर कुछ बिजनेस शुरू कर रही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव बन गई है जहां से बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जरिए महिलाएं आगे आ रही हैं। और आप अगर देखें इसका रिजल्ट कहां दिख रहा है अनुभव, तो आप देखें कि जब भी रिजल्ट आते हैं किसी भी एग्जामिनेशन के, वहां महिला कैंडिडेट सबसे आगे होती हैं। ये इस बात को बताता है कि सरकार ने महिला एजुकेशन को और महिलाओं के सशक्तिकरण को कितना सीरियसली लिया है। और हमारी आधी आबादी है, तो मुझे लगता है कभी भी उनके साथ भेदभाव तो कभी भी जस्टिफाइड नहीं था, पर आज जो विभिन्न स्कीम्स की वजह से महिलाओं के हम स्कीम्स गिनवाएं तो बहुत लंबी लिस्ट है महिलाओं की स्कीम की, पर मुझे लगता है कि महिलाओं का मेन स्ट्रीम में आना, और अगर मैं एक जरूरी बात कहना चाहूंगा, आई थिंक यू विल बी एबल टू रिलेट, अगर महिला काम नहीं भी कर रही है, मान लीजिए वो कहीं कमाई नहीं करती है, तो घर बैठे बैठे प्रधानमंत्री आवास योजना के जो घर हैं, महिलाएं इस बात को मानेंगी पहले उनके नाम किए गए हैं।
1: बिल्कुल,
2: आप देखिए कि घर में अगर पुरुष खाली पुरुष है तो अलग बात है, पर अगर महिला है तो घर बैठे बैठे महिला सशक्तिकरण हो रहा है। महिला अपने पति को कह सकती है, देखिए ये घर मेरे नाम है, मेरा भी इस घर में उतना ही योगदान है। और मैं समझता हूं उसने महिला को एक कॉन्फिडेंस दिया है। सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं महिलाओं के मामले में मानता हूं ये उनका कमाई के जरिए बनना, इन्होंने उज्ज्वला की बात करी, वो सब तो है ही है, पर मुझे लगता है महिलाओं में एक जो कॉन्फिडेंस आया है, और ये कॉन्फिडेंस आपको बताऊं सबसे ज्यादा मुझे कहां दिखा, जब प्रधानमंत्री जी ने महिला का पार्लियामेंट में बिल लाने की इस सरकार ने मुहिम छेड़ी, किसी वजह से वो नहीं पास हो पाया, पर सरकार की इंटेंट बताती है कि महिलाएं आधी आबादी नहीं है, महिलाएं ज्यादा शक्तिशाली आबादी भी है, ये प्रधानमंत्री जी की मंशा रही है।
1: आप दोनों से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि हम अब तक बात कर रहे थे कि मोदी सरकार के पिछले 12 साल में जो उन्होंने कदम उठाए उसका मध्यम वक्त में कितना फर्क पड़ा, कितना असर पड़ा, बट व्हेन वी लुक एट यू नो इन द फ्यूचर, लेट्स लुक एट द इन द फ्यूचर, इन द नेक्स्ट डेकेड वेयर डू यू सी द इंडियन मिडिल क्लास, वेयर इट इज गोइंग टू बी, एंड हाउ मच ऑफ अ मेजर फैक्टर विल इट बी इन इंडियाज डेवलपमेंट? अशोक जी
0: देखिए, जब हम बात कर रहे हैं ओवरऑल डेवलपमेंट की, तो मिडिल क्लास भी हम मान रहे हैं कि उसका सबसे ज्यादा उनको फायदा हो रहा है, तो यही मिडिल क्लास देश को प्रगति की ओर भी ले जा रहा है, और यही मिडिल क्लास ही देश को आज हम देखते हैं तो खेलों के मैदान में जो हो रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा खिलाड़ी हमारे मिडिल क्लास हैं। पहले हम सोचते थे कई खेल ऐसे हैं जो बहुत अमीर लोगों के खेल हैं, आज जो है स्मॉल टाउन से क्रिकेटर्स आ रहे हैं, हॉकी के प्लेयर्स आ रहे हैं, रेसलर्स आ रहे हैं, यहाँ तक कि टेनिस के प्लेयर्स भी आ रहे हैं, तो ये सब जो विकास हो रहा है तो खेलों में हमें दिखाई दे रहा है, ऐसे ओलंपिक वगैरह ये देखें तो ये सब मिडिल क्लास का ही आगे बढ़ना है, और इससे आगे चलकर मिडिल क्लास वो भी ये जो विकसित भारत का सपना है उसमें मुझे लगता है सबसे ज्यादा योगदान यही मिडिल क्लास देगा।
1: शरद जी, अशोक जी ने गरीब और अमीर का जो अंतर है वो बहुत कम होता जा रहा है।
2: देखिए, जब भी कोई अर्थव्यवस्था विकास की ओर बढ़ती है, डेवलप की ओर बढ़ती है, तो वो खाई अपने आप भरती जाती है। मैं मिडिल क्लास को पर्सनली तीन हिस्सों में बांटता हूँ, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास। तो मुझे लगता है इन तीनों को अगर हम मिला दें, आपका क्योंकि सवाल था कि हम भारत के विकास में इनका क्या योगदान रहेगा, मुझे लगता है लोअर मिडिल क्लास में आएगी, मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास में आएगी, और अपर मिडिल क्लास शायद अमीर बन जाए। द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज, if you take in the world of sports, you take in the world of innovation, you take in the world of space, you take in the world of anything, I think the biggest success stories are coming from middle class.
1: Mr. Ashok Tandon, Mr. Sharad Kohli, thank you so much for joining us in Akashvani's special series on 12 years of Modi government.
2: It was a pleasure.
0: Thank you.
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल सुधार, सुशासन और जन कल्याण से सशक्त होता मध्यम वर्ग। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं।

0: ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
1: In the special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government transforming middle-class lives through reform and welfare. Participants were Ashok Tandon, political analyst, and Sharad Kohli, economic analyst. Moderator was Anubha Rohatgi. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
2: हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है। मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। शब के 11:45 हो रहे हैं। समय आज की मजलिस अब यहीं पर बर्खास्त होती है। मामूल के प्रोग्राम में लेकर कल सुबह 6:28 पर हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। शब्बा खैर। जय हिंद।

इनका फिल्म का नाम है दिल एक मंदिर। तो एक बार फिर से आपको बता दूं, आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मनमीत।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से
0: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
1: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ FM गोल्ड पर।

11:54 और 51 सेकेंड हो चुके हैं. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम गोल्ड है ये 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर. गीत मेरे मनमीत. अगला गीत आप सुनेंगे शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध है, शैलेंद्र का लिखा हुआ गीत है, लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में होगा ये गीत. फिल्म का नाम है चोरी चोरी.

0: मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो।
1: तो बताइए फिर कि हमें पूछना है ये नहीं पूछना कि आप हमारे कौन हैं। ये पूछने की जरूरत तो हमें पड़ती ही नहीं है क्योंकि हम हमेशा आपके साथ रहते हैं और ऐसे ही दिन रात आप भी हमारा साथ देते हैं क्योंकि ये है आपका अपना आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और इसी गीत के साथ अर्पना को दे इजाजत FM गोल्ड पर। अब आप सुनेंगे समाचार। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।

0: नई समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
1: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। लोकसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वो आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाले प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। प्रधानमंत्री ने इसे योगासन के वैश्विक खेल मानचित्र पर महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया और आयोजकों तथा प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना पीएम अजय संबंधी केंद्रीय सलाहकार समिति की नई दिल्ली में उच्च स्तरीय राष्ट्रीय बैठक हुई। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए योजना के वांछित परिणाम के लिए राज्य और केंद्र सरकार के बीच तालमेल पर बल दिया। उन्होंने बताया कि सामाजिक और आर्थिक रूप से अधिक आकांक्षी अनुसूचित जाति समुदायों तक पहुंचने के लिए पीएम अजय योजना का दायरा विस्तारित किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में आवागमन वाहन पारितंत्र अब किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा। नई दिल्ली में हीरो मोटोकॉर्प की पहली फ्लेक्स

दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन सकते हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं अंजू आपके साथ और कार्यक्रम लेकर आई हूं निशिकांत। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

अभी आपने फिल्म राजपूत से किशोर कुमार की आवाज में बहुत ही खूबसूरत गीत सुना। इन आंखों के साये में जरा आराम तो कर लेने दो, इन आंखों के साये में जरा आराम तो कर लेने दो, थक चुकी हूं दुनिया की धूप में चलते चलते।

अभी आपने हेमलता की आवाज में फिल्म आंखों के झरोके से ये गीत सुना। कहीं दूर तक चलना था, कहीं दूर तक ही चले आए। कहीं दूर तक चलना था, कहीं दूर तक ही चले आए कि इस दिखावे की दुनिया से हम बहुत परे हो गए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम चल रहा है ऋषिगंधा और मैं हूं आपके साथ अंजू। ब्रेक पर जाने से पहले जो हमने आपको गीत सुनाया था उसे गाया था किशोर कुमार, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने। फिल्म का नाम था दूसरा आदमी।

अभी आपने किशोर कुमार की आवाज में फिल्म ड्रीम गर्ल से ये गीत सुना। तुमसे मिलकर जाना कि जिंदगी क्या होती है, तुमसे मिलकर जाना कि जिंदगी क्या होती है, वरना वरना तो अंधेरे में भटकती हर राह सुनी होती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
1: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाले पहले विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। गृहमंत्री अमित शाह त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। गृहमंत्री त्रिपुरा दौरे में पुष्प बंता पैलेस होटल के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। लंकामुरा में सीमा सुरक्षा बल की एक चौकी का दौरा करेंगे और राज्य एवं केंद्रीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। श्री शाह के दौरे के सिलसिले में राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय प्रशासनिक और सुरक्षा बैठक आयोजित की। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में आवागमन वाहन पारितंत्र अब किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा। नई दिल्ली में हीरो मोटोकॉर्प की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल बाजार में उतारे जाने के अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य का वाहन पारितंत्र इलेक्ट्रिक वाहनों, जैव ईंधन, हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एकीकृत करेगा। ब्रिटेन की विदेश राष्ट्रमंडल और विकास मामले मंत्री यवेट कूपर 2 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गई हैं। सुश्री कूपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगी। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंगफांग और यांग पोस्वान को पराजित किया। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्से, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल,

अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले दो दिन तेज बारिश हो सकती है। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में ओलावृष्टि के साथ तूफान की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. मैं हूं अंजू आपके साथ और लेकर आई हूं कार्यक्रम गीत सुहाने. तो रहिए मेरे साथ इस कार्यक्रम में, सुनेंगे बेहद ही मधुर गीत. शुरुआत कर रही हूं फिल्म स्वामी से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने.

तेरी यादें, तेरी बातें, बस तेरे ही फसाने हैं। तेरी यादें, तेरी बातें, बस तेरे ही फसाने हैं। हाँ, कबूल करते हैं कि हम तेरे दीवाने।

मेरी नजर से ना देखना कभी खुद को, मेरी नजर से ना देखना कभी खुद को, उम्र गुजर जाएगी तुम्हें नजर उतरवाने में।

बंद आंखों से भी दिखता है उजाला तेरा, बंद आंखों से भी दिखता है उजाला तेरा, पर लोग कहते हैं कि ये सोए हैं, हम सोए कहाँ हैं, जागे हैं हम।

तेरी मदहोश नजरों के जादू का असर गहरा सा हुआ है, तेरी मदहोश नजरों के जादू का असर गहरा हुआ है कि होश में होकर भी ये दिल मुकम्मल मदहोश हुआ है।

अभी आपने कुदरत फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत सुना। न जाने कब तेरी आदत सी लग गई, हम तो यूं ही हर रोज मिला करते थे। तूने तो कभी इजहार भी ना किया, न जाने कब हम तेरे आशिक बन गए।

तुम जमाने के हसीन नजारे देखो, हमारी आंखों को तो बस तुम्हारा दीदार चाहिए। बेशक दुनिया दीवानी है खूबसूरत नजारों की, और हमें हमें तो बस तुम्हारा मासूम चेहरा दिखना चाहिए।

तेरी सूरत के सिवा कोई मंजर नहीं भाता है, अब तो ख्वाबों में भी कोई दूसरा नहीं आता है। इस कदर तड़प है दिल में तुम्हें देखने की, आए ना देखूं तो उसमें भी तेरा अक्स नजर आता है।

दोस्तों भी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार दो बजकर 10 मिनट पर रात सुमेरे कार्यक्रम पर फिर से आपके साथ रहेंगे। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
1: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जागरूकता बढ़ाने, आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने, वित्तीय आवश्यक सेवाओं तक पहुंच में सुधार और प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र सुनिश्चित करने सहित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण और रोजगार के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम NPCI ने कंबोडिया में UPI भुगतान सुविधा आरंभ करने के लिए कंबोडिया के प्रमुख वाणिज्यिक बैंक ACALEDA बैंक के साथ साझेदारी की है। भारत आने वाले कंबोडियाई नागरिक जल्द ही अपने घरेलू बैंकिंग और डिजिटल भुगतान ऐप का इस्तेमाल कर पूरे भारत में लाखों UPI QR कोड स्कैन कर भुगतान कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाले प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। गृहमंत्री अमित शाह त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। गृहमंत्री त्रिपुरा दौरे के दौरान पुष्पबंता पैलेस होटल के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। लंकामुरा में सीमा सुरक्षा बल की एक चौकी का दौरा करेंगे और राज्य एवं केंद्रीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। ब्रिटेन की विदेश राष्ट्रमंडल और विकास मामले मंत्री यवेट कूपर 2 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। आज शाम वे विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से भी मिलेंगी। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंगफांग और यांग पो स्वान को पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

समय हुआ है 2:11 और 10 सेकंड। मैं हूं आपके साथ अंजू। समय हो बता दिया है और आगे सफर बढ़ाते हैं। कार्यक्रम लेकर आए हैं रात सुरमई।

हम तो अजनबी थे, कब खास हो गए पता ही नहीं चला। ये इश्क है, ये इश्क है, बस इसे यूं ही हो जाने दो।

रूठेगी अगर तकदीर तो उसे भी मना ही लेंगे, रूठेगी अगर तकदीर तो उसे भी मना ही लेंगे, और वादा है तुमसे हर हाल में एक ना एक दिन तुम्हें हम अपना बना ही लेंगे।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से,
0: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
1: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ FM गोल्ड पर।

हमारे जिन दोस्तों ने अभी अभी ट्यूनिंग किया है उन्हें हम बता दें आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ अंजू। कार्यक्रम है रात सुरमई।

जुबान से जो न कह पाए वो नजरों का फसाना है, न कह पाए वो नजरों का फसाना है, और तुम्हें ही छुपकर तुम्हें ही देखना ये इश्क का बहुत पुराना बहाना है।

रात का अंदाज कुछ मध्यम सा होने लगा है, दिल तुम्हारी यादों के समंदर में खोने लगा है। अब भी आ जाओ कि अंधेरा होने को है, तुम्हारे बिना ये दिल फिर से रोने को है।

ये जादू तो यूं ही बरकरार रहेगा क्योंकि स्टूडियो में आ चुकी हैं माधुरी हमराही लेकर. मुझे अनुमति दीजिए और जल्द ही आपसे मिलूंगी. अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, ये भी आपको बताते चले क्योंकि माधुरी खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही हैं और कह रही हैं कि जल्दी से ये सीट खाली हो तो मैं बैठूं. तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, सुनिए समाचार, उसके बाद सुनेंगे आप 3:10 से हमराही. आप सभी को मेरा नमस्कार, शुभ रात्रि.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से

0: बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश है। नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में कल एक गेस्ट हाउस में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। 8 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि बाकी का इलाज जारी है। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। उसने बताया कि इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घटना में हुई लापरवाही की गंभीरता से जांच होगी और दोषियों को सजा मिलेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं और संपत्ति के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
1: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिए में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: पश्चिम बंगाल विधानसभा में रतब्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाले प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। गृहमंत्री अमित शाह त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। गृहमंत्री त्रिपुरा दौरे में पुष्प बंता पैलेस होटल के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। लंकामुरा में सीमा सुरक्षा बल की चौकी का दौरा करेंगे और राज्य एवं केंद्रीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। ब्रिटेन की विदेश एवं राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। आज शाम वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ब्रिटेन की विदेश मंत्री की यात्रा से भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत बनाने का अवसर मिलेगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैकाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिन तेज बारिश हो सकती है। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में आज ओलावृष्टि के साथ तूफान की आशंका है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंगफांग और यांग पो स्वान को पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। The Union Cabinet has approved one-time budgetary support of 10,000 crore rupees for oil marketing companies to provide aviation turbine fuel ATF price stabilization support to Indian Airlines for the domestic and international operations. Briefing media in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, "This is a self-sustaining revolving fund which will help to stabilize ATF prices for scheduled Indian carriers."
3: ETF price stabilization fund mein
4: asal sustaining revolving fund has

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हमराही का ये सफर लेके माधुरी है आज की रात आप सभी के साथ। नमस्कार।

चलो मीत चलें दिन और रात के सरहद के पार, जहां तुम रात को दिन कहो तो मैं मुस्कुरा दूं, और जहां सूरत से तुम्हारी दोस्ती रहे और चांद से मेरी नाराजगी। चलो मीत चलें दिन और रात के सरहद के पार।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। समय बता दें, रात्रि के 3:22 और हो गए हैं पूरे 15 सेकेंड।

खुले आसमां का पता चाहते हैं, परिंदे हैं हम और क्या चाहते हैं, उड़ेंगे हवा में खुद के परों से, उड़ानों में सारी फजा चाहते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर हमराही।

0: 90.
1: जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

जब दिल किसी के प्यार में खो जाए तो फिर सच में जिया कहाँ लगता है। आवारा है गलियों में मैं और मेरी तन्हाई, जाए तो कहाँ जाए, हर मोड़ पे है रसवाई। ये फूल से चेहरे हैं, हंसते हुए गुलदस्ते, कोई भी नहीं अपना, बेगाने हैं सब रस्ते। राहें हैं तमाशाई, राही भी तमाशाई, मैं और मेरी तन्हाई, और इस तन्हाई में ये मोहब्बत का सबब।

रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बहार आ जाए, जैसे सहरे में हौले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को चुपके से दवा मिल जाए। और इस शेर की ही तरह अगला गीत है हमारा, ये कहते सुनते कब ये रात बीत जाए, कब कोई बात बन जाए, कब कोई बात बिगड़ जाए और कब कोई बात

जी हाँ, कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा और कहते सुनते हमराही का ये सफर भी अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ गया है। रंजिश ही सही, दिल को दुखाने के लिए आ आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए।

और इसी के साथ हमराही का ये सफर यहीं समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर दी एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्र

0: राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को चार लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में कल एक गेस्ट हाउस में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। 8 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि बाकी का इलाज जारी है। पुलिस ने बताया है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। उसने बताया कि इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि घटना में हुई लापरवाही की गंभीरता से जांच होगी और दोषियों को सजा दी जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं और संपत्ति के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस दुर्घटना पर संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और भारत के प्रति अपना समर्थन जताया। बयान में कहा गया है कि संयुक्त अरब अमीरात मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना और भारत सरकार और लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाले प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। गृहमंत्री अमित शाह त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। गृहमंत्री त्रिपुरा दौरे में पुष्पबंता पैलेस होटल के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। लंकामुरा में सीमा सुरक्षा बल की एक चौकी का दौरा करेंगे और राज्य एवं केंद्रीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। ब्रिटेन की विदेश एवं राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। आज शाम वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ब्रिटेन की विदेश मंत्री की यात्रा से भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत बनाने का अवसर मिलेगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिन तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. The Union Cabinet has approved one-time budgetary support of 10,000 crore rupees for oil marketing companies to provide aviation turbine fuel ATF price stabilization support to Indian Airlines for the domestic and international operations. Briefing media in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, this is a self-sustaining revolving fund which will help to stabilize ATF prices for scheduled Indian carriers.
2: ATF price stabilization fund mein
3: a self sustaining revolving fund has been established under the ATF price stabilization fund. Airline carriers who want to participate in this will be provided aviation turbine fuel at a stable price during the current crisis. This is expected to significantly reduce the adverse impact on the aviation sector, where over 70 lakh jobs had started to be affected by the ongoing stress in the industry.
2: Because of the stress in the sector, wo isse significantly mitigate hoga.
1: The Union Cabinet has also approved a scheme for support to the National Capital Region Planning Board for replacement of old trucks and buses in Delhi NCR area. Mr. Vaishnaw also informed that the Cabinet Committee on Economic Affairs has also approved the construction of a new coastal highway from Rameshwar to Paradip in Odisha. Prime Minister.

आकाशवाणी दिल्ली एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं आप और कार्यक्रम अरुणिमा के साथ मैं हूं माधुरी। नमस्कार।

एक कविता की कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूं जो यकीनन दिल को छू लेंगी। जानती हूं जीवन मैदानों से ज्यादा विस्तृत है, हथेलियों से ज्यादा सुंदर है और धातु से ज्यादा कठोर है। जीवन का अनुवाद किसी भी भाषा में सिर्फ जीवन है। जीवन विन्यास है ऋतुओं का, नदियों का, उन रास्तों का जिनसे होकर हम काम पर जाते हैं। वो मुझे प्रिय हैं, शब्दों से ज्यादा, आंसुओं से ज्यादा।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल।

एक और छोटी सी कविता है जिसे लिखा है नरेंद्र वर्मा ने, आप तक पहुंचा रही हूं। राह में मुश्किल होगी हजार, तुम दो कदम बढ़ाओ तो सही, हो जाएगा हर सपना साकार, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही, मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तू कर ना सके, दूर है मंजिल लेकिन इतनी भी नहीं कि तू पा ना सके, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 4:31 और हो गए हैं पूरे 47 सेकेंड। ये सफर है अरुणिमा का।

0: सब।
1: आनंद परम की ये कुछ पंक्तियां हैं आपके लिए। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सासद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा।

दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर तो देख, तू भी एक सिकंदर है।

और अरुणिमा के इस आखिरी पड़ाव पर एक बहुत ही प्यारी और जानी मानी कविता आप सभी के लिए लेकर आई हूं। सोहन लाल द्विवेदी की लिखी ये कविता है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती।